मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि। तदनुसार 22 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 49 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रथम सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना में आज हमारी सुबह को और भी पावन बनाने के लिए सबसे पहले आइए अरदास लगाते हैं उस परम सत्ता के चरणों में। जब उस ईश्वर की कृपा बरसती है तो जीवन के हर मुश्किल आसान हो जाती है। आइए सुनते हैं नंदनी शरण की सुरीली आवाज में ये बेहद खूबसूरत भजन।

श्रोताओं, जैसे ही सुबह की सूरज की पहली किरण इस धरती को छूती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद ईश्वर की आरती उतार रही हो। और जब माता के भजनों की बात हो तो एक नाम जहन में सबसे पहले आता है, वो है नरेंद्र चंचल का। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये भजन।

वंदना कार्यक्रम के इस सफर में अब वक्त है उस सच्चे बादशाह वाहेगुरु के चरणों में शीश नवाने का वक्त। उनकी महिमा अपरंपार है जो हर भक्त के हुए व्यक्ति को राह दिखाते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं भाई समुद सिंह रागी की आवाज में ये शब्द।

सामान इबादत का कोई भी तरीका हो, लेकिन मंजिल तो वही है, सिर्फ वही, एक खुदा। आइए वंदना कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं अकीदत के कुछ और खूबसूरत फूलों को। सुनते हैं ये नात मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।

संतोषी माता को। संतोषी माता अपने भक्तों के जीवन को संतोष और सुख समृद्धि से भर देती हैं। आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और अनुपमा देश पांडे के स्वर में ये भजन।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांड।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िए सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं दिखा पाए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान का आज का ये प्रसंग। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: हम अपना अधिकांश समय मात्र सोचते हुए व्यतीत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी समस्त गतिविधियां हमारे मस्तिष्क द्वारा परिचालित होती हैं, पर हम कभी भी फुर्सत में और पूरी सजगता के साथ दिमाग से 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं और न उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आप अपने सब काम बंद कर दीजिए और अपने दिमाग से परिचय प्राप्त कीजिए। दिमाग से संपर्क करने का मतलब है हम अपने सब काम बंद कर दें और शांतिपूर्वक उसके पास बैठ जाएं। सचेतन होकर मस्तिष्क से संपर्क को ध्यान लगाना या मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिविधि का विपरीत या विलोम ध्यान लगाना है। हाँ, तो आप ध्यान के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि आपका दिमाग निरंतर बिना रुके हुए सक्रिय बना रहता है। आप ध्यान पूर्वक इसकी गतिविधि को देखिए। मस्तिष्क के साथ संपर्क स्थापित करने और इसके समृद्ध कोष की ओर देखने के लिए समर्थ होने में थोड़ा समय लगता है। पेचकस को घुमाने पर शीशी की डांट धीरे धीरे बाहर आ जाती है। मस्तिष्क बड़ा चंचल है, हर पल कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे शरीर के अंगों के संकल्प के अलावा उहा पोहो उखाड़ पछाड़ करता रहता है। इसकी चंचलता की ओर इंगित करते हुए गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। उत्तर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बाहरी गतिविधियों को रोकना वैराग्य का प्रथम सोपान है। आपने इस सोपान को पार किया है। अब आप इस स्थिति में हैं कि विश्वास कर सके कि हमारे पास मस्तिष्क या दिमाग नाम की वस्तु है। मस्तिष्क से परिचय होने की स्थिति में हम अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वरना हमारा दिमाग हमें चाहे जिधर ले जाता है और चाहे जिस कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराता रहता है। इसको आप सुनामी लहरों का भाई बंधु समझ लीजिए।

0: द्वारा उत्पन्न कंपन अपने स्वभावानुसार पुनरावृत्ति करते हैं और अनुकूल वातावरण का सृजन कर देते हैं। समय और अभ्यास के साथ ध्यान की अवधि बढ़ती जाती है, हमारा मस्तिष्क मनमानी करना कम कर देता है और हमारी इच्छा अनुसार विचार उत्पन्न करने लगता है। ध्यान की प्रक्रिया दिमाग के साथ हमारी मित्रता करा देती है, वो आवेग मुक्त हो जाता है, हम भी आवेग मुक्त हो जाते हैं, लगाम की जरूरत नहीं रह जाती, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ध्यान एक सरल प्रक्रिया है, परंतु इसका निर्वाह सरल नहीं है। ये हमारे सामने हमारा विकृत रूप प्रस्तुत करती है, जिससे दो चार होने के लिए हमें साहस बटोरना पड़ता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से करते हुए केवल अपने दिमाग से दोस्ती करके अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करना है। याद रखिए, सच्ची दोस्ती की पहचान है दोनों के मध्य सुखद शांति।
1: अभी आपने सुना चिंतन। हम आकाशवाणी के नचिकेतापद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं गांधी कथा।

माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार तो छोड़ा, पर उस मित्र से मित्रता न छोड़ी। मैं चला था दूसरे को सुधारने और खुद गड्ढे में गिर गया और इस पतन का मुझे भान तक न रहा। उसी संग के कारण मैं व्यभिचार में गिरने से बाल बाल बचा। एक बार ये मित्र मुझे चकले में ले गया, वहां एक औरत के कमरे में मुझे सिखा पढ़ा के भेजा। मुझे उसे पैसा आदि नहीं देना था, उसका हिसाब पहले चुका दिया गया था। मेरे लिए तो गड्ढे में गिरना भर बाकी था। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे भगवान उबारना चाहता है वह गिरना चाहे तब भी पवित्र बना रह सकता है। उस कमरे में जाकर मैं तो अंधा ही हो गया, मुझे बोलने का होश न रहा। लज्जा से स्तब्ध होकर मैं उस स्त्री के पास चारपाई पर बैठ गया, पर बोली न निकली। स्त्री रुष्ट हुई और मुझे दो चार अनाप शनाप सुनाकर दरवाजे की राह दिखाई। मुझे उस समय तो जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और जी चाहा कि धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं, पर इस तरह बच जाने के लिए ईश्वर का मैं सदा कृतज्ञ रहा हूं। ऐसे ही चार अवसर मेरे जीवन में और आए, उनमें से अधिकतर में अपने प्रयत्न के बिना संयोगों के कारण ही मैं बच गया, ये माना जा सकता है। विशुद्ध दृष्टि से तो इन प्रसंगों में मेरा पतन हुआ ही समझना चाहिए, क्योंकि विषय भोग की जब मैंने इच्छा की तो उसे कर चुका। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करके भी प्रत्यक्ष कर्म से बच जाने वाले को हम बचा हुआ मानते हैं। इन प्रसंगों में इसी रीति से और इतने ही अंशों में मैं बचा माना जा सकता हूं। इसके सिवा कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना उस व्यक्ति के और उसके संपर्क में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है, और विचार शुद्धि होने पर उस कार्य से बच जाना वो ईश्वर अनुग्रह मानता है। जैसे हम ये देखते हैं कि न गिरने का यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है, वैसे ही अनेक संयोगों के कारण वह गिरना चाहते हुए बच जाता है, ये भी अनुभव सिद्ध बात है। इसमें पुरुषार्थ का कितना भाग है, कितना देव का, और किन नियमों के अधीन होकर मनुष्य अंत में गिरता है या बचता है, ये प्रश्न गूढ़ है। इनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय कभी हो सकेगा या नहीं, ये कहना कठिन है।

0: मित्र की मित्रता की अनिष्टता का ज्ञान मुझे अब भी नहीं हुआ था। उसके पहले तो अभी मुझे और भी कटु अनुभव होने बाकी थे। मेरी आंखें तो तब खुली जब मैंने उसमें वे दोष प्रत्यक्ष देखे जिनसे मैं उसे अलिप्त मानता था। क्योंकि मैं यथासंभव कालक्रम से अपने अनुभव बता रहा हूं, इसलिए दूसरे अनुभव आगे आएंगे। इसी समय की एक बात कह देना आवश्यक जान पड़ता है। हम दंपत्ति के बीच होने वाले मतभेद और कलह का कारण ये मित्रता भी थी। मैं पहले कह आया हूं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं जितना प्रेमी पति था उतना ही बहमी। मेरा शक बढ़ाने वाली ये मित्रता ही थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई में मुझे तनिक भी संदेह न था। इस मित्र की बात मानकर मैंने अपनी धर्म पत्नी को कितने ही कष्ट दिए। उस हिंसा के लिए मैंने अपने आप को कभी क्षमा नहीं किया। ऐसे दुख कोई स्त्री ही सह सकती है, और इसलिए मैंने सदा स्त्री को सहनशीलता की मूर्ति माना है। नौकर पर झूठा शक किया जाए तो वो नौकरी छोड़ देता है, पुत्र पर किया जाए तो वो पितृ ग्रह त्याग देता है, मित्रों में परस्पर संदेह उत्पन्न हो जाए तो मित्रता टूट जाती है। स्त्री को पति पर संदेह हो तो उसे मन ही मन कुढ़ते रहना होगा, पर यदि पति को पत्नी पर संदेह हो जाए तो उस बेचारी का तो मानो देव ही रूठ गया। वह कहां जाए? उच्च माने जाने वाले वर्ण की स्त्री अदालत में जाकर तलाक भी नहीं दे सकती। उसके बारे में ऐसा एक तरफा न्याय रखा गया है। मैंने भी वही न्याय किया। इसका दुख मेरे मन से कभी जाने का नहीं। इस संशय व्रतिका का सर्वथा नाश तो मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान होने पर ही हुआ, अर्थात जब मैंने ब्रह्मचर्य की महिमा समझी और ये जाना कि पत्नी पति की दासी नहीं बल्कि उसकी सहचारिणी सहधर्मिणी है, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं, और जितनी स्वतंत्रता भला बुरा करने की पति को है उतनी ही स्त्री को भी है। इस संशय काल की याद आने पर तो मुझे अपनी मूर्खता और विषयांध निर्दयता पर क्रोध आता है, और मित्रता विषयक अपने मोह पर दया आती है।
1: अब सुनिए ये भजन।

0: संस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एकोननवतिः धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33,200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40,100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी

0: बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटन्स के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जानकारी जिसका विषय है बेल है अनमोल।
3: बेल या श्रीफल आदिकाल से ही भारतीय जनमानस की स्वास्थ्य रक्षा में तत्पर है। पोषक और औषधीय उपयोगिताओं के साथ ही देवार्चनीय महत्व के चलते इसके वृक्ष, पत्ते और फल को अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है। रामायण काल में तो भगवान श्री राम के पंचवटी और चित्रकूट प्रवास के दौरान भी बेल का वर्णन आया है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं की दीवारों पर चित्रित फलों में बेल भी है। वर्तमान युग में भी बेल का महत्व कम नहीं है। इसके पोषणीय और औषधीय महत्व के कारण ही आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी इसकी विशेषताओं को स्वीकार करते हुए इसमें सुलभ तत्वों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। पके बेल के गूदे में पाए जाने वाले तत्वों का विवरण इस प्रकार है: नमी 60%, चीनी 14%, अम्ल 0.3%, फेनोलिक प्रत्येक 100 ग्राम में 2400 मिलीग्राम। इसके अतिरिक्त तेल जिसमें मर्मिलोसिन नामक एक रवेदार पदार्थ रहता है, इसके अलावा पेक्टिन गोंद और पीले रंग का उड़नशील तेल भी पाया जाता है। इसके प्रत्येक 100 ग्राम गूदे में 1.8 ग्राम प्रोटीन, 0.3 ग्राम फैट, 1.7 ग्राम मिनरल, 31.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 55 मिलीग्राम कैरोटीन, 0.13 मिलीग्राम काइमीन, 1.19 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन और 1.1 मिलीग्राम नाइसिन। इसके अलावा विटामिन सी 65 से 100 मिलीग्राम पाई जाती है। राइबोफ्लेविन की इससे अधिक मात्रा किसी अन्य फल में नहीं पाई जाती है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की मात्रा मीठे संतरे से भी अधिक होती है। बेल का पका फल गरिष्ठ और भारी होता है, लेकिन त्रिदोष कफ, पित्त और वायु का निवारक है। इसके उपयोग से बुढ़ापा प्रभावित नहीं करता है। ये ओज एवं कांति को बढ़ाने वाला मधुर एवं शुद्धा निवारक तथा बल वीर्य वर्धक है। पके बेल के गूदे से बना शरबत मृदु और विरेचक होता है। इसके पीने से जीर्ण, विवंध, अर्श और कुपचन में लाभ होता है। जिन्हें बार बार विवंध अतिसार हुआ करता है, उन्हें नित्य सुबह यह दिया जाता है। कच्चे बेल के फल की आयुर्वेद में भी काफी प्रशंसा की गई है। इसे भूनकर या सुखाकर प्रयोग किया जाता है। अतिसार और प्रवाहिका आदि विकारों में ये शीघ्र फलदायी है। जब रोगी दुर्बल हो और उसकी पाचन क्रिया ठीक ना हो पर ज्वर ना हो, तब इसका प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। जीर्ण विकारों में भी इसका उपयोग प्रभावकारी रहता है। पुराने उदर विकारों में बेल का मुरब्बा लाभदायक रहता है। बेल की जड़ हृदय की धड़कन, उदासीनता यानी डिप्रेशन, अनिद्रा और पागलपन की औषधि है। विषम ज्वर में भी इसकी जड़ का क्वाथ पिलाते हैं। विषैले जंतुओं के दंश में इसकी जड़ का लेप लगाया जाता है। इसके पत्ते का ताजा रस कफ, ज्वर, अभिसन्दन और अन्य कफ विकारों में उपयोगी है। बेल का फूल अतिसार, तृष्णा और वमन में अत्यंत उपयोगी है। बेल का बीज विरेचक होता है। इसके बीज का तेल पीला, उड़नशील, वाथर होता है।

0: है। पका बेल अच्छा टॉनिक है, इसे हृदय, आंत और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इसे मस्तिष्क ज्वर और टीबी की औषधि बताया गया है। कई पुराने रोगों में सभी औषधियों के विफल होने पर इसका प्रयोग किया जाता है और पुराने रोग की अचूक दवा बताया गया है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी जानकारी जिसका विषय था बेल है अनमोल। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें आज शाम 7:32 पर आप सुनेंगे सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफ हिंद जोगीरमपुरी पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिया बक बोर्ड ऑफ इंडिया। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जानकारी डेयरी व्यवसाय और उन्नत नस्ल के पशु।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है डेयरी व्यवसाय और उन्नत नस्ल के पशु। तो भाई देखिए, डेयरी व्यवसाय जो हमारे किसान भाई करते हैं वो दूध बेचने के लिए करते हैं। और भैया दूध जो हमारे पशु देते हैं जैसे गाय है या भैंस है, तो यदि उनकी उन्नत नस्ल नहीं होगी तो इससे हम अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते। तो डेयरी व्यवसाय करने से पहले सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी गाय या भैंस हो वो उन्नत नस्ल की हो। तो हमारे किसान भाई जो इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, तो वो यदि हम गाय की बात करें तो गाय के पशु को जैसे सिंधी गाय है, जर्सी है, साहिवाल है, थार पार्कर है या होलस्टीन फ्रीजन है, तो ये ऐसी नस्लें हैं जो भरपूर दूध देती हैं और ये हमारे देश में अच्छा उत्पादन भी देती हैं। लगभग लगभग हर प्रकार की जो अच्छी नस्ल की गाय है वो हमारे देश में अपना सर्वाइव कर सकती है, विकास कर सकती है, बशर्ते समय समय पर इनका टीकाकरण होना चाहिए और इन्हें संतुलित आहार मिलना चाहिए, संतुलित चारा मिलना चाहिए। अब इसी प्रकार यदि हम भैंस की बात करें तो भारत में विश्व की सबसे अच्छी नस्ल की भैंस पाई जाती है और उसको हम मुर्रा नस्ल के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा नस्ल की भैंस आती है। और इसी प्रकार गाय की बात करें तो एक दुकाजी नस्ल होती है जिसको बोलते हैं हरियाणा नस्ल। तो ये दूध भी अच्छा देती है और इसके बछड़े वगैरह खेती में कार्य भी अच्छे करते हैं। तो जब हम डेयरी व्यवसाय की बात कर रहे थे तो उन्नत नस्ल के पशु जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भैया जो दुधारू पशु होते हैं उनका ध्यान इस प्रकार होना चाहिए, उनकी पहचान ये होती है कि इन पशुओं के जो अयन होता है, अडर होता है, जिसको हम गांव की भाषा में बांक बोलते हैं, वो अच्छा बड़ा आकार का होना चाहिए। पैरों के नीचे पीछे की ओर भी निकला होना चाहिए, नीचे की ओर भी होना चाहिए। और जो पेट के नीचे दूध वाली शिराएं होती हैं जिनको दुग्ध शिरा बोलते हैं, तो दुधारू नस्ल के पशुओं की दुग्ध शिराएं काफी बड़ी होती हैं और जो थन होते हैं वो समान दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि बराबर थन होते हैं और समान दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे नस्ल के पशु हमें अच्छे लगते हैं। और जो उनकी आंखें हैं वो चमकदार होनी चाहिए, जो नथुने हैं जिनको हम नाक के सुर बोलते हैं वो भी चौड़े होने चाहिए, गल कंबल भी अच्छा होना चाहिए। और हमारा पशु जो दुधारू पशु है उसका रूप यदि हम पिछली तरफ से देखें तो तिकोना रूप देखने को मिलना चाहिए। और जिन पशुओं की गाय या भैंस की पूंछ लंबी और झब्बेदार होती है वे अच्छी नस्ल के पशु माने जाते हैं। एक बात और आती है कि हमें भैया ज्यादा बूढ़े पशु नहीं खरीदने चाहिए। तो बूढ़े पशु की पहचान कैसे होती है? नंबर एक बात तो भैया हम उसके दांत देखकर पहचान कर सकते हैं, यानी कि अपनी पूरी जवानी वो प्राप्त कर लेता है, उसके 8 के 8 दांत हो जाते हैं, दूध के दांत टूटकर उसके 8 दांत जो स्थायी होते हैं वो निकल आते हैं। और पहले दूध के दांत 2.5 वर्ष की अवस्था के आसपास, 3 वर्ष की अवस्था के आसपास टूट जाते हैं और स्थायी दांत दूध के निकल आते हैं। और पशुओं के जबड़े में जो गाय और भैंस होती है उसमें केवल निचले जबड़े में ही दांत होते हैं, तो दांत देखकर भी हम पशु की आयु का आकलन कर सकते हैं। और जैसे 3 वर्ष पर 2 दांत हो जाता है पशु, अगले 6 महीने में 3.5 वर्ष पर वो 4 दांत हो जाता है और उससे

0: चार वर्ष पर वो चार दांत हो जाता है और इसी प्रकार छह छह महीने बाद पशु 5 साल तक अपनी आयु के चरम पर आ जाता है, यानी कि जवानी पर जाता है, वयस्क हो जाता है। तो इस प्रकार के पशु खरीदें। और दूसरा, सींग के छल्ले देखकर भी हम पशुओं की आयु का आकलन कर सकते हैं। जिसके सींगों में जितने ज्यादा छल्ले होते हैं वह पशु उतनी ही ज्यादा उम्र का होता है। और भैया, जो डेयरी व्यवसाय में उन्नत नस्ल के पशु हैं उनका यह ध्यान रखा जाए कि समय समय पर टीकाकरण कराएं, समय पर उनको रातब दें, उनकी पशुशाला अच्छी हो और साफ सफाई हो, और उत्तम किस्म का हरा चारा भी हमारे पशु खाएं, और हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार डेयरी व्यवसाय और उन्नत नस्ल के पशु एक दूसरे के पूरक हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी जानकारी जिसका विषय था डेयरी व्यवसाय और उन्नत नस्ल के पशु। आकाशवाणी का ये नचिबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। धरती गाती है कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:25 पर, जिसमें आपको सुनवाए जाएंगे रोहिलखंडी लोकगीत। कलाकार होंगे विनय कुमार निगम। बात आसपास की प्रसारित की जाएगी हर रोज की तरह सुबह 9:50 पर। सुहाना सफर हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:00। जागरूक श्रोता कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर श्रोताओं से फोन पर बातचीत करने का विषय होगा हीट स्ट्रोक यानी लू से कैसे बचें। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। यह कार्यक्रम होगा NCERT द्वारा प्रायोजित। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियों का वक्त रहेगा 12:00। घर संसार में 12:15 पर क्रम रहेगा चिट्ठी थारे नाम की। श्रोताओं, कार्यक्रम का वक्त याद रखिएगा आज 12:15 पर। अपराह्न 1:15 पर प्रसारित की जाएगी कृषि निर्यात लाइव चौपाल की 7वीं कड़ी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। शाम 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी आपको सुनवाया जाएगा शाम 5:10 पर। युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:35 पर, जिसमें क्रम रहेगा ये शाम गजलों के नाम कहानी के उस पार। यंग अचीवर्स में आप सुनेंगे हिमानी पाल से सलोनी की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। शाम 7:32 पर आप सुनेंगे सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफे हिंद जोगीरमपुरी पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

0: जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एफएओ ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 1,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर

0: छत्तीसगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रीतुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी इस कड़कड़ाते धूप और भीषण गर्मी में घर के भीतर सुरक्षित और तरोताजा होंगे। सामान्य पिछले कुछ दिनों से सूर्य देवता सुबह ही अपनी पूरी लाली और तपिश के साथ प्रकट हो जाते हैं और दोपहर होते होते तो पारा आसमान छूने लगता है। सच कहें तो बाहर की गर्मी के हालात देखकर मन तो सबका यही करता है कि घर के अंदर ही रहा जाए। इस गर्मी में

0: नींबू पानी, गन्ने का रस या मट्ठे का गिलास अगर हाथ में हो तो मज़ा ही आ जाए। श्रोताओं, जब हम इस तपती हुई गर्मी और हर साल बढ़ते हुए तापमान की बात करते हैं तो दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि गर्मियाँ पहले से कहीं ज़्यादा लंबी, तीखी और अजीब होती जा रही हैं? कहीं अचानक सूखा तो कहीं बेमौसम बरसात हमने अभी पिछले दिनों देखी है। असल में ये तपिश सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि ये इशारा है एक बहुत बड़े संकट का, यानी जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज। और जब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का मिजाज बदलता है तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारे आसपास मौजूद रंग बिरंगे पेड़ पौधे, चहचहाते पक्षी, छोटे बड़े जीव जंतु और हम इंसानों पर भी इसका असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ये सब मिलकर ही तो एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारी धरती है वो रहने लायक बनती है। और यही है जैव विविधता। आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस पूरी दुनिया में 22 मई को मनाया जाता है। ये दिन 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। हालांकि ये दिन पहले दिसंबर के अंत में मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे 22 मई कर दिया गया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर काम करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो संकट है क्लाइमेट चेंज का, इस दिशा में बड़े स्तर पर प्रयास भी चल रहे हैं। दुनिया भर के पर्यावरणविद हैं वो धरती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी भारत सरकार भी हरित भारत मिशन जैसी योजनाएं शुरू कर रही है और जिसका उद्देश्य जंगलों के दायरे को बढ़ाना है। इसके अलावा जैव विविधता पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि हमारे स्थानीय पेड़ पौधे, विलुप्त होते जीव जंतु सुरक्षित रह सकें। और हाँ, जल संरक्षण के बिना तो पर्यावरण का बचाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो श्रोताओं, सरकार अपने स्तर पर नीतियाँ बना रही है, लेकिन असल में बदलाव तब आता है जब हम नागरिक भी इस जिम्मेदारी को उठाएं। सोचिए, अगर हर इंसान एक पौधा लगाए तो आने वाले वर्षों में ये दुनिया कितनी हरी भरी हो जाएगी। और देखिए, ये है जेठ का महीना तो इसमें तो गर्मी लगेगी ही, तो इसलिए खूब पानी पीजिए, सर को ढक कर रखिए और इस गर्मी में अपना खास ख्याल रखिए।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: तो श्रोताओं, विज्ञापन से पहले हम बात कर रहे थे अपनी प्रकृति की, अपनी धरती की, लेकिन एक खास बात और है जिसका आज हम अपने इस कार्यक्रम में जिक्र करने वाले हैं। वो है हमारा साहित्य, हमारी किताबें और हमारी भाषाएं। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो एक नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है और वो है ये हर लेखक, कवि और साहित्यकार के लिए एक सपने जैसा होता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार की। लेकिन श्रोताओं, इस कार्यक्रम में ये बात बताते हुए और आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि इस महान पुरस्कार की कहानी का सीधा नाता हमारे अपने नजीबाबाद शहर से है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश के इस सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार को शुरू करने वाले महान उद्योगपति और साहू जैन परिवार के मुखिया साहू शांति प्रसाद जैन का जन्म अपने नजीबाबाद में हुआ था और यहीं से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे शहर नजीबाबाद का और हमारे देश का नाम रोशन किया था। बात है साल 1961 की, तारीख थी 22 मई।

स्थापना 1944 में की गई थी, लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के महान कवि जी शंकर कुरूप को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और अब तक इसे कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा प्रदान किया जा चुका है। साल 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु को तमिल साहित्य के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार में सम्मान के तौर पर एक प्रशस्ति पत्र, 11 लाख रुपए और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो जब भी देश के किसी लेखक या साहित्यकार को यह ज्ञानपीठ सम्मान मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं नजीबाबाद की मिट्टी की महक और साहू शांति प्रसाद जैन की दूरगामी सोच भी शामिल है।

0: टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरत के साथ साथ, और अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की तारीख 22 मई क्यों है खास इतिहास के पन्नों में, कौन सी घटनाएं हुई थी, आइए डालते हैं नजर। आज की तारीख को साल 1984 को बछेंद्री पाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट को फतेह किया था। ये कारनामा करने वाली वे देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं और दुनिया की 5वीं महिला हैं। पर्वतारोहण और साहसी खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत ने स्वदेश में विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल परीक्षण 1988 में आज ही के दिन किया था, और 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए तमाम प्रयास किए। 1936 में आज ही के दिन लॉर्ड ब्रेवॉन ने बंबई में ब्रेवॉन स्टेडियम की नींव रखी। ये देश का पहला स्टेडियम है। 22 मई 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। आपने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर के पदों पर रहकर देश की सेवा की। आपको पद्म विभूषण के अलावा कई सम्मान मिले। आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1892 में आज ही के दिन अमेरिका के दंत चिकित्सक डॉक्टर वाशिंगटन शेफील्ड ने टूथपेस्ट ट्यूब का आविष्कार किया था। पहले टूथपेस्ट जार में बेचा जाता था, लेकिन अब प्लास्टिक ट्यूब में इस्तेमाल होने लगा है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का जन्म 1963 में आज ही के दिन राजस्थान के कोटा में हुआ था। 27 मई 1999 को कारगिल के ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान वे बंधक बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम के अंत में आइए अब नजर डाल लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। श्रोताओं, ये सुर्खी है अमर उजाला से। बिजनौर जिले में गर्म हवाओं और धूप ने किया परेशान, पारा पहुंचा 41 डिग्री के पार, अभी गर्मी और बढ़ने के आसार। अमर उजाला आगे लिखता है, यूपी समेत कई राज्यों में लू का रेड अलर्ट, दिल्ली में 14 साल की सर्वाधिक गर्म रात। उत्तर प्रदेश में जिला बांदा सबसे गर्म, 47.6 डिग्री पहुंचा पारा। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से शुरू हुई स्वगणना की प्रक्रिया 21 मई को समाप्त, 46.93 लाख लोगों ने भरे स्वगणना के फॉर्म। मकान गणना आज से शुरू, बिजनौर में 7,952 कार्मिकों की लगाई गई है ड्यूटी, आज से घर घर जाएंगे स्वगणना कर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के दौरान विदेशी मेजबानों को भेंट किए नायाब उपहार, भारतीय कला और संस्कृति की हो रही पूरी दुनिया में चर्चा। अफ्रीका में तेजी से पैर पसार रहे इबोला

वायरस को देखते हुए भारत और अफ्रीकी संघ ने अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए जून में ब्याज दरों को बढ़ा सकता है आरबीआई। अगले माह के पहले सप्ताह में होगी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हैदराबाद में आज शाम 7:30 बजे होगा। ये थी कुछ सुर्खियां, आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुन लेते हैं ये गीत।

भीगे बाल वो भीगा बदन वो भीगी भीगी हर धड़कन वो गाल हया में डूबे हुए वो होंठ वफा से लरसे हुए वो आंखें सोई सोई सी वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि CBI के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। CBI अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। VCK के वन्नी यारासु और IUML के AM शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टर

0: माइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नव भारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने

0: of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with the participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samar Singh for Akashwani News, Delhi.
1: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
2: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Kaumudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
1: The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team SIT of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
3: The three-member team will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25th June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate all related aspects. The court decision follows repeated concerns from the victim's family alleging tampering of evidence and suspension of facts. The bench emphasized that the CIP must examine every detail to ensure a comprehensive investigation. The crime, which shocked the nation in 2024, saw civic volunteer Sanjay Rai sentenced to life imprisonment. But widespread protests by doctors and civil society have kept the demand for justice alive. Shrandipan Dashkutu, Akashwani News, Kolkata.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AII News Alert. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. We have a report.
4: Burhan Hamza, alias Arjumand Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror acts in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college in Gojra, Muzaffarabad, was targeted when he came out of his college Thursday morning. The attackers fired multiple shots at close range and he sustained three bullets to the head. Hamza Burhan, born in 1999, hailed from Pulwama in Jammu and Kashmir. He went to Pakistan on valid documents where he joined the Al-Badr terror group. According to the Union Home Ministry, he was an active terrorist and commander of Al-Badr. Since going to Pakistan, he had been motivating youth to join Al-Badr and funding the outfit's terror activities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
1: Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
5: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so this is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today. Meanwhile, in Uttar Pradesh, temperature is breaking all records as the entire state is reeling under heat wave. On the fifth consecutive day, Banda district in the state recorded the highest temperature in the country of 47.6 degrees Celsius. More from our correspondent.
6: Torture of temperature continues in a state where mercury is touching new heights every passing day. Bundelkhand is worst hit area where temperature has gone beyond 45 degrees Celsius in most parts of the region. 47.6 degrees in Banda was not just highest in the country, but also 4 degrees above normal, which paralyzed life in the city. Prayagraj was not far behind with temperature reaching 46.6 degrees, 5 degrees above normal. Varanasi recorded 45.6 degrees Celsius. State capital Lucknow also experienced the hottest day of this season with mercury rising to 43.6 degrees, 5 notches above normal. People are having sleepless nights also because of mercury reaching 30 degrees in night. Met Department has warned about severe heat wave in some parts of the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. With this, CSK were officially eliminated from the season of IPL after finishing the league stage with just 12 points. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, CSK were bundled out for just 140 runs in 13.4 overs. Shivam Dubey was the top scorer with 47 runs. For Gujarat Titans, Mohammad Siraj, Rashid Khan and Kagiso Rabada each took 3 wickets. Siraj was the best player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7.30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabji.
7: Explore alternative energy sources, PM tells government amid West Asia crisis, headlines the Indian Express, while the Hindustan Times headlines reforms, delivery, West Asia in focus as PM meets ministers, and the Statesman headlines PM Modi chairs high-level governance review meeting amid global concerns. The Asian Age headlines, first coalition government in Tamil Nadu in 74 years, 23 join cabinet, while the Times of India says Vijay expands Tamil Nadu cabinet with 7 Dalit ministers. Congress back in government after 59 years. Almost all newspapers carry the story of the India-Africa-Delhi summit being postponed due to the Ebola crisis. The Tribune headlines, Ebola scare delays India-Africa summit. Most papers cover the story of Hamza Burhan, a key figure linked to the 2019 Pulwama attack, which killed 40 CRPF jawans being shot at in POK. The Hindu, in its editorial titled Castaway, writes that people must have the option to state they are casteless in the census. The paper adds that the Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing Census 2027. The Chief Justice of India remarked that any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of Nautapa, plane simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kaur rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की यकम जून को होने वाली पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आजीकर आपरूरेजी और कत्ल केस में इल्जाम पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का सरगना हमजा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में नामालूम मुतन्ना अफराद के हाथों मारा गया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी तवानाई खरीदना चाहता है अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। कुब्रुस के सदर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ममलिकत अजय तमता ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। कुब्रुस के सदर के हमरा वजीर खारजा ट्रांसपोर्ट मवासलात और कामकाज के महकमे के वजीर सीनियर अहदेदारान और कारोबारियों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद है। ये उनका भारत का पहला दौरा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
8: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर बातचीत करेंगे। इनमें तजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी तालीम सकाफत मोबिलिटी दिफा और सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक इख्तरा और तहकीक जैसे शोबे शामिल हैं। वो कसी रुखी इश्तराक समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के हामिल मामलात पर भी नजरियात का तबादला करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब मोदी कुब्रुस के सदर के एजाज में जोहरानी की मेजबानी करेंगे। शाम में कुब्रुस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। कुब्रुस के सदर का दौरा गुज़श्ता बरस जून में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कुब्रुस के दौरे के एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। भारत और कुब्रुस की करीबी और तवील मुद्दती शराकत दारी है। आइंदा बरस फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 65 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
7: बिग कैट अलायंस की पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो यकम जून को नई दिल्ली में होने वाली थी मुलतवी कर दी गई है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में बिग कैट के दायरे में आने वाली जानवरों की 7 अकसाम को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है, जिनमें शेर बबर शेर तेंदुआ बर्फानी तेंदुआ चीता जैगुअर और प्यूमा नीज उनका इको निजाम शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
9: बिग कैट अलायंस की बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस चौथी भारत अफ्रीका फोरम सबरा मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट से जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और ये मुल्क इन्हें महफूज रखने माहौलियाती पायदार निजाम और हयातियाती तनवो के तहफ़ की समत आलमी कोशिशों में अहम साझेदार भी हैं। चूँकि चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत سبھی متعلقہ ملکوں کی وسیع تر اور سرگرم شمولیت کو یقینی بنانے کی خاطر بگ کیٹ الائنس کی پہلی سربراہ کانفرنس بھی بعد میں طلب کی جائے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزارت کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے ملکوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سربراہ کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ دلی سے سامرتھ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
10: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں ریلوے کے وزراء مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
9: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے۔ میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بروقت اور پیش بندی کی کاروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے۔ ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی، ریل گاڑیوں، اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے۔ دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
10: کلکتہ ہائی کورٹ نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
8: کلکتہ ہائی کورٹ نے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ تین ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے۔ عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی۔ 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں نے انصاف کی مانگ کو زندہ رکھا۔ سندیپ داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان۔
10: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا، بعد میں وہ پاکستان چلا گیا اور البدر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا۔ پنجاب پولیس نے پٹھانکوٹ کے ایک باشندے کو پٹھانکوٹ جموں قومی شاہراہ 44 پر انٹرنیٹ سے منسلک سی سی ٹی وی کیمرا نصب کر کے پاکستان میں مقیم اپنے اقاؤں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے۔ पठानकोट के SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कौमी शाहराह 44 पर एक पुल के नजदीक CCTV कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम ISI के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाकई मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके कयाम की सहूलियात में इजाफा करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि नए भवन के तामीर होने से वहां हर साल आने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर उन्हें जदीद तर्ज का आरामदेह बुनियादी ढांचा फराहम किया जा सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी को चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुज के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकत दार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वज़रा से मुलाकात का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी रियासत शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। लगातार पांचवें दिन रियासत का बांदा जिला मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा। वहां दिन का दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
11: रियासत में पारा हर गुजरने वाले दिन के साथ ही नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। बुंदेलखंड खिता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां बेशतर मकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। बांदा में ये 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा है और इससे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। लोगों को रात के वक्त भी गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
10: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी आज सख्त गर्मी का इम्कान है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज रात में भी मौसम गर्म रहेगा। IMD ने पंजाब और मकरबी राजस्थान में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पानी की बचत को मुस्तहकम करने की खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
8: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, गैर मुल्की दौरे के बाद वजीर आजम की सदारत में काबीना की अहम मीटिंग। बहरान के दौरान आवाम को बिला तातुल सहूलतें फराहम करने का आज़्म। तमाम वज़रा को अपने महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम करने की हिदायत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफा अव्वल की अहम खबर है, मुल्क में SIR के तीसरे मरहले का आगाज। 16 रियासतों और मरकज के जर इंतजाम 3 इलाकों में खसूसी नजरसानी मुहिम चलेगी। वजीर दिफा ने जनूबी कोरिया में बनी हिंदुस्तानी जंगी यादगार का इफ्तिताह किया। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपने सफा अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। इसी सफे पर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता का यह बयान भी मौजूद है कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने शुरू, 7.72 लाख लोगों को मिलेगा फायदा।
10: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے. نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی یکم جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. ریلوے کے محکمے

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में दो प्रेमी फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है फिल्म समाधि से, आवाज़ है आशा भोंसले की। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आरटी बर्मन का।

आशा भोंसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म थी अंधा कानून। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: गोल्डन हिट्स कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर और बलवीर सिंह की आवाज में आनंद बख्श।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गोरा और काला का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: इसी के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 9

0: चल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2,70,00,000 दीदियां लखपति हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेसवे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया,
3: ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद सीधे से जोड़ रहे हैं। और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले।
2: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी के 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SI ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई 20 जून 2026 तक प्रांगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है, उन्हें अपने 11 अंकों की SI ID बतानी होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में, पंजीकरण के बाद दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि

0: बेनियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सविलीन विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया।
1: बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
2: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंदशहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंदशहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना, नोडल अधिकारी डिबाई व अनुप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी ना रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशालाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौआश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, सीसीटीवी क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रिया से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्रजीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें।
3: आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तुरंत उठे वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताजा पानी देने के लिए हरा चारा दें और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो, पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।

0: बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, सीडीओ सुश्री निशा अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आपने सुनी जिले की हलचल। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रोहिलखंडी लोकगीत। कलाकार हैं विनय कुमार निगम।

धरती गाती है कार्यक्रम में आज आपने सुने विनय कुमार निगम की आवाज़ में रोहिलखंडी लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज सुबह 10:30 पर जागरूक श्रोता कार्यक्रम में हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमारा हमारे श्रोताओं से बातचीत करने का जो विषय रहेगा वो विषय है हीट स्ट्रोक यानी लू से कैसे बचें। तो आप हमें 10:30 पर लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए,

9457078288, और हमारा विषय रहेगा हीट स्ट्रोक यानी लू से कैसे बचें। हम आकाशवाणी के नचिपापाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यम कंडवाल
1: और मैं इशिका कौशिक।
0: और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते और साथ ही विभिन्न सामाजिक विषयों और स्थानीय समस्याओं पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, आज का दिन कैलेंडर में बहुत खास है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना रहा है। क्या आप जानते हैं कि आकाशवाणी नजीबाबाद के अंतर्गत आने वाला पूरा क्षेत्र प्रकृति का कितना बड़ा खजाना है? आइए एक छोटी सी सैर करते हैं।
0: श्रोताओं, एक तरफ सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के मैदानी इलाके हैं, तो दूसरी ओर मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, इन सब के बीच से गुजरती है हमारी लाइफलाइन गंगा और रामगंगा बेल्ट।
1: बिजनौर का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जहां बाघों की दहाड़ है, तो वहीं मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पर स्थित हैदरपुर वेटलैंड दुनिया भर के हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है। विदुरकुटी से लेकर गंगा बैराज तक का यह पूरा इलाका दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, घड़ियालों और हिरणों से समृद्ध है।
0: इस साल यानी 2026 का जो थीम है वह हमारे कार्यक्रम के नाम से ही प्रेरित लगती है, एक्टिंग लोकली फॉर अ ग्लोबल इम्पैक्ट। यानी आप अपने आसपास छोटे और स्थानीय प्रयास करिए, पूरी दुनिया में उसका वैश्विक असर दिखाई पड़ेगा। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, प्रवक्ता जीव विज्ञान से हुई हमारी बातचीत। सर, जैव विविधता क्या है और जैव विविधता दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है?
2: सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके प्राकृतिक वातावरण की विविधता को ही जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। आज जिस तरह जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ऐसे समय में यह दिन हमें प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी याद दिलाता है। पारंपरिक पौधे हमारे स्थानीय पर्यावरण के अनुसार विकसित हुए हैं, इसलिए वे ज्यादा टिकाऊ और लाभदायक होते हैं। जैसे नीम प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने में मदद करता है, तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर है और जामुन पक्षियों व अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनता है। ये पौधे स्थानीय जैव विविधता को भी समर्थन देते हैं। इन पर तितलियां, मधुमक्खियां और कई पक्षी निर्भर रहते हैं, इसलिए मानसून में यदि हर व्यक्ति एक स्थानीय पेड़ लगाए तो यह प्रकृति के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
1: सर, आपने पिछले 10 सालों में ऐसा क्या बड़ा बदलाव देखा है जो आपको हैरान या परेशान करता है?
2: नजीबाबाद के परिवेश में सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने महसूस किया है वह है पक्षियों की संख्या में कमी और हरियाली का धीरे धीरे घटते जाना। पहले सुबह गौरैया, बुलबुल और कई स्थानीय पक्षियों की आवाजें आसानी से सुनाई देती थी, लेकिन अब उनकी संख्या कम होती दिख रही है। इसके पीछे कई कारण हैं: तेजी से बढ़ता शहरीकरण, पेड़ों की कटाई, मोबाइल टावरों का बढ़ना और रासायनिक प्रदूषण।
1: हमारे साथ उपस्थित हैं प्रकृति प्रेमी एवं नमो फाउंडेशन के संस्थापक श्री सुशील कुमार जी, आइए उनको सुनते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गंगा, रामगंगा और मालन जैसी नदियाँ हमारी लाइफलाइन हैं। प्रदूषण और अवैध खनन से हमारी जलीय जैव विविधता को किस तरह से नुकसान पहुंचा है?
3: अच्छे, बहुत रिलेवेंट है गंगा, रामगंगा और मालन नदी। जो मेरा अपना अनुभव है मालन नदी के साथ में, लगभग 40 वर्ष पूर्व मालन नदी का पानी हम पीते थे, मतलब, और नीला कंच होता था, और उसके नीचे जो रेत नजर आता था नीला एकदम। और आज मालन नदी का जो पानी है उसका जिक्र करते हुए भी एक अजीब संवेदना होती है कि वो नाला बन गई है। मतलब सभी नदियों का ये हाल है कि वो गंदा नाला बनती जा रही है। बेसिकली पूरा जो ये धरती है, तमाम ग्रहों में ये स्पेशल है, इसी पर जीवन है, पंच महाभूत की वजह से इस पे जीवन है, और उस जीवन को हमने नरक बनाना शुरू कर दिया है। मतलब सारी जो हमारे तमाम धर्मों में स्वर्ग की कल्पनाएं हैं, वो इस पृथ्वी पर सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी मानवीय हस्तक्षेप से, जैसे अपने खनन का जिक्र किया, इन सब वजहों से ये सब खराब हो गया है।
1: पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
3: जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि वेद वाक्य है कि 10 कुआ एक तालाब के बराबर, 10 तालाब एक सरोवर के बराबर, और 10 सरोवर एक पुत्र के बराबर, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। यानी एक वृक्ष को अगर आप पालते हैं, लगाते नहीं, पालते हैं, तो वो 10 पुत्रों के समान उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस प्रकार से हमारे यहाँ प्रकृति पे कितना ध्यान दिया गया, ये वेद वाक्य है जो बहुत पुराने लिखे गए होंगे। अब तो हमारे सामने समस्या है तो हम लोग उनको बोल रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जब वेद बने तब के ये वाक्य है। तो इस प्रकार से चुनौतियां जो है वो वही है कि किस तरह से हम मानव के स्वभाव को चेंज करें।
1: जैव विविधता को बचाए रखना क्यों आवश्यक है?
3: देखिए, मानव जीवन को जैव विविधता के बिना सोचा ही नहीं जा सकता। आपने देखा होगा पहले एक डोडो जीव जो है समाप्त हुआ, अब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। अभी आपने देखा गौरैया आपके आसपास से समाप्त है, गौरैया नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से जो ये एक चेन है, जो ईश्वर का बनाया हुआ ये सिस्टम है, इस सिस्टम में से कोई भी गैजेट कोई भी चीज निकलेगी तो उसका पूरे सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, हमारे जीवन पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अभी आपने देखा 2-3 साल पहले कोरोना देखा, तो ऐसी महामारियां कभी भी आ सकती हैं और हम लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है अगर जो हम जैव विविधता को संरक्षित नहीं करेंगे तो।
1: सर, आखिर में हम आपसे चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश दें।
3: देखिए, सब लोग जानते हैं कि इसके लिए काम ही करना पड़ेगा। हम लोगों को सबको अपनी भूमिका तलाश करनी चाहिए कि हमारी क्या भूमिका है ताकि हमारी अगली पीढ़ियां संरक्षित रहें। आज प्रकृति को बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, विशाल प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती होती। हमारे वेस्ट यूपी बेल्ट में वन्य जीवों और वन्य संपदा की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की क्या तैयारियां हैं, आइए जानते हैं टीएफओ बिजनौर से हुई हमारी इस विषय पर बातचीत। श्री जय सिंह कुशवाहा, आईएफएस प्रभागीय निदेशक सामाजिक वन प्रभाग बिजनौर से। सर, बिजनौर के रामगंगा बेल्ट और हैदरपुर वेटलैंड में हमें कौन कौन सी जैव विविधता देखने को मिलती है?
4: देखिए, जो ये हैदरपुर वेटलैंड है ये एक रामसर साइट है। यहाँ पे कई तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे अगर बर्ड्स में बात करें तो बार हेडेड गीस, रेड क्रेस्टेड पोचर्स, नॉर्थन सॉवलर्स, इंडियन स्कीमर, सारस क्रेन, स्टेपे ईगल इत्यादि पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र बारह सिंघा के लिए भी काफी फेमस है।
0: सर, इस पूरी बेल्ट को बचाने के लिए वन विभाग क्या कदम उठा रहा है?
4: जो आसपास के गांव वाले हैं वो मछलियां यहां से पकड़ते हैं, कुछ अपने कंज्यूमशन के लिए, कुछ थोड़ा बहुत मार्केट में बेचने के लिए। तो हम लोग वहां यहां पे रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहते हैं और जन जागरूकता भी फैलाते रहते हैं, और अगर हमें कोई पेट्रोलिंग के दौरान या फिर कोई सूचना मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे कोई अगर शिकारी मिलता है तो उस पर नियम के तहत उस पर जुर्माना या फिर जेल की कार्रवाई की जाती है।
0: सर, अमानगढ़ रेंज के विषय में बताइए और इसमें आने वाले दिनों में टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है?
4: इसमें टूरिज्म 2021 से शुरू हुआ है। यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व काफी छोटा है लेकिन जो जैव विविधता काफी ज्यादा है। यहाँ पे आपको हाथी, भालू, लेपर्ड, टाइगर, शाही सभी तरह के जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं।
0: सर, हमारे श्रोताएं अगर आना चाहें तो उनको किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
4: देखिए, सभी कोई जंगल में जाता है सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जानवरों के क्षेत्र में जा रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं, कि हम अनावश्यक वहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाएं, और जब भी हम जंगल के अंदर जाएं एकदम शांति से जाना चाहिए क्योंकि इससे जानवर डिस्टर्ब होते हैं और उससे खतरा ये रहता है कि जो जानवर है उत्तेजित होकर फिर अटैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जो भी आपके श्रोता हैं यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं टूरिज्म के लिए। बस ये 15 जून से लेके लगभग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक बंद रहता है, बाकी दिन चालू रहता है।
0: सर, साथ ही यहाँ क्षेत्र में पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन और एलिगेटर्स जिन्हें सर घड़ियाल कहते हैं, तो सर उस विषय में भी थोड़ा बताइए।
4: बैराज के आसपास जो है गंगा डॉल्फिन और ये एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह यहाँ पे भी पाए जाते हैं। जब बैराज के अपस्ट्रीम में आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी आपको मतलब कि जो सैंड बीच है वहाँ पे भी आपको घड़ियाल और ये मगरमच्छ आपको दिख जाएंगे सुबह के टाइम पे धूप सेकते हुए। और गंगा डॉल्फिन भी यहाँ पे है, पिछले सेंसस के हिसाब से यहाँ पे 12-13 डॉल्फिन देखी गई थी। विश्व जैव विविधता दिवस से मेरा एक ही संदेश है लोगों को कि जैव विविधता के प्रति जागरूक होएं। जैसे हम एक जीव हैं वैसे धरती पे और भी जीव हैं, उनको भी जीने का हक है, तो हमें उनको नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से जीव जंतुओं को देखना चाहिए।
0: तो श्रोताओं, आज हमने जैव विविधता का अर्थ भी समझा और इसके महत्व को भी जाना। आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अर्थात दिव्यम कंडवाल
1: और इशिका कौशिक को दीजिए अनुमति।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम बात आसपास की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर में। कार्यक्रम के इस अंक में आपके साथ हैं आपके अपने साथी, मैं नमित राज
1: और मैं हूं विवेक प्रताप सिंह। श्रोताओं, हम दोनों करेंगे कार्यक्रम में साल 2020 की बातें और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी हम करवाएंगे। इसी साल यानी साल 2020 में रिलीज हुई कुछ हिंदी फिल्मों के गीतों से हम आपको आपका मनोरंजन करवाएंगे।
0: जी हाँ, मनोरंजन हम आपका करवाएंगे ताकि आप एक बार फिर से याद कर सकें समय के उस पड़ाव को जहाँ शायद इतिहास में पहली बार लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय तो फिल्मों की शूटिंग रुकी रही और फिर जब शूटिंग शुरू हुई तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया।
1: और बिल्कुल हमारे श्रोताओं को याद भी होगा नमित कि सीरियल्स में यानी धारावाहिकों में जब कलाकारों ने मास्क लगाकर काम किया था और वाकई ऐसा दौर था वो कि जिस किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने भी इसके बारे में अपनी राय दी तो उन्होंने यही कहा कि ऐसी बीमारी तो उन्होंने जीवन में कभी देखी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक, और अखबारों में भी कभी कई बार ऐसा पढ़ने को मिल जाता था कि पुराने लोगों की राय पत्रकार मांगते थे, तो जो व्यक्ति 100 साल का भी है उसने भी हमेशा यही कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा
1: जी।
0: तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आकाशवाणी का सफर इस दौर में कैसा रहा, लेकिन शुरुआत करेंगे इस गीत से

0: देखिए नमित जी, कितना प्यारा गीत था, देशभक्ति से ओतप्रोत ये गाना था और फिल्म थी गुंजन सक्सेना। इस गीत में आवाज़ थी अरिजीत सिंह और अरहान हुसैन की। गीत तो देशभक्ति से परिपूर्ण था ही, लेकिन हम बात कर रहे थे कोविड की, कोविड के टाइम थी कि
1: बिल्कुल
0: उस समय जो लोग अपने परिवार के जो लोग थे वो आपस में आसपास आ गए थे, घर के अंदर रहते थे और आपस में बातचीत शुरू हो गई थी। धारावाहिक भी कुछ चले थे जिनमें मास्कों का प्रयोग हुआ था। और आज भी देखो, सर्दी जुकाम अगर होता है तो
1: जी
0: तब भी हम मास्क का प्रयोग करने लगते हैं, कि हमें
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: कोविड का जो जो
1: थोड़ा
0: दौर
1: सा
0: है ना,
1: डर
0: वो
1: है।
0: याद आ जाता है कि वो संक्रमण कहीं फिर से ना हो जाए।
1: और
0: तो
1: विवेक, देखिए बचाव भी ज़रूरी है। अगर इस
0: बिल्कुल
1: तरह का
0: बिल्कुल
1: कुछ भी अगर हमें हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी दूसरे को परेशानी
0: जी
1: ना
0: जी
1: हो।
0: जी और उन दिनों सब कुछ रुक गया था। घर में बड़े लोगों के दिलों तक यदि किसी ने रास्ता बनाया था तो वो हमारे ये गीत ही थे।
1: ये तो है विवेक, लोगों का टाइम ही देखो इस तरह से कटा था उस वक्त। मैं तो ये कहूँगा कि आकाशवाणी ने साल 2020 में अपना दायित्व पूरी तरह से निभाया था और लोगों का खासा मनोरंजन भी किया था।
0: सही कह रहे हो। और सिर्फ आकाशवाणी ही नहीं, उस समय संकट की घड़ी में हर नागरिक ने अपना दायित्व बड़ी बखूबी से निभाया था। सरकार ने जो अपील जनता से की उसे जनता ने माना और तब जाकर हम इस बीमारी से बच पाए हैं।
1: बिल्कुल, उनको तो श्रेय जाता ही है, लेकिन विवेक मैं ये कहूँगा कि मीडिया का रोल भी अहम था।
0: बिल्कुल
1: यदि
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी, दूरदर्शन और देश का समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपने दायित्व को ना निभाता, लोगों को जागरूक ना करता, तो समस्या शायद और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी।
0: जी बिल्कुल। तो देखिए, बातें तो हम बहुत करेंगे कार्यक्रम में आगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन अभी एक और गीत सुन लेते हैं।
1: जी
0: फिल्म है मलंग और आवाज़ है वेद शर्मा की।

0: वेद शर्मा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मलंग से ये खूबसूरत सा गीत। और श्रोताओं, साल 2020 की आज कार्यक्रम सुहाना सफ़र में हम बात कर रहे हैं। साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया था।
1: जी हाँ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आते ही पुराना हमारा जो 10+2 वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। इसकी जगह एक नया सिस्टम आया था जो था 5+3+3+4। इसका मतलब है कि बच्चे के शुरुआती जो 3 साल थे वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल से शुरू होकर स्कूली शिक्षा को हमने 4 चरणों में बांट दिया था। इसका मतलब ये भी था कि हमने मातृभाषा को बढ़ावा दिया जिससे कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिले, और इस वजह से बच्चे हुनरमंद ज़्यादा बनेंगे और समझने पे उनका जोर ज़्यादा रहेगा। किताबी कीड़ा बच्चे जो बन जाते हैं, यानी रटने पे जो उनका बच्चों का ध्यान था उस पर फोकस हटाकर हमने हुनरमंद बच्चे जो बनाने का जो ये बीड़ा था वो उठाया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके।
0: बिल्कुल, और ये इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण खबर थी जिस पर आकाशवाणी के माध्यम से अलग अलग तरह से कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों के इंटरव्यू प्रसारित किए गए थे। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बाल मंडल, युववाणी, इनके द्वारा नई शिक्षा नीति के बारे में बातें की गई ताकि लोग इसके बारे में जान सकें।
1: और ये सही भी था ना मित, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वर्षों के बाद यानी 1986 के बाद ये एक बड़ा बदलाव था। अब शिक्षा की नई संरचना लागू की गई थी तो लोगों को इसके बारे में बताना भी तो जरूरी था, और वो हमने बताया आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बिल्कुल श्रोताओं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आकाशवाणी लोगों को यानी अपने लिसनर्स को हर क्षेत्र की जानकारी मुहैया कराता है और उन्हें एंटरटेन भी करता है।
1: और लॉकडाउन की वजह से आकाशवाणी और दूरदर्शन को सुनने वालों की संख्या में भी कमाल की वृद्धि भी देखी गई थी।
0: बिल्कुल,
1: हाँ, जो इस बात को दर्शाता है कि लोग आज भी आकाशवाणी पर कितना भरोसा करते हैं।
0: तो इसी भरोसे के लिए आपका करवाते हैं एक बार फिर से मनोरंजन। हम कौन सी फिल्म का गीत बजा रहे हैं?
1: जी, ये है फिल्म नमित छलांग मूवी से जो आई थी 2020 में। लेकिन गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन हमारा जो सुहाना सफर के बाद एक कार्यक्रम है जागरूक श्रोता, जिसमें हम अपने श्रोताओं से फ़ोन पर बात करेंगे। उसका विषय हम एक बार हमारे श्रोताओं को याद दिलवा देते हैं। हमारा विषय है हीट स्ट्रोक यानी लू से कैसे बचे। देखिए, गर्मी तो बहुत बढ़ रही है और इससे बचना भी ज़रूरी है, तो हमारे श्रोता लू से कैसे बचाव कर रहे हैं और कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, इस विषय में हम अपने श्रोताओं से बात करेंगे। हमारा नंबर है 9457078288। तो आप हमें मिलाइएगा कॉल 10:30 पर। तब तक करते हैं कार्यक्रम में थोड़ा सा मनोरंजन अपने श्रोताओं का।

0: करेगा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं, साल 2020 प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के लिए एक बदलाव वाला साल रहा, जहां कोविड-19, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता और नई तकनीक के कारण आकाशवाणी के काम करने के तरीके में भी बदलाव देखे गए।
2: साल 2020 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल चैनल्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हुई, वो ये कि लोग मोबाइल और इंटरनेट पर रेडियो सुनने लगे, है ना विवेक?
1: बिल्कुल, न्यूज़ ऑन AIR ये ऐप इसी दौर में ज़्यादा लोकप्रिय हुई। 200 से ज़्यादा चैनल इस रेडियो स्ट्रीम पर आने लगे थे और करोड़ों लोगों ने रेडियो को ऑनलाइन सुनना शुरू किया था।
2: जी हाँ, 2020 में कई रेडियो केंद्रों पर कर्मचारियों और उद्घोषकों ने भी वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया, जिसमें रिमोट रिकॉर्डिंग बढ़ी और डिजिटल ऑडियो ट्रांसफ़र का उपयोग बढ़ा, क्योंकि आने जाने पर तो पाबंदी थी।
1: और नमित, आकाशवाणी के भी इतिहास का ये बड़ा ही तकनीकी बदलाव था। कार्यक्रम में बातें जारी रहेंगी, लेकिन एक और गाना सुन लेते हैं।

0: पता है श्रोताओं, साल 2020 में पुराने दुर्लभ कार्यक्रमों और रेडियो नाटकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया गया था।
1: जी हाँ, जिनमें शामिल थे पुराने नाटक, कवि सम्मेलन, भाषण और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम।
0: साल 2020 में क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों की भी डिजिटल लोकप्रियता बढ़ी।
1: विशेष रूप से मराठी, कन्नड़, बंगाली, तेलुगु और पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं वाले कार्यक्रम, इन भाषाओं के समाचार और सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑनलाइन खूब सुने गए।
0: आकाशवाणी स्पोर्ट्स की लाइव कमेंट्री भी डिजिटल माध्यम पर तेजी से लोकप्रिय हुई।
1: जी हाँ, कुल मिलाकर नमित, साल 2020 आकाशवाणी के लिए केवल चुनौतीपूर्ण वर्ष नहीं था, बल्कि यह पारंपरिक रेडियो से डिजिटल रेडियो की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण दौर भी था।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और आकाशवाणी इस नियम को फॉलो कर रहा था। आइए अब देखिए कार्यक्रम में, विवेक, समय बहुत ज़्यादा नहीं रहा है और हम चाहते हैं हम कार्यक्रम में एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं, तो चलते चलते एक और गीत कार्यक्रम में सुनवाते हैं।
1: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं गीत।

0: तो नमित, देखिए बातचीत हमने बहुत सारी की 2020 के बारे में, और कार्यक्रम का समय भी अब संपन्न हो चुका है, तो अनुमति ले लेते हैं अपने श्रोताओं से।
1: बिल्कुल, तो हम दोनों यानी नमित राज और
0: विवेक प्रताप सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। तो श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम जागरूक श्रोता में। मैं हूं आपके साथ विवेक प्रताप सिंह और मेरे साथ हैं नमित। तो देखिए, हमें बात करनी है, हमारा विषय हमने बता चुके हैं, हम कार्यक्रम के बीच में भी जो हमारा सुहाना सफर कार्यक्रम था उसमें भी हमने बताया, हमारा विषय था, विषय है हीट स्ट्रोक, यानी लू से हम कैसे अपना बचाव रखेंगे, इस जो गर्म हवाएं चल रही हैं और तेज़ गर्मी है, इसमें हमें कैसे अपना ख्याल रखना है। अपना नंबर हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457078288। तो देखिए नमित, हमने जैसे ही नंबर बताया कॉल आना शुरू हो गई है, तो देख लेते हैं किनका कॉल है हमारे पास। हेलो जागरूक श्रोता
1: जी,
0: कौन सा आप बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम जगदीश चंद खरबोनिया है।

0: जगदीश जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है। हाँ
0: जगदीश जी, कार्यक्रम जागरूक श्रोता में आपकी कॉल लगी है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है बात करने का, वो है हीट स्ट्रोक, यानी लू से कैसे बचें।
1: जी,
0: तो और आप ये भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम होता है जागरूक श्रोता, इसमें हम ये जानते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो कितने जागरूक हैं। तो अब जैसे हमारे क्षेत्र में तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और गर्म हवाएं चल रही हैं, तो इससे कैसे बचा रहे हैं अपने आप को?
1: थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी लेना चाहिए, ठंडा और उसका पानी पीना चाहिए, नींबू का,
0: जी
1: और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जरूरी होने पर घर से बाहर निकलना चाहिए।
0: ज़रूरी होने पे घर से बाहर निकलना चाहिए। जगदीश जी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा कि आप करते क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं?
1: मैं हिदायतपुर जोड़वाला का रहने वाला हूँ, ये जगह क्षेत्र में गांव पड़ता है
0: हिदायतपुर,
1: हिदायतपुर जोड़वाला।
0: अच्छा। और काम क्या करते हैं आप?
1: मैं रविदास आश्रम पर हूँ
0: अच्छा, आश्रम पे रहते हैं आप। चलिए, तो फिर
1: जी।
0: तो आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि आपको दोपहर में घर से बाहर
1: जी जी
0: निकलना
1: जी
0: पड़े,
1: जी
0: जो गाइडलाइन
1: हाँ, ऐसा
0: जो
1: कोई काम नहीं करता।
0: जी।
2: अच्छा, आपने बताया कि आप हिदायतपुर चौहड़ वाला, आप जलगढ़ साइड के आप रहने वाले हैं, वहाँ पर कालागढ़ जो डैम है वहाँ पर भी लोग
1: हाँ,
2: अपना,
1: कालागढ़ भी डाम है, लोग नहाने जा रहे हैं वहाँ गंगा में,
2: जी। तो ऐसे में देखिए हम, जी
1: बहुत लोग नहाने जाते हैं गंगा में। हाँ
2: तो ऐसे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप नदी क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे अपना खास ख्याल रखना है गर्मी से। देखिए, आप नदी में जाते हैं तो नदी पर भी कुछ जो जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं उनसे भी आपको बचाव रखना है, और डूब ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे डूबने का खतरा हो, अपने आप को उसमें भी बचा के रखना है।
1: हमारे गांव का एक लड़का पिछले साल डूब गया था।
2: जी। तो ऐसे में जो हम गर्मी से बचने के लिए ऐसे जगहों पर जाते हैं, इसमें भी हमें खास ख्याल रखना है। और देखिए, बार बार नहाना है, अगर आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है नहाना है तो आप नहा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि
1: जी सर, हमारे
2: घर
1: गांव के
2: पर आप
1: चारों
2: नहाएं।
1: तरफ, हमारे गांव के चारों तरफ नहर है। हाँ
2: तो ये तो अच्छी बात है कि चारों तरफ नहर है, तो थोड़ा सा जो तापमान है आपके गाँव का वो कम रहता होगा, और इसके लिए
1: हाँ
2: हाँ आपको ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता होगा। और देखिए, आपने बताया कि आप रविदास आश्रम में रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप जो हैं ज़्यादा बाहर जाते भी ना हो, लेकिन हम अपने दूसरे श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर वो जाना चाहते हैं तो कम से कम समय का ध्यान रखें कि सुबह 11 बजे के बाद और शाम 4 बजे
0: चार बजे के
2: से
0: बाद
2: पहले वो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो पूरे कपड़े पहने, सर पे जो है वो कुछ ना कुछ टोपी वगैरह या कुछ कपड़ा बांध कर जाएं। तो नमित, देखिए ये थे हमारे श्रोता, देखते हैं अगले कॉलर हमारे कौन है। हेलो जागरूक श्रोता
1: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार।
2: जी। नमस्कार सर, कौन सा आप बात कर रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
2: जी, शिमला से बात कर रहे हैं नमित
0: अच्छी जगह से बात कर रहे
2: जी।
0: हैं
2: देखिए, शिमला से फ़ोन आया है, हम बात कर रहे हैं लू के बारे में। इन्हें लू के बारे में पता होगा?
0: बिल्कुल। जब गर्मी देखिए विवेक जी हो रही है, तो ऐसा तो खैर कह सकते हैं हम कि यहाँ से
2: जी
0: शायद टेम्परेचर वहाँ पे कम हो,
2: हाँ,
0: लेकिन गर्मी इस समय वहाँ
2: बिल्कुल
0: पे बिल्कुल होगी,
2: जी
0: और बाकी हमारे श्रोता बताएंगे। तो
2: जी जी
0: कैसा कैसा मौसम है सर वहाँ का?
1: जी हमारे जो गर्मी की बात करें तो 30 तक टेम्परेचर है,
0: अच्छा
1: लेकिन आज थोड़ी बारिश हुई थी और हल्की बूंदाबांदी, और अब जो है 30 तक, जो है 30-35 तक, जो है हमारा तापमान गर्मी का रहता है।
0: जी। तो पहाड़ों पर यही देखिए विवेक जी फायदा होता है कि बीच बीच में बारिश हो
2: जी
0: जाती
2: जी
0: है,
2: जी
0: उसकी
2: जी
0: वजह से जो मौसम है वो अनुकूल हो जाता है रहने के।
1: जी
0: अच्छा,
1: जी जी
2: शिमला
1: जी
2: जैसी जगह में लू जैसा जो स्थिति है वो आती भी मुझे लगता है कि कम होगी।
0: कम ही होती है
1: जी। हमारे लू जैसी स्थिति कम रहती है, लेकिन जो आपके क्षेत्र में जो तापमान रहता है उतना हमारा नहीं होता है।
2: जी
1: तो हमारे जब हमारे 30 तक जो है लू होती है, तो उसमें हम बचने का प्रावधान पूरा रखते हैं कि हमें किस तरह से लू से बचना चाहिए।
0: जी
2: क्या करते हैं उस समय आप?
1: उस समय सबसे पहले तो ये है कि घर से बाहर नहीं जाते हैं, अगर दूर जाना पड़े तो फिर यह पत्ते जो थोड़े जो है खुले कपड़े होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि गाय के पास जाते तो फिर छाता का प्रयोग जरूर करते हैं, और खूब पानी हम पीते हैं, और पानी पीने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है सेव फल जो है हम खाते काट के खा लेते हैं।
2: जी, बहुत अच्छी बात है कि खाने पीने का ध्यान भी रखते हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड यानी पानी भी पीते रहते हैं आप। अगले कॉलर हमारे पास कौन है, नमित जी देखते हैं। हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो
2: हेलो सर, नमस्कार।
3: जी नमस्कार
2: कौन सर बात कर रहे हैं?
3: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अभिनाश से बोल रहा हूँ।
2: देखिए इतनी
0: बड़ी दूर दूर से
2: गर्मी हो रही है
0: जी।
2: और हमारे जो श्रोता की कॉल आ रही है वो आ रही है ठंडे प्रदेशों से।
3: जी जी बिल्कुल, हरा भरा और पेड़ पौधे से
2: जी जी
3: भरपूर
2: जी
3: हमारा जो त्रिपुरा है वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही अच्छे मौसम रहते हैं। और यहाँ पर लू मतलब क्या है, हम लोगों का अब तक ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से जो आपका कार्यक्रम है आज का लू के, वो ज्यादातर जो लू चपेट में आते हैं उन सभी के लिए है। फिर भी
2: जी
3: देखिए जब जागरूक श्रोता के मंच में हम लोगों का जब कॉल लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप लेके आते हैं तो अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं और हम सभी सुनते रहते हैं, या फिर अपने विचार रखने में जो हम सबको जो आनंद आता है वो आकाशवाणी के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे करने वाला है 8 जून को, तो इसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। और आपके इधर से भी शाम को 5 बजे आया था ये कार्यक्रम जो 90 वर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को,
2: जी
3: तो
2: जी
3: बहुत अच्छा लगा था जी।
2: और
3: तो
2: हमारा जो लगातार कार्यक्रम है एक चल भी रहा है शाम को 5 बजे, जिसमें आप अपने श्रोताओं से बात करते हैं 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में। जी,
3: जी
2: तो हम
3: जी
2: बात कर रहे हैं जागरूक श्रोता में अपने श्रोताओं से कि लू से कैसे बचाव करें। अब देखिए इनसे पहले जिनका कॉल आया था तो वो शिमला से आया था, मैंने
0: जी
2: आपसे बोला भी था कि इनको लू के बारे में पता भी होगा, पता होगा कि नहीं, और
3: जी
2: इन्होंने ये बात बोली भी कि हमें तो लू के बारे में पता भी नहीं है। तो
0: लेकिन विवेक जी एक मैं इनसे बात करना
2: जी
0: चाहता हूँ कि देखिए जैसे हमारे क्षेत्र में जो हमारे लिसनर रहते हैं उनके सामने समस्याएं दूसरी हैं, लेकिन जहाँ पर वो बात कर रहे हैं सिक्किम से उन्होंने कॉल किया है, तो वहाँ पर एक समस्या अलग ही होती है कि जो टेम्परेचर है ना वो एकदम से घटता है और एकदम से बढ़ता है।
2: बिल्कुल,
0: तो उस
2: बिल्कुल
0: समय ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, किस तरह से बचाव करते हैं अपने आप को, क्योंकि दोपहर में गर्मी हो जाती है और शाम को पारा इतना डाउन हो जाता है कि वहाँ पे भी फिर समस्या वाली बात होती है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
3: जी जी तो देखिए दोपहर में जब ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो हम सब घर से निकलते नहीं है, जब बहुत जरूरी जब कुछ सामान लाने होता है या फिर कहीं जब मत जाना ही पड़ता है तो हम सभी अपना प्रोटेक्शन के लिए जैसे छाता हो गया हो या फिर कोई पूरे कपड़े पहन कर ही निकलते हैं, और पानी का बोतल साथ में रखते हैं गर्मी से बचने के लिए। और खास करके जब ठंडी जब होता है तो हम देखिए क्या है कि अपने मतलब कि हल्का जो हम सब पहनते हैं जो वस्त्र और गर्मी वाला वस्त्र होता है, और इसमें क्या है कि ब्लैंकेट वगैरह के हम इस्तेमाल करते हैं छोटे समय, तो इन सभी से हम सबका बचने का। और पानी देखिए हम उबाल कर ही पीते हैं, क्योंकि पानी से ही देखिए बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो हम सबके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो इन सभी के लिए बचने के लिए हमें पानी का उपयोग बहुत शुद्धता से करना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। नमित, हम बात कर रहे हैं लू से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अच्छा देखिए, लू इंसानों पर तो असर करती नहीं है
0: जी,
2: लू हर किसी पे असर करती है, जैसे कि फसलें हुई, हमारे जो पशु पक्षी हैं उन पर भी हुई, और उनके जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर वो करती है, बच्चे हुए जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन पर भी ये असर करती है, और जो हमारे पशु हैं जिनको हम पालते हैं उन पर भी असर करती है। तो हम अपने अगले कॉलर से यही जानना चाहेंगे कि देखते हैं पहले तो के हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। हेलो जागरूक श्रोता
4: जी, आकाश वाली की युवा जोड़ी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी सर नमस्कार, अपना परिचय दें।
4: मैं ग्राम जुझेला थाना सिवाला क्लब इग्नोर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ।
2: जी सर क्या करते हैं?
4: मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ।
2: देखिए लेक्चरर हैं और टीचर हैं, बच्चों को जागरूक भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो मौसम तो देखिए गर्म है और लू भी चल रही है, कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं स्वास्थ्य का?
4: सूती कपड़े से जो अपना सिर ढककर चलते हैं।
2: जी जी
4: एकदम गर्म सर्द नहीं होते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं और सभी को करना चाहिए, नारियल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ORS का घोल का इस्तेमाल करना चाहिए।
2: जी
4: जब बाहर हम निकले तो छाता वगैरह लेकर निकलना चाहिए, खाली पेट ना निकले, बार बार पानी पीते रहे।
2: अच्छा एक चीज ये तो ये हुए कि हम सावधानी कैसे रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को लू लग गई, ठीक है, उसको जो गर्म हवा है वो लग गई, तो हम कैसे पहचान करेंगे?

0: उसकी पहचान ये मैं बताना चाहता हूँ कि पहचान कैसे हो।
1: जी
0: आपने सवाल कर लिया, बहुत अच्छी जगह पहुँचाया मुझे। तो उसमें जो हमें जो है लू का ये पता चलता है कि दस्त वगैरह आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, कमजोरी हल्का महसूस होने लगता है, चक्कर आने लगता है और उल्टी हल्का हल्का बुखार भी होने लगता है, ये पहचान होती है लू की।
1: जी बिल्कुल, बुखार सा आने लगता है और देखिए पसीना बिल्कुल नहीं आता है इसमें, ये खास तो खास पहचान है कि आपको बुखार जैसा लगेगा लेकिन पसीना नहीं आएगा। और जैसे कि आपने बताया सिर दर्द होता है और त्वचा भी हमारी रूखी हो जाती है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, उल्टी होना और बेहोश भी हम मतलब चक्कर आने लगते हैं और मांसपेशियों में भी ऐठन होने लगती है। तो ये सब जो हैं ये सब लक्षण हैं लू लगने के।
2: विवेक जी, राशि जी का प्रोफेशन देखिए ऐसा है कि वो अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर कौन जागरूक होगा। और आपने बताया कि आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, तो बच्चों को भी किस तरह से लू से बचना है वो भी इन्हें बताना इनका दायित्व है।
1: एक चीज, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि अगर देखिए लू अगर लग गई तो ये तो हमारे लक्षण थे, लेकिन प्राथमिक उपचार के बारे में हम क्या करेंगे उसमें?
0: प्राथमिक उपचार में सबसे पहले तो उसके माथे पर जो है थोड़ा ठंडा कपड़ा बांध देना चाहिए, हल्का भिगोकर।
1: जी जी जी,
0: तुरंत कंट्रोल होना चाहिए, बस उसे एकदम देनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर के आने जाने में तो देर भी लग सकती है, लेकिन उसे तुरंत जो है रोक लगाने के लिए ऐसा करना चाहिए हमें।
2: बिल्कुल, जी प्राथमिक उपचार जरूरी है।
1: जी प्राथमिक उपचार जरूरी है उनके माथे पर या जहाँ पर भी हो सके, मतलब गीला कपड़ा हम रख सकते हैं और जो अगर उन्होंने ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े भी हल्के कर सकते हैं या कपड़े ढीले कर सकते हैं उनके, मतलब बटन वगैरह खोल सकते हैं और हवा की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके चारों तरफ भीड़ ना लगाएं ऐसी व्यवस्था हमें रखनी चाहिए। और अगर कमरे के अंदर हैं तो कमरे की जो खिड़कियाँ हैं वो हमें खुली रहने देना चाहिए और जो है उनको लेटा देना चाहिए क्योंकि चक्कर आने लगता है। तो और अगर ज़्यादा हालत ख़राब है तो देखिए डॉक्टर के पास हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो धन्यवाद राशिद जी हमें हमें कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए।
0: जोड़ी को सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आकाशवाणी की जोड़ी हमें ऐसी लगी जैसा आज़ादी की जोड़ी लगती थी सरदार भगत सिंह की और चंद्रशेखर की।
1: वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिद जी,
1: बहुत बहुत थैंक यू।
0: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी ये दे रहे थे राशिद जी, टीचर हैं और ऐसे ही अगर टीचर हमारे समाज में हो तो जागरूक हमारे समाज बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। और लू के लिए तो हम बात ही कर रहे हैं और देखिए लगातार कॉल आ रही है, देखते हैं अगली कॉल हमारे पास किन की है। हेलो जागरूक श्रोता
3: जी। सर नमस्ते।
1: नमस्कार सर, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
1: उज्जैन मध्य प्रदेश का मौसम कैसा है?
3: जी काफी गर्मी है यहाँ पे, 45 डिग्री के लगभग टेम्परेचर चल रहा है, करीबन 15 दिन हो चुके हैं।
1: 15 दिन से लगातार? जी
3: हाँ जी, 15 दिन से लगातार ऐसा ही मौसम हो रहा है, काफी मतलब गर्म तेज हवाएं चल रही है। जी उससे बचने के लिए हम सबसे पहले तो घर पे रहते हैं, अगर कुछ जरूरी काम होता है तो सुबह निकल जाते हैं जल्दी और वापस शाम को, मतलब जल्दी शाम को निकलते हैं। इसके अलावा अगर दिन में कहीं जाना होता है तो मतलब कैप पहन के जाते हैं और मतलब ऐसे ग्लासेस पहनते हैं और पानी की बोतल साथ ले जाते हैं, मतलब पूरी सेफ्टी के साथ बाहर निकलते हैं।
2: अच्छा प्रेम जी, लास्ट टाइम

0: इसमें मतलब समय समय पर मतलब दूसरे दिन ही पानी देना पड़ता है, तब जाके बचती है।
1: किसानों के लिए बड़ी समस्या है विवेक जी इस समय, जैसे गर्मी ज्यादा होती है तो जो पेड़ पौधे हैं ना उन्हें भी डेली पानी ही चाहिए ही चाहिए।
2: इतनी इतनी धूप जो होती है पानी का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है।
0: आपको बताऊं मैं, जैसे कि अभी पानी देने के बावजूद भी अगर ज्यादा तेज गर्मी होती है ना, तो जैसे कि चेरी हुआ, जैसे कि भिंडी पालक ये सब्जी लगा रखी है ना, इनके पत्ते भी मतलब दिन में ऐसे मुरझा जाते
2: तो ऐसे में क्या करते हैं, बस सिर्फ पानी। अच्छा एक चीज और है कि इतनी गर्मी में तो पानी का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है, नहर वहर है आपके आसपास खेत के?
0: जी नहर तो नहीं है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ट्यूबवेल में तो पानी नहीं रह पाता है।
2: हाँ, तो ट्यूबवेल ठीक ठाक पानी दे रहे हैं?
0: हाँ जी काफी गहरे, मतलब आपको बताऊँ 1000 से 1200 फीट तक ट्यूबवेल कर रखे है यहाँ पे लोगों ने।
2: अच्छा,
0: इतनी गहराई से पानी निकाला हुआ है, वो भी पानी मतलब जिससे गर्म पानी आता है,
2: 1000 फीट से भी गर्म पानी आता है?
0: हाँ जी बिल्कुल पानी गर्म आता है, उसे कुएं में छोड़ना पड़ता है, उसे मतलब 2 घंटे के लिए ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद में ही सिंचाई होती है।
2: देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं बना रखी हैं हमारे
1: क्षेत्र में। आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेम जी हम आपसे यही कहना चाहेंगे क्योंकि आप एक किसान हैं और किसान को जाना पड़ता है अपने खेत पर ज़रूर, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह में और शाम में ही जाएं, दिन में क्योंकि बहुत गर्मी है तो उसमें आप अपने आप को बचाएं।
2: जी
0: जी बिल्कुल।
2: कॉल करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नमित कॉल आ रही है, देखते हैं किनकी कॉल है। हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो नमस्कार सर।
2: जी सर नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: सर मैं शाही मार्केट सिवारा जिला बिजनौर से आतिफ चौधरी बात कर रहा हूँ। सर
2: आतिफ चौधरी जी क्या काम करते हैं आप?
3: मेरा चिनाई का काम है सर
2: जी,
3: ठेकेदारी करता हूँ।
2: बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं, इतनी गर्मी में कैसे काम करते हैं?
3: बस थोड़ा सा काम करके थोड़ा आराम करना पड़ जाता है, पानी सानी पी लें।
2: अच्छा आपने बताया कि आप ठेकेदार हैं, आपके साथ और भी लोग काम करते होंगे, उनका ध्यान कैसे रखते हैं? शरबत की व्यवस्था रहती है जी।
3: जैसे कि सिकंजी, नींबू की सिकंजी पिला दी उनको और शरबत बनवा दिया कभी, इस तरह के आइटम इन्हें पिला देते हैं।
2: चलिए बहुत अच्छा है कि आप अपने
3: जब है सर, जैसे कि उनको उतारा पेड़ पे से और बिठा दिया पहले एक तरफ कि वो ठंडे हो जाएं, जब ठंडे हो जाएंगे तब उनको वो पानी पिलाते हैं, एकदम से पानी नहीं पिलाते, क्यों नुकसान हो दे सकता है पानी।
2: जी जी जी जी जी बिल्कुल।
1: अच्छा विवेक जैसे आसिफ जी बता रहे हैं कि ये चिनाई का काम करते हैं और क्योंकि गर्मी में इन्हें काम करना पड़ता है, तो ऐसे में समस्या देखिए एक ज़रूरी ये भी है क्योंकि एक तो गर्मी है और उसकी वजह से भी पानी की शरीर में ये डिहाइड्रेशन वाली समस्या हो जाती है, और क्योंकि गर्मी में काम कर रहे हैं तो पसीना भी काफ़ी निकलता है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा बचाव इन्हें रखना चाहिए क्योंकि बीच बीच में जैसे आपने बताया कि शरबत का आप सेवन करते हैं, आप जो आपके साथ मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें भी शरबत पिलाते हैं। जी
3: जैसे कि कपड़ा भिगो के उसको निचोड़ लिया पूरा, पानी उसका पूरा खत्म कर देते हैं
1: जी,
3: और फिर उस सर पे रख लेते हैं।
1: हाँ वही मैं अपने बात को कंटिन्यू यही करना चाह रहा था कि जैसे आप काम करते हैं तो बीच बीच में अपना या तो फेस पे पानी के छींटे मारें और सर पे भी इस तरह से कपड़ा रख कर गीला कपड़ा तभी काम करें।
2: और एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, ये डायरेक्ट उन्हें ठंडा पानी या शरबत वगैरह जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं तो उनको पहले कहते हैं कि पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, पहले शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक पिए या शरबत वगैरह जो भी पिए।
3: सर मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में एक मजदूर बहुत मेहनत कर रहा था, उसको बहुत पसीना आ गया और जब पसीना आ गया उसने फ्रीज का पानी मांगा मालिक से और उसने वो ठंडा पानी पी लिया, और सर ठंडा पानी क्या पिया वो पूरा ठंडा हो गया और मतलब कहने का बच नहीं सकता। हमें तो ये वो बात आज तक याद है सर।
2: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आसिफ जी।
3: जी जी तो थोड़ा सा ध्यान ये भी रखें कि कपड़े पे शरीर पे जब कपड़ा पहने तो सूती कपड़ा पहने,
2: जी जी
3: ना कि कोई गर्म कपड़ा पहनने से मतलब कहने का गर्मी लगेगी, और बाहर जाएं तो देखभाल कर जाएं, जैसे कि आप बताए रहते हैं 11 बजे तक, बिल्कुल सही बात है, 11 बजे तक आदमी

0: ठंड में रहता है वो निकल सकता है, लेकिन 11 बजे के बाद बहुत गर्मी हो जाती है
1: जी बिल्कुल,
0: और हो ही रही है गर्मी, अब भी बहुत गर्मी हो रही है सर।
1: जी। अच्छा देखिए विवेक जी, जो सरकार ने गाइडलाइन दी है वो 11 से 4 बजे के बीच की दी है,
2: जी
1: लेकिन हम देखते हैं 6 बजे भी शाम को इतनी गर्मी है ना,
2: बहुत
1: बाहर
2: बहुत।
1: गर्म गर्म हवाएं चलती हैं तो नहीं रुका जाता बाहर।
2: तो देखिए ध्यान तो रखना है, और देखिए इनका काम ऐसा है कि काम भी पूरा दिन करना है।
1: जी बिल्कुल
2: बिल्कुल। तो देखिए हल्का कपड़ा पहने और हल्के रंग का कपड़ा पहने, ये भी खास
1: इम्पोर्टेंट
2: बात है, ध्यान देने वाली बात है कि
0: जी
2: हल्के रंग का कपड़ा पहने, क्योंकि अगर
0: सर, जी सर,
2: ज़्यादा गाढ़े रंग का कपड़ा होगा, जैसे काला हुआ, नीला हुआ, इस तरह के जो कपड़े होते हैं, ये जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको सोखते हैं, जिससे गर्मी ज़्यादा लगती है हमें। तो इसलिए हल्के
0: जी
2: रंग के
0: सर,
2: कपड़े पहने, और हल्के कपड़े पहने, ज़्यादा मतलब मोटे कपड़े ना पहने, और सर को ढक कर रखें बिल्कुल, जो भी हम जिस तरह से भी ढक के रख सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं या कोई कपड़ा रख सकते हैं, गीला कपड़ा रख सकते हैं वो, इस वजह से मतलब। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिनके यहाँ आप काम करते हैं वो भी आपका खास ध्यान रखें।
0: जी सर,
2: जी बहुत अच्छी
0: नमस्कार
2: बात
0: सर।
2: बताई आपने कॉल करने के लिए, धन्यवाद। तो और किन की कॉल है नमित हमारे पास? हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो जागरूक श्रोता
2: जी सर नमस्कार,
3: जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग
2: कौन सर बात कर रहे हैं?
3: जी सर। मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
2: वकार जी का कॉल आ गया है हर बार की तरह, देखिए, और हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत
1: बिल्कुल।
2: ज़्यादा दिल लगाकर
3: और
2: हमारे प्रोग्राम सुनते हैं।
3: विवेक जी और नमित जी, आप दोनों भाई कैसे हैं?
2: हम बहुत बढ़िया हैं, एकदम
3: और
2: फर्स्ट
3: दोनों को
2: क्लास।
3: एक साथ सुन करके आज बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपने नियमित श्रोता वकार जी को कहा, और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो इनसे पहले भी आसिफ जी भी थे और
2: जी
1: राशिद
2: जी
1: जी भी
2: जी
1: थे,
2: जी
1: वो
2: जी
1: भी
2: जी
1: हमारे नियमित श्रोता हैं।
2: जी बिल्कुल, सभी हमारे नियमित
1: जी
2: श्रोता हैं जिनकी कॉल आई है, और बात बिल्कुल सही है, जो हमारे शिमला से आए, सिक्किम से आए, वो भी
1: जी
2: हमारे सारे नियमित
1: हाँ,
2: ही श्रोता
1: करते
2: हैं।
1: रहते हैं
2: जी
1: कॉल।
2: करते रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं
3: और
2: लू से बचाव की, कि किस तरह से आप लू से बच रहे हैं।
3: हाँ सर, लू से बचने का तो ऐसा है कि ज़्यादातर जो है, मतलब जैसे कि 12 बजे से लेकर के और शाम को कम से कम 4 या 5 बजे तक बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस टाइम गर्म मौसम है तो ज़्यादातर तो अवॉइड ही करना चाहिए घर से बाहर निकलना।
2: जी बिल्कुल
3: और जैसे कि भाई कामदार लोग हैं हमारे, किसान भाई भी हैं और भी हैं, मैं खुद हूँ, क्योंकि सारा दिन शॉप पर रहना होता है, तो खैर हम तो शॉप पर ही रहते हैं तो हमारा तो कोई धूप का या कुछ ऐसा वो होता ही नहीं है।
1: अच्छा वकार
2: अभी
1: जी,
2: किस किस चीज़ की शॉप है आपकी?
3: असल में मिठाई का काम करता हूँ, मिठाई
2: अच्छा
3: बनाता हूँ।
2: देखिए मिठाई की बात करी तो हमें याद आ गया कि खाने पीने का ख्याल हमें किस तरह से रखना है, किस तरह से हमारे जो श्रोता हैं या आप खाने का इस इतनी तेज़ गर्मी में अपना ख्याल रख रहे हैं।
3: सर खाने पीने का, मैं तो सबसे ज़्यादा इस टाइम तरबूज चल रहे हैं, खरबूजे चल रहे हैं, ककड़ी चल रही है, खीरे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो
2: जी
3: गर्मी से या लू से बचाव के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नींबू पानी भी हम पी सकते हैं, गन्ने का जो रस है वो भी इस समय मार्केट में है, और बेल का जो जूस है वो भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हमें पीते रहना चाहिए।
2: जी बिल्कुल।
1: अच्छा वकार जी, आप अपनी दुकान पर लस्सी भी रखते हैं या नहीं?
3: नहीं सर, हम लस्सी तो नहीं बनाते हैं।
2: तो इनकी दुकान पे अगर कोई जाए तो आप कैसे
3: क्या
2: बचाव करवाएंगे उसका?
1: है आपके पास ऐसा उन्हें देने के लिए?
3: हाँ हमारे पास तो सर कोल्ड ड्रिंक है, इस समय तो हम कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हैं।
2: लस्सी की व्यवस्था करवाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा।
3: हाँ बिल्कुल सर,
1: जी नहीं, कोल्ड
3: कोशिश
1: ड्रिंक को
3: करेंगे।
1: देखिए हम इसे
3: जी
1: नहीं ऐसा बोल सकते कि आप पीवे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है कोल्ड ड्रिंक, और
2: जी
1: जैसा
2: जी
1: हमने इससे
3: हाँ
1: पहले
3: सर,
1: विवेक जी बता रहे थे कि एक तो इतनी गर्मी है उसमें अगर हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है।
3: बिल्कुल सर,
2: अच्छा कुछ
3: बिल्कुल
2: लोग पीते भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक, अवॉइड करते हैं
1: बिल्कुल
2: इतनी गर्मी
1: बिल्कुल।
2: में। जी
3: हाँ सर, ज़्यादातर तो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि हम नींबू पानी अगर हम ज़्यादातर इस्तेमाल करें तो वो इससे बेहतर है,
1: लेकिन
3: बहुत
1: एक
3: अच्छा
1: अच्छी
3: है।
1: बात वकार जी ने ये कही कि हमें ऐसे समय पे ऐसे फल खाने चाहिए जैसे तरबूज है, जो हमें जो हमारे शरीर में पानी की
3: जिसमें
1: कमी है
3: भरपूर
1: उसको।
3: मात्रा में पानी होता है
1: जी
3: सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और अगर सर जैसे कि धूप में बाहर निकलना हो रहा है, क्योंकि भाई कामकाजी लोग हैं तो उनको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल।
3: तो वो सर पे अपने गमछा मतलब रख कर जाएं और पूरे तरीके से एकदम सावधान होकर निकले, और पानी की बोतल अपने साथ जरूर रख के
1: जरूर
3: निकले अगर
1: रखिए।
3: लंबे सफर पे निकल रहे हैं तो। पता नहीं रास्ते में पानी अवेलेबल है या नहीं है, या मतलब क्या दिक्कत हो, तो पानी की बोतल तो जरूर गर्मी में अपने साथ रखें।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल। अच्छा इस समय हमारे पास

0: पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत बहुत आसानी से घर पे बन भी सकती हैं, जैसे कि नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गई, बेल का शरबत हम बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को दस्त लग जाते हैं, उसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है, ORS, यानी नमक और चीनी का घोल बनाकर आप पी सकते हैं। वो भी पानी की एकदम से हमारे शरीर में जो कमी होती है वो पूरी कर देता है, तो इस बात का
1: और
0: भी हम
1: सर मैं
0: ख्याल रख
1: एक
0: सकते
1: बात
0: हैं।
1: और कहना चाहूंगा कि चलो भाई ये तो भाई हम लोग मनुष्यों की बात, लेकिन मैं यहाँ पे जानवरों को लेकर के और पक्षियों को लेकर के भी कहना चाहूंगा कि भाई
0: जी
1: उनको भी उतनी ही गर्मी लगती है और वो लोग भी मतलब परेशान रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो कर सकते हैं अपने लिए सब कुछ, वो अपने लिए बेचारे कुछ नहीं कर सकते,
0: जी बिल्कुल
1: तो उनके लिए अपनी छत पर के पानी रखें और दाना रखें ताकि वो भी बेचारे अगर गर्मी में परेशान हो तो वो पानी पी सके।
0: जी। छत के अलावा हम अपने घर के दरवाजे के आगे एक जो है बड़ा सा बर्तन रख सकते हैं, जिसमें वो पानी हो, कोई जैसे गाय या भैंस आ रही है, कोई कुत्ता आ रहा है, या छोटे
1: बिल्कुल
0: मोटे
1: सर,
0: जो जानवर
1: बिल्कुल
0: हैं वो भी
1: बिल्कुल सही
0: पानी
1: कहा,
0: पीकर
1: क्योंकि
0: अपनी।
1: सर देखने में आ रहा है इस समय जो हम डॉगीज हैं सर वो भी गर्मी से बहुत परेशान हैं
0: जी
1: और वो बेचारे नालियों में पानी पीते हैं, तो इससे
0: जी
1: अच्छा
0: जी
1: कोई
0: जी जी
1: बर्तन रख सकते हैं तो वो आराम से पानी पी सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और ख़ास तौर से बच्चों का भी हमें ध्यान रखना है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल सर, और
0: जी
1: बहुत ही अच्छा आपने विषय लिया था और
0: जी
1: प्रोग्राम का समय भी समाप्त हो रहा है
0: जी जी जी
1: और बहुत
0: तो
1: अच्छा लगा सर, मेरी लास्ट में ही सही मेरी कॉल लग गई और मेरी बहुत इच्छा थी आप लोग एक साथ आप लोगों से दोनों से बात करने की,
0: जी सर,
1: तो
0: बहुत
1: कोई
0: बहुत चाहेंगे
1: हथियार नहीं है कोई।
0: विवेक की हम एक कॉलर
1: जी
0: और
1: जी जी
0: कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
1: तो देख लेते हैं किनकी कॉल है।
0: हेलो जागरूक श्रोता।
1: हेलो,
0: जी सर नमस्कार,
1: हाँ
0: रेडियो
1: जी
0: से थोड़ा सा दूर हो जाएं।
1: नमस्कार, हाँ जी रेडियो तो बंद कर दी मैं
0: जी बहुत अच्छा किया आपने। कौन सा आप बात कर रहे हैं?
1: ग्राम धरना जिला उत्तराखंड से आपका निवेश होता मदन गिरी बोल रहा हूँ।
0: मदन
1: मदन
0: गिरी
1: गिरी
0: जी,
1: जी
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो हरिद्वार में कैसी गर्मी है?
1: गर्मी यहाँ से जो है 41 डिग्री सेल्सियस है। हाँ
0: जी
1: जी
0: अच्छा मदन जी, आप हरिद्वार ज़िले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी आवाज़ में मुझे टोन नज़र आ रही है वो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर साइड की आ रही है।
1: अच्छा जी अच्छा,
0: जी तो आप
1: मैं
0: उधर
1: तो
0: के
1: रोटी
0: रहने
1: के
0: वाले
1: पास
0: हैं क्या?
1: बोल रहा हूँ। हाँ जी
0: आप उधर के रहने वाले हैं क्या?
1: नहीं, मेरा तो गांव जो है जिला हरिद्वार में है जी, रुड़की
0: अच्छा,
1: के पास है।
0: रुड़की के पास। हाँ तो उस साइड
1: हाँ जी
0: हम कह सकते हैं।
1: हाँ जी,
0: चलिए, तो कैसे बचा रहे हैं आजकल गर्मी में अपने आप को?
1: ऐसा है जी मैं विवेक प्रताप सिंह और नमित राज को मेरी पहले तो नमस्कार कहता हूँ मैं, और मैं बता देना चाहता हूँ कि धूप से बचाव का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि 12 बजे से बाद में घर से ना निकले, और 4 बजे के बाद अगर निकलना जरूरी है तो 4 बजे के बाद निकले, और सर सर पर कोई साफा बांध दे,
0: जी
1: पानी अधिक मात्रा में पिए, नींबू पानी सादा पानी अधिक मात्रा में पिए तो अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: और देखिए, इसके अलावा हमें हल्का खाना लेना है, बासी
1: जी,
0: भोजन नहीं
1: हल्का
0: करना
1: खाना
0: है,
1: लेना
0: रखा
1: है।
0: हुआ ताज़ा खाना खाना है,
1: हाँ जी
0: बासी
1: ना,
0: भोजन
1: ताजा
0: नहीं
1: खाना
0: करना
1: लेना
0: है,
1: है,
0: हल्का खाना खाना है। जी
1: और जो आज फल चल रहे हैं मौसमी
0: हाँ
1: उनका भी प्रयोग करना है, जैसे खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है,
0: बिल्कुल
1: तरबूज है, उन सब का प्रयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो जो मदन जी ने जो एडवाइस हमें की है, हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं और पूरा कार्यक्रम हमारे जो श्रोताओं ने सुना वो पूरी तरह से समझ गए होंगे कि लू से हमें किस तरह से बचाव करना है, और अगर किसी को लू लग जाए तो उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना है। कार्यक्रम का समय देखिए धीरे धीरे समाप्ति की ओर है विवेक। तो
1: तो
0: अनुमति हम अपने श्रोताओं से ले लेते हैं जिन्होंने हमें कॉल किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लू से बचे रहिए और मौसम के हिसाब से ही अपने काम निपटाएं। तो कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी विवेक प्रताप सिंह,
1: और नमित राज को दीजिएगा अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम जागरूक श्रोता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कितने दूर कितने पास। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौड़ और जयश्री शिवराम की आवाज में। संगीत संजीव दर्शन का था और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म कल की आवाज से कुमार सानू और आशा भोसले के युगल स्वर में। समीर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कृषि निर्यात लाइव चौपाल का भाग 7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुबेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह, तो सुनना ना भूलें, समय याद रहे दोपहर 1:15। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म परदेश का एक खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे शब्दों में पिरोया था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। नदीम श्रवण के ही संगीत से सजा कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म एक रिश्ता से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए फिल्म एक रिश्ता के इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%।

0: में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वारभाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता यह है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते।

0: इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
1: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
2: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
1: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
2: हाँ।
1: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
2: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
1: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
2: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
2: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा

0: बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
2: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
2: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
2: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
2: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
2: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। ठीक है ना।
1: बिल्कुल ठीक है।
3: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
3: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: जी सुनिए।
2: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे इसको भी डालो।
2: हाँ,
4: ये देखो
2: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा
3: बच्चा। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
2: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: हमारा शहर हो
2: पटना।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
7: सालू मर्दा तिमक

0: का समाज सेवा।
1: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
2: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
1: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों को

0: ये तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को हैं। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दोपहर 1:15 पर कृषि निर्यात लाइव चौपाल कार्यक्रम का एपिसोड 7 प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुवेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह और जितेंद्र कुमार। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक अन्य प्रायोजित कार्यक्रम जिसका शीर्षक है हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे। आप सभी का प्रेम हमें लगातार मिल रहा है और आपके सवाल और सुझाव वो भी हम तक पहुँच रहे हैं। आगे भी आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर लिखिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
0: तो बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। रेखा एक मध्यम परिवार में पली बड़ी बड़ी ही होनहार लड़की है। साथ ही उसके माता पिता भी अपने बच्चों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्रेम और अधिकार देते हैं। रेखा के पिता किसान थे और उसकी माँ घर और बच्चों की देखभाल करती थी। रेखा की दो बहनें भी थी, जिसमें रेखा सबसे बड़ी होने के नाते सहनशील और बुद्धिमत्ता वाली लड़की थी, जो अपने पिता के काम के साथ अपनी माँ का भी हाथ बटाती थी।

0: और अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती थी। फिर एक दिन,
1: माँ आज पड़ोस वाली चाची आई थी, वो कुछ कह रही थी?
2: नहीं तो बेटा, बस इधर उधर की बात।
1: पर माँ मुझे लगा कि किसी की शादी की बात चल रही है।
2: तो इन सब बातों पर ध्यान न दे, तू तो चाची को जानती है ना, जब से तेरी 12वीं की पढ़ाई चालू हुई है हमसे ज्यादा उनको तेरी शादी की चिंता है।
1: पर माँ चाची ने भी अपनी बेटियों की शादी उम्र से पहले ही कर दी थी और वो अब मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोकर।
2: हाँ तो तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना अभी।
1: हाँ माँ, आप और बापूजी की वजह से ही मुझे चिंता नहीं है, वरना ये बाहर वाले लोग तो मुझे कब का ब्याह देते।
2: मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ। सुनो जी, आज फिर से वही पड़ोस वाली चाची आई थी और वही रेखा के ब्याह को लेकर फिर एक रिश्ता ले आई। आज ना तो रेखा बाहर थी, लेकिन आखिरी में उसने चाची की बात सुन ही ली।
3: देख रेखा की माँ, बिटिया की पढ़ाई हो गई, कॉलेज की पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। मैं उसके लिए एक ऐसा लड़का देखूंगा जो उसे आगे बढ़ाए। वैसे भी रेखा की उम्र की सारी लड़कियों का ब्याह हो गया है, गाँव में बस मेरी रेखा बिटिया ही रह गई है और इस साल 18 वर्ष की भी हो जाएगी। चलो समय हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ।
2: ठीक है, जैसा आप ठीक समझे।
3: अरे रेखा बिटिया, तुम, हम तेरी ही बात कर रहे थे।
1: हाँ सुना मैंने, आप भी मेरे ब्याह की सोच रहे हो।
3: देख बिटिया, हमने तेरे पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी और हम तेरे अच्छे भविष्य के लिए ही सोच रहे हैं। समय पर अब सब काम हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा।
1: पर बापू, मैं और पढ़ना चाहती हूँ और आपने वादा किया था कि आप मुझे आगे पढ़ने भी दोगे।
3: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: तो बापू फिर ये ब्याह की बात अभी से क्यों।
3: देख बिटिया, तू अपनी पढ़ाई कर और हम भी अपना काम करते हैं।
1: मतलब?
3: मतलब कुछ नहीं, हम सिर्फ तेरे लिए अच्छा रिश्ता देखेंगे।
1: और अगर अच्छा रिश्ता मिल गया तो?
3: तो पहले हम उनसे हमारी बिटिया की आगे की पढ़ाई की बात करेंगे।
1: और अगर बापू वो ना माने तो?
3: तो बिटिया रिश्ता वहीं खत्म।
1: सच बापू?
2: अरे आप दोनों बाप बेटी क्या हंसी टिटोली कर रहे हो, रात बहुत हो गई है, चलो अब सो जाओ दोनों।
1: हाँ माँ, बस मैं भी जा रही थी।
2: अरे आप ही क्या झूठ बोल रहे हो बिटिया से।
3: अरे इसमें झूठ क्या है, सही तो कहा मैंने।
2: पर आप तो?
3: देखो रेखा की माँ, समाज से ज्यादा मुझे अपनी बिटिया की चिंता है।
2: चिंता तो मुझे भी है उसकी,
3: और जो कुछ मैंने रेखा को कहा वो मैं करके भी दिखाऊंगा।
2: ऐसे तो फिर मेरी बिटिया कुंवारी ही रह जाएगी।
3: तुम देखना, मेरी बिटिया बहुत होनहार है और उसका दूल्हा राजकुमारी आएगा।
2: परमेश्वर करे आपका कहा सच हो जाए। चलो सो जाओ, अब बहुत समय हो गया है।
4: अरे मेरी बात तुम्हारे लिए मायने भी रखती है या नहीं?
2: अरे चाची आप ऐसा क्यों बोल रहे हो।
3: अरे चाची, आप आज सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना?
4: लगता है आजकल बेटा तुम इस बुढ़िया की बात को हल्के में ले रहे हो।
3: नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, भला आप हमारे बड़े बुजुर्ग ठहरे, आपकी बात मानना हमारा फर्ज है।
2: जी चाची जी ये सही कह रहे हैं।
4: मैं कुछ दिनों पहले रेखा बिटिया के रिश्ते को बता के गई थी, उसका कुछ किया भी या नहीं तुम दोनों ने?
3: जी चाची जी, हम उस विषय पर ही बात करने वाले थे।
4: मुझे तो लगता है तुम्हें रेखा बिटिया की कोई चिंता नहीं।
3: नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
4: अरे क्या ऐसी बात नहीं है, इस बात को मुझे बताए आज 5 दिन हो गए हैं और तुम दोनों है कि हाथ पर हाथ धर के बैठे हो।
2: नहीं चाची, हम बस आपके पास आने ही वाले थे इस विषय को लेकर।
3: आप आ गए हैं तो आइए साथ में नाश्ता करते हैं, बात करते करते।
2: वो दरअसल?
4: दरअसल क्या?
3: वो चाची जी बात ये है, अभी रेखा बिटिया पढ़ रही है और हमने उससे वायदा किया है कि वो जितना पढ़ना चाहेगी हम उसका साथ देंगे।
4: मुझे तो लगता है कि तुम दोनों बिटिया के मुँह में पागल हो गए हो, समाज में मुँह दिखाना है या नहीं तुम दोनों को?
3: समाज का क्या है चाची जी, वो तो कुछ भी करो उसका काम है बोलना।
4: तुम दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है, इतना अच्छा रिश्ता दिया, लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
3: चाची जी, आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि रेखा बिटिया के लिए अभी से अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे हैं।
4: पर ऐसा ही रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा इन्हें हाथ से जाने में।
3: हम इस विषय पर बात करके आपको जल्द ही बताएंगे।
4: चलो मैं चलती हूँ, जो भी हो मुझे जल्दी जल्द बता देना।
3: मैं चाची जी की चिंता को समझ सकता हूँ। वह शुरू से हमारे परिवार से ज्यादा लगाव रखती है और चाहती है कि रेखा बिटिया को एक अच्छे घर की बहू बनाए और नाम रोशन करे।
2: हाँ मैं जानती हूँ, पर रेखा बिटिया को कौन समझाए।
3: चलो मैं चलता हूँ खेतों पर, आज तो समय यूं ही चला गया, पता ही नहीं चला। हम इस विषय पर घर आकर बात करेंगे।
2: जी अपना ध्यान रखिए।
5: अरे गिरधारी, आज इतना लेट, लगता है सुना नहीं होगा। अरे गिरधारी।
3: जी सरपंच चाचा।
5: लगता है चिंता में लगते हो गिरधारी, सब सही चल रहा है ना परिवार में।
3: हाँ चाचा, परिवार में तो सब अच्छा है परमेश्वर की कृपा से।
5: फिर क्या सोच रहे थे कि मैंने दो बार आवाज दिए जाने पर भी तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था।
3: हाँ चाचा, बस बिटिया बड़ी हो गई है तो उसके रिश्ते आने लगे, बस वही चल रहा था दिमाग में।
5: ये तो अच्छी बात है, कोई भी अच्छा रिश्ता जांच कर हाँ कर दो।
3: हाँ आप सही कह रहे हैं, पर
5: कोई समस्या है क्या।
3: समस्या तो क्या है, पर हाँ थोड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ चाचा।
5: बेटा चाहो तो मुझे बता सकते हो, हो सके तो मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूँ।
3: चाचा आप रेखा बिटिया को जानते हैं ना।
5: अरे हाँ हाँ, बड़ी ही होनहार रेखा बिटिया है।
3: समाज की नज़र से उसके ब्याह का उम्र हो गया है।
5: तो इसमें बुरा क्या है।
3: मैं भी खुश हूँ इस बात से, बिटिया के लिए अभी से अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं।
5: तो इसमें समस्या क्या है।
3: मैंने रेखा बिटिया से एक वायदा किया था।
5: कैसा वायदा।
3: रेखा बिटिया पढ़ने में होनहार है।
5: वो तो है ही, गांव के टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं।
3: मैंने बिटिया को वायदा किया था कि वो जितना पढ़ना चाहेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा, और वो स्कूल की पढ़ाई के आगे भी पढ़ना चाहती है।
5: तो इसमें हर्ज ही क्या है।
3: चाचा समाज को देखूं तो उसका ब्याह मुझे अभी करना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं और कैसे करूं।
5: गिरधारी तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं।
3: मैंने बिटिया को कहा है कि अगर लड़के वाले तुम्हें आगे पढ़ने में सहयोग करेंगे तभी उसका ब्याह करूंगा, और उसे मुझ पर यह यकीन है कि बापूजी मुझे कुछ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए वो निश्चिंत हो गई है।
5: मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है।
3: क्या चाचा।
5: मैं समझ सकता हूँ हमारा गांव आज भी पुरानी सोच में जी रहा है। जब तक हम खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं करेंगे हमारी और हमारे गांव वालों की सोच नहीं बदलेगी। मैं कल ही स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर बालिकाओं की शिक्षा और बाल विवाह पर एक कैंप का आयोजन करने को कहता हूँ, शायद इसी से उनकी सोच में कुछ बदलाव आ जाए।
3: हाँ ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है, इससे गांव और समाज से भी बच जाऊंगा और रेखा बिटिया से किए वायदे को भी पूरा कर पाऊंगा।
5: तुम चिंता ना करो, अब ये काम मेरे हाथों में छोड़ दो, मैं देख लूंगा।
0: सरपंच जी के द्वारा स्कूल प्रशासन से बात करके गांव में बाल विवाह और बालिका शिक्षा से संबंधित दो दिन का कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिनके बेटियां हैं उन परिवारों को कैंप में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई। कैंप में शिक्षकों और सरपंच के माध्यम से बालिका शिक्षा के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया गया, साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम और कुप्रभाव पर भी जोर दिया गया। ये दो दिन के कार्यक्रम से गांव के लोगों को गीत और नाटक के रूप में अच्छी तरह से समझाया गया, जिससे गांव के लोगों की आंखें खुल गई और सभी ने बाल विवाह न करवाने पर जोर दिया, और साथ ही अपनी बेटियों को अच्छी और उच्च शिक्षा को पूर्ण करवाने में भी पूरा सहयोग करने का प्रण लिया। श्रोतो आज की कहानी भले ही आम सी क्यों ना लग रही हो, लेकिन ये कहानी हम अक्सर देखकर अनदेखा कर देते हैं। हम भले ही शहरों की जीवन शैली को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, लेकिन जहां शादी की बात आती है हमें लगता है जल्द हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं इस नाटक में सरपंच जी और रेखा के पिता के किरदार से बहुत प्रेरित हुई और आशा करती हूँ कि आप भी जरूर प्रेरित हुए होंगे। अगर रेखा के पिता और सरपंच जी इसे छोटी बात मानकर अनदेखा कर देते तो आज रेखा भी उन हजारों

गिनती में होती और समय से पहले ही इस दुनिया से चली जाती। श्रोताओं, मेरे मन में कुछ पंक्तियां आ रही हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। ये मेरी नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा पढ़ लिख जाने दो, प्रेम और ममता की मूर्ति पूरी तो गढ़ जाने दो, करके पीले हाथ उनके समझो यह नादानी है, तुमने लिख दी एक कली की फिर से दुखद कहानी है। अभी अभी तो हुआ सवेरा, धूप तनिक चढ़ जाने दो, अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा लिख पढ़ जाने दो।

0: श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ आज का ये नाटक आपको पसंद आया होगा। नाटक से जुड़े सवाल और सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और पिछले दिनों में कुछ श्रोताओं के सुझाव से आज के कार्यक्रम के बाद पूछे गए सवाल का आप सभी उत्तर जरूर दें। तो उठाइए कलम और लिखिए आज का सवाल। आज का सवाल ये है, रेखा के पिता गिरधारी जी इस बाल विवाह को रोकने के लिए और दो कौन से तरीके अपना सकते थे जो इस नाटक में नहीं बताया गया। मैं आज का प्रश्न श्रोताओं फिर से दोहराना चाहूंगी, रेखा के पिता गिरधारी जी इस बाल विवाह को रोकने के लिए और दो कौन से तरीके अपना सकते थे जो इस नाटक में नहीं बताया गया। श्रोताओं, इस सवाल के जवाब आप हम तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। फोन करने के लिए आप हमारा नंबर लिखिए, हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
0: आप चाहें तो हमें पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता लिखिए, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। हम फिर मिलेंगे आज के ही दिन इसी समय पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 12:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को थारे बहना कुमुद की प्यार भरी राम राम। थारे अपने इस कार्यक्रम में थारा खूब स्वागत। और सुनाओ बहनों, क्या हाल चाल है? सच्ची कहो बहना, गर्मी तो खूब ही हो रही, और ऐसे में अपना, अपने परिवार का और गैलो गैल अपने ढोर डंगरों का भी खूब ध्यान रखियो, ना तो गर्मी अपना रंग दिखाई देगी और बीमार कर देगी सबको। आज के कार्यक्रम में थारे लियो क्या क्या है, जरा थम जाओ, थोड़े से जरूरी संदेश सुन लें, फिर जानकारी देंगे तुम्हें अच्छी।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हाँ तो बहनों, कार्यक्रम में थारा एक बार फिर स्वागत। आज सबसे पहले तुम्हें जानकारी दे दें, आज 22 मई को हम मना रहे हैं जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जानना चाहो क्या है ये दिवस और क्यों इसे मनाने की जरूरत पड़ रही? पर बहनों पहले यूँ तो समझ ले मैं कि जैविक विविधता आखिर है क्या। तो बहनों ये तो तुम्हें ही बेरा होगा ही, आज धरती पर जीवन अकेले इंसानों और जानवरों का ही ना है, जाने कितने अनगिनत जीव जंतु, कीड़े, पेड़ पौधे और समुद्र में रहने वाले जीव होंगे। उनका रहने का ढंग भी तो सबका अलहदा अलहदा है। धरती पर मौजूद सभी जिंदा प्राणियों का ये रूप ही जैविक विविधता कहलावे है बहनों। यो जैव विविधता जब तक बनी रहेगी जीवन का अस्तित्व भी बचा रहेगा। तो अगर हम नू कह में धरती पर जीवन समर्थन तंत्र की आधारशिला यो जैविक विविधता ही है तो बहनों गलत ना है। अलग अलग जाति के जीव मिलके हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में बड़े मददगार हुए हैं। बहनों अगर यो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सुचारू रूप से चलो जा तो बीमारी फैलने का डर ना रहता। बड़ी बीमारी है जो इनसे खत्म हो, मैं पता भी ना चलता कितनी बीमारी तो नहीं खत्म हो जा। जंगल है, नम जमीन हो और मैंग्रोव जैसे जो वन हैं, ये जैव विविधता से भरपूर हैं और ये हमारे वायुमंडल से सबसे जरूरी काम करे हैं। कौन सा? और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करे हैं, जिससे जलवायु बदलने से जो असर हो ना वो कम हो जा, गर्मी ना रहती हमारे पर्यावरण में। और तो और बहनों, हमारे भारत देश जैसे विकासशील देशों की बड़ी जनसंख्या अपनी आमदनी के लिए प्राकृतिक संसाधनों पे तो निर्भर है। बहुत से मच्छी पकड़ के मच्छी बेचे हैं, अब बहुत से देखो गाय की दूध पे निर्भर रह में है अपनी आमदनी के लिए। खेती बाड़ी पे तो कितना देश की जनता जो है निर्भर हैगी, ये तो तुम भी जानो हो, तुम तो तारे घर तो खेती हो। पर बहनों एक खतरे की बात भी है इसमें। नू कहें एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के हिसाब से धरती पर रहने वाले जीवों की लाखों प्रजातियां आज बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हैं। कुछ का तो बिल्कुल नामो निशान ही मिट गया इनके में, और इनमें हमारे जंगल, पशु पक्षी, स्तनधारी जीव, समुन्द्र में रहने वाले जीव सभी शामिल हैं। बहनों ये महज आंकड़े ही ना बताते बल्कि एक ऐसे ग्रह की मदद की गुहार बताते हैं जो अपना जीवन और जीवन जीने का संतुलन दोनों खो रहा। कारण? इंसान की गलती। बहनों जैव विविधता में कमी आने से हमारे जीवन पर बड़े बुरे प्रभाव पड़ रहे। पता कैसे? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का अंदाजा क्या है कि पिछले 100 वर्षों में बहुत सी फसलें ऐसी जो खेतों में से खत्म ही होगी, उगी ना पानी इतनी मेहनत करने के बाद भी, समझ लो नस्ल ही खत्म होगी। और हमारे पशुधन की भी बहुत सी नस्लें ऐसी जो लुप्त हो गई, कीमती औषधीय पौधे जो बीमारियों के इलाज में काम आवे थे उनमें से ज्यादातर खत्म हो रहे। क्यों? जंगलों की कटाई हो रही। आज से देखो सेहत पर कितना बड़ा खतरा मंडा रहा। तो बहनों सच किया जा तो जैव विविधता आज के दौर में कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही, जिनमें पर्यावरण में रहने वाले जीवों के आवास में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जागरूकता की कमी शामिल। इसलिए बहनों इस जैव विविधता की रक्षा करना महज सरकार या एक संस्था का ही काम न होगा। देखो जी, हम प्रकृति से इतना कुछ ले रहे हैं, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बने उसके लिए। हमें भी चाहिए कि जो उसके जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है, इसकी हम रक्षा करने में जितना हो सके मदद करें। भाई आखिर हमारे लिए तो भगवान जी ने बनाया है ये सब। तो इसलिए बहनों स्थानीय समुदायों, स्कूलों, युवाओं और जितने भी नागरिक समाज संगठन हैं सबको मिलकर इस प्रकृति के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी धरती की बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। और ना सोचेंगे तो बिना आने वाले टाइम में तो और भी काम खराब हो जाएगा। अगर हम मिलकर चलेंगे, इस बारे में सोचेंगे और कुछ कदम उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह की रक्षा हो सकेगी और एक बढ़िया जीवन हम उन्हें देने में सफल हो सकेंगे। तो बहनों, यो तो थारे से हमारी बातचीत रही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। अब बारी आज के खास क्रम की। तो बहनों, जैसा कि तुम जानो ही हो, आज है माह का चौथा शुक्रवार और आज हमारी बारी रह वह है क्रम चिट्ठी थारे नाम की का। हाँ, तो देखो आज तो बड़ी सारी चिट्ठी मिली हमें, चलो शुरू करें पढ़ना। तो बहनों, सबसे पहली चिट्ठी हमें मिली है ग्राम रसूलपुर कैलोरा जिला मुजफ्फरनगर से, और लिखने वाली हैं शालिनी, सृष्टि, दिव्या और आनिया। क्या लिखती हैं ये? हाँ, ये लिखे हैं कि घर संसार कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली सभी बहनों को प्यार भरी राम राम। आगे इन्होंने लिखा है, हम आपका कार्यक्रम हमें बेहद पसंद है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर बुधवार और शुक्रवार हम इस कार्यक्रम को सुने। कार्यक्रम में दी जाने वाली खास जानकारियाँ हमारे ज्ञान को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही रोजमर्रा के मुद्दों पर भी हमारा ध्यान खींचती हैं। हमें थोड़े ही दिन पहले जानकारी हुई कि आकाशवाणी इस साल अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इसके लिए आपके पूरे आकाशवाणी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा आपका साथ बरसों यूं ही बना रहे। ज्ञान और मनोरंजन का अतुलनीय स्रोत आकाशवाणी से हमारा नाता बना रहे। पुनः आपको शुभकामना। तो सबसे पहले तो इतनी प्यारी सी चिट्ठी लिखने के लिए शालिनी, सृष्टि, दिव्या और आनिया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सब कार्यक्रम को सुनो हो और आपको पसंद भी आवे है तो इसके लिए आपका आभार। आपने आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर आपने इतनी प्यारी शुभकामनाएं हमें लिख के भेजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों। कार्यक्रम में इसी तरह आगे भी चिट्ठी लिख के हमारा उत्साह बढ़ाएंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है हमें। तो बहनों, ये अगली चिट्ठी हमें मिली है अमरोहा जिला मुरादाबाद से। इसे लिखा है मंगलेश, राधा, लवी और हैप्पी ने। ये लिखती हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम हम काफ़ी समय से सुनती आ रही हैं। दोपहर के समय आपके केंद्र से महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं सभी हम सुनते हैं। घर संसार कार्यक्रम हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली सभी बहनें जब गांव की बोली में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं तो सच में हमें हमारे गांव की दुनिया में ले जाती हैं। सभी क्रम भी एक से बढ़कर एक होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले थारा स्वास्थ्य क्रम में थायराइड की समस्या के बारे में जानकारी दी गई, जो बहुत ही उपयोगी लगी। आपके माध्यम से हम अपना एक संदेश अपनी सभी बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस भीषण गर्मी में पानी और बिजली दोनों का बहुत सोच समझकर उपयोग करें। कार्यक्रम में यदि हमारा खत शामिल होता है तो हम आगे भी चिट्ठी लिखना जारी रखेंगे। तो सबसे पहले तो चिट्ठी लिखने के लिए मंगलेश, राधा, लवी और हैप्पी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम पसंद करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थारा स्वास्थ्य क्रम में थायराइड की समस्या के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी, हमें भी जानकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने जो खेत अपने खत में पानी और बिजली दोनों का सोच समझकर उपयोग करने की सलाह दी है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और इस समय गर्मी का देखो मौका चल रहा है, बहुत अच्छी गर्मी पड़ रही खूब, तो उसमें दो पीने के पानी की तो किल्लत हो ही रही बहनों, तो उसमें अपना पानी का भी खूब सोच समझ कर इस्तेमाल करें। फालतू नहा बहाएं बिल्कुल भी, है ना, जितना हो सके बचा के चलें पानी को पीने के। और बिजली का इस्तेमाल तो देखो थारे अपने लिए भी बढ़िया है, बिजली का बिल भी कम आवेगा और देश के लिए भी भलाई का काम कर लोगी एक आप। तो आज आपका खत कार्यक्रम में शामिल हो गया है, उम्मीद करें हैं आप आगे भी खत लिखने का यह सिलसिला जारी रहे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म सलामी से। संगीत नदीम श्रवण का है और शब्द रचना है समीर की।

0: আপনার শুনে ভালো করে আসেনি আসেন আপনি
1: সবচেয়ে খুশির বাদ এনে যে দু হাজার এক বছর পনেরো কিছু আমার সজীব বসাল লাইভ বসাল जिसे आज हम जनपद किजनौर विकास क्षेत्र कोतवाली के ग्राम पंचायत हैदरपुर से प्रसारित कर रहे हैं। तो सुनाना पूजे का यह सजीव कार्यक्रम उस समय याद रखिएगा जो शहर एक वक्त चल रही है।
2: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुनाह से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, संगीत साजिद वाजिद का है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: इस समय आप सुन रहे हैं मिड डे मेलोडी। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 1:15 से आप सुनेंगे हमारा सजीव प्रसारण कृषि निर्यात लाइव चौपाल। ये लाइव चौपाल आज आप सुनेंगे जनपद बिजनौर विकास क्षेत्र कोतवाली के गांव हैजरपुर से। तो समय याद रखिएगा अब से थोड़ी देर बाद यानी कि दोपहर 1:15।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म बिच्छू से विनोद राठौड़ और अलका याग्निक के स्वर में। संगीत आनंद राज आनंद का है और शब्द रचना है समीर की।

0: विनोद राठौड़ और अलका याग्निक के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बिच्छू का ये गीत। संगीत आनंद राज आनंद का था और शब्द रचना थी समीर की।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म गर्लफ्रेंड से। आवाजें हैं कुमार सानू और साथियों की, संगीत डब्बू मलिक का है। इस गीत के बोल लिखे हैं प्रवीण भारद्वाज ने।

0: स्टोरी के लिए जिम्मेवार केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि दोपहर 1:15 से किसान भाई सुनेंगे सजीव प्रसारण कृषि निर्यात लाइव भोपाल, जिसे आज हम जनपद बिजनौर विकास क्षेत्र कोतवाली की ग्राम पंचायत हैजरपुर से प्रसारित कर रहे हैं। तो सुनना ना भूलेगा हमारा ये विशेष सजीव कार्यक्रम कृषि निर्यात लाइव भोपाल, समय याद रखिएगा अब से थोड़ी देर बाद यानी कि दोपहर 1:15।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का आज का ये अंतिम गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम के स्वर में फिल्म वीर जारा से। संगीत मदन मोहन का है और इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं. फ्रेंड, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी. यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी.
3: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The seats are vacated by Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar and AIADMK MP CV Shanmugam, who were recently elected to the State Assembly. The by-poll will also be held on the 18th of next month. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border Project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Forces security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. The Home Minister said the security of international borders must be viewed as a broader territorial responsibility rather than an isolated task to tackle the challenges. Mr. Shah said despite vulnerabilities and multiple challenges, the force has consistently upheld the nation's pride.
4: Padma Vibhushan. BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
2: Nishchint karne ka kaam Seema Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
3: Lok Sabha Speaker Om Birla has congratulated Thiruvanchur Radhakrishnan on being elected as the Speaker of the 16th Kerala Legislative Assembly. In a social media post, Mr. Birla expressed confidence that Mr. Radhakrishnan's vast legislative experience and deep understanding of parliamentary traditions will guide the House with fairness, wisdom and dignity. He wished him a productive and successful tenure ahead. A Delhi court today deferred its decision till the 9th of June on framing charges against Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav, his family members and others in the alleged money laundering case linked to the IRCTC hotel scam. The case is being investigated by the Enforcement Directorate and is based on a predicate offence registered by the Central Bureau of Investigation. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon session today. The Sensex climbed 492 points to 75,675. And with that, we end this news bulletin.
5: आकाशवाणी लखनऊ है. अब आप शाही सवानों से इलाकाई खबरें सुनिए. वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से ज्यादा के 19 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में 2014 के बाद हम नए भारत के दर्शन कर रहे हैं, ये वजीर आजम का विजन है।
6: हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
5: इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश की। जनाब शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज के कयाम के जरिए राजा राम मोहन राय ने समाजी तौहियात, तगयानूसी तस्वरात और अदम मसावात के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज को तोहम परस्ती से लेकर अक्ल की तरफ, बुरे तरीकों से तरक्की पसंद शऊर की तरफ ले गए। जदीद तालीम के फैलाव में उनका ताउन हमेशा कौम को मुतासर करता रहेगा। रियासती सनती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल अहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरक्याती प्रोजेक्टों, जारी प्रोजेक्टों और एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किए जाने वाले सनती इलाकों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के खुलने से पूरा खित्ता कार्गो का एक अहम मरकज बनने के लिए तैयार है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो पूरी लगन के साथ काम करें और पूरे इलाके की

0: भाई हैं उनकी आय दुगनी हो। जैसे मोदी जी ने बोला हुआ है कि 2022 तक या 47 तक हमें विकसित देश बनाना है, तो विकसित देश तभी बनेगा जब हमारा जो कृषि आधारित व्यवसाय है उसमें जुड़े हुए किसानों की आय बढ़े। तो निर्यात से वो एक बढ़ेगी। निर्यात से कैसे बढ़ेगी? क्योंकि निर्यात से जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, क्योंकि निर्यात के लिए चाहिए हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्वालिटी प्रोडक्ट को हम कैसे गेन करें, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका, जो हमारा उत्पाद है उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, इस तरीके के सवालों के जवाब देने के लिए ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो आप लोगों के बीच में रहते हैं। दूसरा, जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे किसान हैं, युवा किसान हैं, वो इस व्यवसाय से, खेती से दूर होते जा रहे हैं। तो वो कैसे जुड़ेंगे? जब उनको उनकी उपज का, उनके उत्पाद का लाभ अच्छा मिलेगा, अच्छी मार्केट मिलेगी। ये और ये भी एक मार्केट दिलाने का तरीका गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है कि अच्छी मार्केट आप दिलाओ, अच्छा मूल्य आप उनकी उपज का, उत्पाद का हमारे युवा साथियों को दिलाओ, तो जो उनके उत्पाद होंगे उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसमें नवाचार नवोन्वेष शामिल करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ये भी एक निर्यात का एक हमारा एक उद्देश्य है गवर्नमेंट का। दूसरा, अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि हमें डॉलर को बचाना है, तो डॉलर बचाने के सात आठ तरीके उन्होंने जैसे गिनवाए कि सोना कम खरीदना है, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत है उनका नियमित संयमित हमें उपयोग करना है। तो जब हम निर्यात करेंगे तो डॉलर हम अपने देश में लेकर के आएंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर आप प्राचीन समय में भी देखें, वस्तु विनिमय के हिसाब से चलती थी कि मैंने अपने सामान के बदले किसी से कोई दूसरा सामान ले लिया, वो होता था वस्तु विनिमय। वो अगर आप देखें तो आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में होता है। जैसे कि सपोज करो मेरे यहाँ पे उड़द या मूंग हुई, ठीक है, और आपके यहाँ पे सब्जी की कोई फसल हुई, टमाटर गोभी आलू कुछ भी, तो मूंग और उड़द मैंने, आपने उनको धड़ी, दो धड़ी, 10 धड़ी उनको दे दी, उसके बदले में जब तक भी उनका खेती का सीजन चलता रहा सब्जी वाला, उसके बदले में वो मुझे आलू टमाटर गोभी देते रहे, तो दोनों का काम चलता रहा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऐसा नहीं होता है, सबके पेट भरे हुए हैं। तो एक ऐसी उन्होंने मुद्रा इजाद की हुई है डॉलर, आप अक्सर सुनते होंगे डॉलर, तो उस डॉलर में व्यापार करने के लिए हमारे पास भी डॉलर होना चाहिए। तो वो डॉलर अपने पास खींचने के लिए हमें एक्सपोर्ट जरूरी है। तो इन सब आप उस एक्सपोर्ट के लिए कैसे जुड़ेंगे, ठीक है, आप निर्यातक कैसे बनेंगे, क्योंकि कई तरीके हैं निर्यातक बनने के, वो भी हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो हमारे एडियो साहब हैं, वो आपको बताएंगे। आप समूह बनाकर करेंगे या इंडिविजुअल कर सकते हैं, या जैसे उत्पाद की बात आती है, प्रोडक्ट में आपके दम होना चाहिए, और आजकल डिमांड है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक आप कैसे उगाएंगे, ऑर्गेनिक का कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे आपको मार्केट मिलेगी, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए इस तरीके की चौपाल हम हर माह के चौथे शुक्रवार को आयोजित करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं एक आपको देता हूँ, आपके पड़ोस के ही जिले हैं, बागपत हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, जब इनकी धान की उपज पैदा होती है तो ये यूपी में नहीं बेचते, जहां इनको अच्छा दाम मिलता है, इनको अच्छा मिलता है हरियाणा के करनाल में, तो ये करनाल में चले जाते हैं। सेम यही प्रोसेस है, आपको अपना जो उत्पाद है उसको भारत से निकालकर विदेशों की मंडी तक पहुंचाना है। वो उसके लिए क्या टोटल प्रोसीजर होगा, क्या क्या उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब बताने के लिए ही यही हमारी चौपाल का मेन उद्देश्य है। इस तरह की चौपाल हम आयोजित करते हैं। बाकी आपके मन में जो भी कोई इस निर्यातक बनने से रिलेटेड, अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप डॉक्टर सुमन नरवाल जी से, एडीओ हमारे विकास कुमार कोतवाली ब्लॉक के मौजूद है, इनसे कर सकते हैं। जी प्रमोद जी,
1: जी देखिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इस चौपाल के बारे में बताया है। और हम अपने सुनने वालों को एक चीज और बता दें, आज जहां पर हमारी ये कृषि निर्यात लाइव चौपाल हो रही है वो गांव है जनपद बिजनौर की, तहसील नगीने का गांव हैजरपुर। और इस हैजरपुर गांव की एक विशेषता ये है कि जो हम बासमती की बात करते हैं, इस हैजरपुर गांव की बासमती बहुत प्रसिद्ध है, जिले भर में नहीं बल्कि बाहर भी इसको पहचाना जाता है। पुराने जमाने में सुभेंद्र भैया एक नाम हम सुनते थे, हंसराज।
2: बिल्कुल, देखिए हंसराज चावल सभी को याद है और उसकी खुशबू भी हमें याद है। तो देखिए ये हमारी लाइव चौपाल है और जिसका उद्देश्य ये है कि एक किसान बीज से लेकर और फसल उत्पादन तक बहुत मेहनत करता है, अच्छी फसल उगाता है, लेकिन बाजार के मामले में हम फेल हो जाते हैं, अच्छा मूल्य हमें नहीं मिलता है। तो हम किस तरीके से संगठित होकर एफपीओ बनाकर हम एकत्र हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं और हम निर्यातक भी बन सकते हैं, दूसरे देश में भी भेज सकते हैं, तो इस बारे में पूरी जानकारी के लिए हम चलते हैं जो कि बीईडीएफ मेरठ से हमारी वैज्ञानिक है सुमन देवी जी, तो उनके रुख करते हैं और जानते हैं कि एक किसान जो कि केवल अपने खेत में खेती करता है, मेहनत करता है, वो किस तरह से एकत्र हो सकता है, संगठित हो सकता है और एफपीओ तैयार करके वो निर्यातक बन सकता है।
3: सभी को नमस्कार। जैसे कि उन्होंने बताया है कि मैं बीडीएफ से आई हूँ और आप लोग, कुछ किसान कह रहे थे कि हम लोगों ने फसल तो ले ली लेकिन अब हमारी फसल बिक नहीं रही है। आप खुद भी अपनी फसल को बेच सकते हो। कैसे? आप स्वयं एक्सपोर्टर बन सकते हो। एक्सपोर्टर बनने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नाम की कोई फर्म बनानी, जैसे बताते हैं ना बलबीर एंड सन, कुछ ऐसा नाम की फर्म बनाओ। उसके लिए आप क्या करो, सीए से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सीए के पास जाओ, उसको बताओ कि मुझे अपने नाम की फर्म बनानी है। उसको आप अपने डॉक्यूमेंट दोगे जिससे क्या वो आपको फर्म बना के नाम देगा और जीएसटी नंबर ला के देगा। उसको अब आपको क्या चाहिए, उसके बाद अब आपको चाहिए आईईसी कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फिर वो कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक डीजीएफटी की साइट है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसको खोलना है साइट गूगल पे, डीजीएफटी डालना है, वहां पे आप सर्च करोगे तो खुल जाएगा। वहां पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप उसमें सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो आपने फॉर्म बनाया उसका नाम डालना है, उसको जो जीएसटी नंबर है वो डालना है और जो फोटो है, सारे डॉक्यूमेंट को उससे पहले आपको क्या पीडीएफ में बना लेना है। पीडीएफ समझते हो, ठीक है, पीडीएफ बना ली। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद लास्ट में मांगेगा वो पेमेंट, उसकी सिर्फ फीस कितनी है, 500 रुपए। 500 रुपए डालोगे जब आप, तो आपका एक आईईसी कोड अपने आप बन जाएगा। अब आपके पास क्या आईईसी कोड आ गया है, अब आपको क्या करना है, अगर आप एग्रीकल्चर में एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं जैसे कि चावल में या किसी और फसल में, तो आपको जो पेड़ा के साइड पे जाना, वहां पे है आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, मतलब आपको आरसीएमसी का एक सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप हम रजिस्ट्रेशन करोगे सर्टिफिकेट के लिए, जैसे ही आप अपना कोड डालोगे आईसी कोड, ऑटोमेटिक ही वो जो आपने डीजीएफटी पे इन्फॉर्मेशन डाली थी उसको उठा लेगा, ठीक है। उसकी फीस कितनी, उसकी है 5000 फीस। उससे क्या, 5000 फीस आपको सिर्फ एक बार पे करनी है अगर आप मर्चेंट वाले एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, 5 साल तक आपको कुछ नहीं देना फिर। लेकिन अगर आपको जैसे मिल लगानी है, प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए आपको क्या हर एक साल 5000 रुपए देकर उसका दोबारा रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। फिर आपका आपके पास आ गया सर्टिफिकेट। अब उस सर्टिफिकेट के बाद क्या करना, आपको खुद ही बायर ढूंढने ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप यहाँ ढूंढ नहीं पा रहे हो, हम क्या करते हैं, कई बार जैसे पेड़ा है ट्रेड फेयर करवाता है जगह जगह, जैसे पिछले बार था वर्ल्ड फूड इंडिया, ओके, ऐसे ट्रेड फेयर होते हैं हमारे वहां पे, तो आप वहां पे आ सकते हो और वहां पे आप बायर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और फिर क्या, आप उनके कॉन्टेक्ट में रहोगे तो फिर आप डायरेक्टली अपना जो आपके पास एक्सपोर्ट, जो आपके पास उत्पाद है उसको वहां पे दे सकते हो। ये है उसकी पूरी प्रोसेस एक्सपोर्टर बनने की।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद नैन जी। देखिए हमारे सभी किसान भाई जान चुके हैं सुभेंद्र भैया कि हमें किस तरीके से अपना एफपीओ तैयार करना है।
2: बिल्कुल,
1: देखिए एफपीओ तैयार करने के लिए तो किसान भाई चाहिए होते हैं ना,
2: और देखिए उसमें बहुत सारे किसान एकत्र होते हैं। और आइए अब हम मुलाकात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद हमारे किसान भाई है, और जो मेरी निगाह जा रही है हमारे क्षेत्र के काफी जागरूक किसान भाई है और काफी अच्छा वो कार्य कर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं और हमारे और किसान भाई भी उनके अनुभवों से लाभ उठाएंगे। जी आपका परिचय।
4: मेरा नाम शरद कुमार, मैं किसान हूँ, ग्राम हरगनपुर, तहसील नगीनेकर।
1: वैसे आप खेती किस तरीके की करते हैं सर?
4: मैं खेती बासमती करता हूँ, गेहूं करता हूँ, दलहन करता हूँ और सब्जी की खेती करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, देखिए आप इतनी सारी फसलें उगा रहे हैं तो बाहर बेचने की भी व्यवस्था आपने बिल्कुल की हुई होगी।
4: हाँ जी, मैंने कर रखी है। मैंने अपना एक अपना कंपनी बना रखी है सिंह फार्म प्रोडक्ट्स के, नॉन केमिकल प्रोडक्ट है मेरा, सारी प्राकृतिक खेती है, मैं केमिकल नहीं लगाता अपने खेत में, और सारा मैं अपना प्रोडक्ट जितना भी है कोशिश करता हूँ एनसीआर और जितने भी है मेरे कॉन्टेक्ट में अपने जाता है।
2: अच्छा, ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपने फार्म अपने तैयार कर रखी है तो ये केवल आपकी व्यक्तिगत रूप से है या इसमें और भी किसान भाई जुड़े हुए?
4: नहीं, मेरी व्यक्तिगत रूप से है और केवल मेरे फैमिली मेंबर्स उससे जुड़े हुए हैं, बाकी और।
2: अच्छा, देखिए आपने ये फार्म अपनी व्यक्तिगत रूप से तो आपने तैयार कर ही रखी है, लेकिन एफपीओ हम तैयार करें, जैसे आप क्षेत्र में एफपीओ तैयार करें और जो दूसरे किसान भाई हैं वो भी उससे जुड़े, इस बारे में क्या विचार है?
4: मेरा एफपीओ के लिए एक ये विचार है कि एफपीओ के लिए पहली बात तो ये है कि जो बहुत 250 किसान मिनिमम चाहिए।
2: जी जी।
4: तो 250 किसान को अगर आप मिलजुल के जोड़ के चलते हैं जिससे आपके लिंक बने रहते हैं,
0: और उससे क्या होता है क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। अगर 250 किसान अगर कुछ सामान पैदा करता है, कई बाहर से आपको डिमांड आती है क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी आप दे सकते हो। जैसे मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं उतनी क्वांटिटी नहीं दे पाया हूँ। तो एक तो एफपीओ से ये बेनिफिट है कि एफपीओ में जब

0: किसान जाता है जी, तो क्वांटिटी हो सकती है। और एफपीओ में सबसे बड़ी फायदा यह है कि वो खुद ही एक एक रजिस्टर्ड हो जाती है, गवर्नमेंट आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सारे मार्केटिंग का सिस्टम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो देखिए ये जो बात हुई है कि हम किस तरीके से अपने माल को निर्यात कर सकते हैं, एफपीओ बना सकते हैं, भाई ये जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। एफपीओ के लिए एफपीओ कैसे बनाएंगे, ये हम बात करते हैं बीडीएफ की जो हमारी वैज्ञानिक आई हुई है सुमन जी।
0: बिल्कुल, देखिए इसमें अभी बताया कि 250 किसान जुड़ने अनिवार्य हैं, तो इस समस्या का समाधान के लिए डॉक्टर साहब के पास।
3: एफपीओ, एफपीओ क्या है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्कीम है ये 2020 में फरवरी में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे इसका क्या मकसद था कि हम 10,000 एफपीओ बनाएंगे पूरे देश में, इसके साथ इस स्कीम को बनाया गया था। एफपीओ क्यों बनाते हैं, जैसे कि आप एक किसान, उसने बोला कि मुझे मेरी फसल का रेट बिल्कुल पीआर के बराबर मिल रहा है, ठीक है। पता क्या, जैसे आप अकेले आदमी हो, आप कहीं पे खाद भी लेने जाओगे तो आपको वो जो महंगा से महंगा रेट वो बताएगा, क्योंकि अकेले आदमी कहीं पूछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास संगठन है तो आप संगठन में बोलते ताकत होती है। अगर आपके पास बहुत से लोग आप दुकान पे गए, वो दुकान वाला भी ये सोचेगा कि ओहो मेरे तो आज ही सारी बिक्री हो जाएगी, तो वो आपको ना सस्ते रेट में वो खाद देगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं। एफपीओ में ये कंडीशन है कि 300 किसान तो हो एटलीस्ट, अगर 300 नहीं है तो बस 10 लोग तो मिनिमम होने चाहिए, और उसके पास लेकिन 50 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। फिर दो क्राइटेरिया, या तो 300 किसान हो, या फिर अगर आपके पास 10 किसान है, 10 से नीचे चलेगा नहीं, 10 किसान है या फिर उसके पास 50 हेक्टेयर जमीन है, ये दो कंडीशन है एफपीओ बनने के लिए। तो इसमें क्या होगा, हम एफपीओ को ना अलग से सरकार बेनिफिट देती है स्कीम, जैसे कोई भी ट्रैक्टर खरीदना है कुछ भी, उसका 70-80% सब्सिडी मिलती है एफपीओ को। जो एफपीओ का संगठन है, मान ले 300 लोगों का संगठन ने एक एफपीओ बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी सब्सिडी आएगी गवर्नमेंट की, उसको आप 70-80% सब्सिडी पे उसको कोई भी चीज खरीद सकते, जैसे ट्रैक्टर, जैसे कि रोटावेटर, जैसे सुपर सीडर, ठीक है। लेकिन नॉर्मल किसान को 40-50% सब्सिडी मिलती है, क्योंकि उसके आपके पास संगठन है, आप डायरेक्ट सरकार से जुड़े हो। एफपीओ का बेनिफिट आप नाबार्ड से जैसे आप सब्सिडी ले सकते हो। अब आप पूछोगे हम कैसे बने एफपीओ, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके जो जमीन की खतौनी जिसको बोलते हैं खाता नंबर, फोटो, इसके लिए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएं, वहां डीडीए से बात करें, या फिर आप नाबार्ड में जाएं, उनको जाके बोलो कि हमें एफपीओ बनना है, ठीक है, एफपीओ के अंदर आना है। वो आपको सारी चीजें बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो, आपके साथ वीडियो भी बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि आपको बताने कि मैं किसान हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है और मैं एफपीओ में आना चाहता हूँ, ठीक। जैसे जैसे एक किसान हमारे, किसी के पास एक एकड़ है, उसके एक एकड़ वाला बंदा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, ठीक है, किसी के पास दो एकड़ है वो भी ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अब एफपीओ 300 लोग हैं, 300 लोगों का संगठन है, तो एफपीओ के थ्रू आप ना उस ट्रैक्टर को 80% सब्सिडी में मिल जाएगा उस एफपीओ को, और उस ट्रैक्टर से जब आप अपने खेत की जुताई करेंगे या कुछ भी करेंगे, जो आपको मान ले गाँव में आप किसी ट्रैक्टर वाले के पास जाते हो, वो आपको जो रेट लगाता है उससे उसका 10% कम रेट आपको मिलेगा। फिर समझ रहे मेरी बात, आप उस 10% बेनिफिट मिलेगा आप अगर आप उस एफपीओ के अंदर हो तो। आपको ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोटावेटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक एफपीओ के अंदर हो, सब कुछ आप इकट्ठा ले सकते हो सबके। अगर जैसे हमको वेयर हाउस खोलते हैं, वेयर हाउस खोलने के लिए एक बंदे के पास इतनी ताकत नहीं को वेयर हाउस खोल सके या फिर कोल्ड स्टोरेज खोल सके, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास 300 का संगठन है तब, और जिस सरकार से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको लोन मिल रहा है, तो आप वेयर हाउस भी खोल सकते हो। एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब आके आपने फसल उगा ली, आपके पास उपज आ गई, उपज आने के बाद क्या करते हो, आप जाते हो मंडी में ट्रैक्टर में, मतलब ट्रॉली में डाल के अपनी फसल मंडी में लेके जाते हो, उसका भी तो खर्चा आता है, उसको भी किसान को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस एफपीओ के अंदर हो तो कोई भी कंपनी आपसे डायरेक्ट एफपीओ से कॉन्टेक्ट करेगी और पूरा का पूरा माल आपके वहां से उठा लेगी, मतलब आपका जाने का खर्चा ही बचा, ठीक है। और आपको फिर मोल भाव करने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि बोलते हैं कि मैं तो इतना रेट लगाऊंगा, क्योंकि एफपीओ एक संगठन है, कंपनी को पता है यहाँ से बल्क में सामान उठेगा तो आपको आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। आप उसको बोलोगे हम इतना सामान है हमारे पास तो हम इसको इतना रेट में देंगे, तो वो आपसे जरूर खरीदेंगे, मतलब डायरेक्ट आपके घर पे सरकार आ रही है या कंपनी आ रही है आपसे सामान लेने के लिए। मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगी कि जिन लोगों को दिक्कतें आ रही है सामान, मतलब उपज बेचने में या फिर फर्टिलाइजर खरीदने में, तो आप एफपीओ का पार्ट जरूर बनाए ताकि भविष्य में आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से हमारे किसान भाई एफपीओ का अंग बन सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं, और कहा भी गया है कि जब हम एकत्र होते हैं तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है हमारी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है। और देखिए ये

0: का ही परिचय आज इस चौपाल पर हमें दिखाई दे रहा है कि इतने सारे किसान भाई इतनी गर्मी के अंदर यहाँ उपस्थित हैं और उनके बहुत सारे सवाल होंगे एफपीओ बनाने से संबंधित, एफपीओ जुड़ने से संबंधित। तो भाई किसान भाइयों के बीच में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से इससे जुड़ना चाहते हैं और कैसे लाभ उठाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, और एक बुजुर्ग किसान हमारे सामने हैं, उनसे मिलते हैं। जी बिल्कुल जी, आपका नाम?
2: प्रमोद कुमार शर्मा।
1: आप इसी गांव के रहने वाले हैं?
2: जी गाँव है जलपुर, यही के रहने वाले हैं और हम भी सभी प्रकार की खेती करते हैं, जैसे गन्ना, चावल और धान, ये गेहूं की। और ये जो मैडम ने एफपीओ के बारे में बताया,
1: जी जी
2: तो ये सुनते तो बहुत थे एफपीओ के बारे में, पर आज इन्होंने जो मतलब सही तरीके से जानकारी दी, तो इससे काफी अच्छी वो जानकारी मिली और हम भी इसमें शामिल होना चाहेंगे।
0: अच्छा, आप भी शामिल होना चाहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने साथ में अपने दूसरे किसान भाइयों को भी जोड़ेंगे तो उनको भी लाभ।
2: 10-5 को जोड़ेंगे जी।
0: जी जी
1: बिल्कुल, देखिए हमारे किसान अगर जागरूक होंगे तो हम एफपीओ अपना तैयार कर सकते हैं और फिर हम निर्यातक बन सकते हैं, विक्रेता बन सकते हैं। जी आपका नाम?
3: मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह, ग्राम जहांगीरपुर खास।
0: आप किस तरह की खेती करते हैं जी?
3: मैं जो हूँ गन्ना विशेषकर और धान की दोनों की खेती करता हूँ।
0: तो ये जो आपकी फसल पैदा हो रही है इसको बेचते कहाँ, कभी बाहर बेचने की आपने प्रयास किया कोई?
3: ऐसा है, हमारे यहाँ जो है बहुत पहले पुराने समय से जो है हंसराज की पैदावार होती थी।
1: जी बिल्कुल,
3: जिसको जो है बहुत उसके बहुत दूर दूर तक के किसान मतलब खाने वाले उसके चावल लेना आज भी आते हैं, लेकिन उसकी उसकी जो है वैरायटी आज खत्म हो गई, जो है उसको उसका पैदावार समाप्त हो गई, समाप्ति वो चला गया, नई नई वैरायटी आ गई जो है 1131, 1692 और जो 1885 और कई सारी वैरायटी ऐसी आ गई, नई नई आ गई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये किसान के सामने जो है कि इनमें बीमारियां बहुत हो गई। तो बहुत टाइम से लगा रहे हूँ मैं, मतलब बहुत चला रहे हूँ, लेकिन कुछ पिछले 2 साल से जो है ज्यादा बीमारी की वजह से जो है नुकसान उठाना पड़ा।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो समस्या है ये हमारे और भी किसान भाइयों के सामने आती है और इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर से चलते हैं हम सुमन जी के पास।
1: जी बिल्कुल, तो जो बासमती में बीमारी लगती है, रोग लगते हैं, उनसे कैसे हम बच सकते हैं?
4: बासमती में बेसिकली आपको पता है एक तना छेदक आता है, एक पत्ती लपेट कीट आता है, एक मच्छर आता है जो भोपर बोलते हैं जिसको बीपीएच, ये 3 कीट है जो बासमती में बहुत ज्यादा आते हैं। और 2-3 बीमारी जैसे कि ब्लास्ट, एक हल्दी गांठ रोग, एक है ना बैक्टेरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, क्यों ना हम जब शुरू से खेती में ध्यान दे कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो हम इनके ऊपर बहुत बिना केमिकल के भी इनका निजात कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में हमें क्या करना, जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम पे भी मैं पहले मतलब बीज का शुद्धिकरण करें। कैसे करेंगे? मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग करते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बीज का शुद्धिकरण कैसे करेंगे? बाल्टी लेंगे, उसमें पानी डालेंगे 10 लीटर, उसमें नमक घोल देंगे 150-160 ग्राम, फिर इसमें बीज डालेंगे। जितना भी बीज हल्का है वो पानी के ऊपर आ जाएगा और जो भी इसके अंदर कीट है वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो हमें उसको पहले से वहीं से हटा दो पहले तो, ठीक है। फिर उस बीज को, जो बीज नीचे चला गया मतलब वो बीज क्या है, मजबूत है, हमारे पास ताकतवर है, क्योंकि जो अगर ताकतवर बीज हमने खेत में लगाया तो आपके आगे फसल भी अच्छी होगी। अगर शुरू में आपने बीज हल्का लगा दी जिसके अंदर पहले से विगर नहीं है, जान नहीं है, तो वो पौधा पूरी उम्र पूरे 4 महीने आपको तंग ही करेगा, 3 महीने, ठीक है। हमें शुरू में अगर हमने नमक के घोल में उसको जो ऊपर का पार्ट उसको हटा दिया, जो नीचे है उसको रखा, और उसके बाद उसको 2-3 बार साफ पानी में जरूर धोएं ताकि उसके अंदर नमक ना बचे। अब हमें कहना है बीज का उपचार, बीज को उपचार के लिए जैसे कि कार्बोनाजिन आती है 10 ग्राम और प्लस में 1% है, 1 ग्राम है टेट्रासाइक्लिन, इसका आपको उपचार करना है बीज का, इसको उसमें घोलना है और कम से कम 10 घंटे तक उसके अंदर रखे रखो। फिर क्या होता है, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग पनीरी तैयार होगी हमारे पास, उसके बाद क्या करते हैं, जिसको ऊपर का पार्ट होता है ना सीडलिंग ऊपर का, उसका 3 से 4 इंच ऊपर का भाग है उसको तोड़ दें, क्योंकि जो तना छेदक पत्ती लपेट है वो ऐसे कीट है जो पत्ते के ऊपर की साइड अंडे देते हैं। अगर हमने उस चिड़ले को, अगर पनीर को ऊपर से मतलब जो गुच्छ उसको ऊपर से तोड़ दिया वहीं पे, और उसको वहां बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसको पॉलिथिन में डालना है या कट्टे में डालना है, क्योंकि अगर आपने तोड़ के वहीं फेंक दिया तो आपके खेत में वहीं का वहीं कीड़ा रह गया है। पॉलिथिन में जरूर डालना उसको तोड़ने के बाद, वहां नहीं फेंकना है। इसमें भी हम 10 से 15% तना छेदक और पत्ती लपेट का नियंत्रण कर सकते हैं। अब जैसे ट्रांसप्लांटिंग होगी उस टाइम पे हमें मॉनिटरिंग के लिए लगाते हैं फेरोमोन ट्रैप। देखा आप लोगों ने? लगाता कोई? कितने लगाते हो? कितने? 1 एकड़ में लगे 8। 1 एकड़ में फेरोमोन ट्रैप लगते हैं 8। जितने भी आपके खेत में नर हैं सारे के सारे

0: जाए, जिसके क्या आगे की जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा है हमारे पास ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा कार्ड भी लगा सकते हैं, तना छेद अगर पत्ती लपेट के जितने भी अंडे हैं उनको ट्राइकोग्रामा अपने आप खत्म कर देगा, ठीक है। और एक आता है बीपीएस, जो जिसको बोलते हैं मच्छर, ठीक है। मच्छर के लिए क्या करते हैं, येलो ट्रैप लगाता है खेत में, जितने भी आपके मच्छर है खेत में पीली चीज के साइड जाएंगे और वहीं पे चिपक जाएंगे, ठीक है। इससे हम, ये है आईपीएम, कैमरे का कम से कम यूज करें। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस तरीके से हमें बुआई से पहले बीज का उपचार करना है, क्योंकि तो बीज हमारा अगर सही होगा, शुद्ध होगा, बीमार नहीं होगा, तो अच्छी फसल हमारी उत्पादित होगी, बढ़िया फसल होगी। और विकास कुमार जी एडू एग्रीकल्चर कोतवाली ब्लॉक के हमारे साथ हैं, मौजूद हैं।
2: सर, कोई सरकार की ऐसी योजना हो जिससे किसान भाई लाभ उठा सके, इसके बारे में आप जरूर जानकारी दीजिए।
3: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज यहाँ लाइव कार्यक्रम हैजरपुर गाँव में विकासखंड कोतवाली में ये लाइव फोन इन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो मैं डॉक्टर विकास कुमार सहायक विकास अधिकारी कृषि विकासखंड कोतवाली से हूँ। हमारा कोतवाली विकासखंड में राज्य के कृषि निवेश भंडार है, वहां पर समय समय पर जैसे अभी खरीफ का सीजन चल रहा है तो अभी ढैंचा आया हुआ है, ठीक है। ढैंचा 50% सब्सिडी पर हमारे राज्य के कृषि निवेश भंडार से उपलब्ध है, किसान भाई वहां आके उसको ले सकते हैं। और सभी किसान भाई का मैं समझता हूँ पंजीकरण होगा। उसके साथ साथ जो बासमती धान की बात यहाँ चल रही है, तो बासमती धान की कुछ वैरायटी हमारे राज्य के कृषि निवेश भंडार पर अभी आई हुई है, जैसे पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1718, 1728, ठीक है। तो उसका भी 50% सब्सिडी पर किसान भाई वहां अपने पंजीकरण से उसको ले सकते हैं। और जैसा कि फेरोमोन ट्रैप की बात डॉक्टर सुमन नरवाल जी ने की, तो फेरोमोन ट्रैप हमारे राज्य के कृषि निवेश भंडार से भी 70% सब्सिडी पर उपलब्ध है और बहुत ही अच्छी चीज है वो। जैसे कि बताया कि उसमें हमें कहीं ना कहीं नर जो कीट है उनको कंट्रोल करना है, तो उसका किसान भाई लेके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास जी आपका। और देखिए, बात जब हम करते हैं कि हमारा जो कृषि का उत्पाद है वो सही तरीके से बिक सके, और बिकता कब है, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है।
1: बिल्कुल।
2: और अच्छी क्वालिटी के लिए तो देखो सुभेंद्र भैया, जैविक खेती हमारे किसान भाई करते हैं, जिसको काफी अच्छा मूल्य प्राप्त करके अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं किसान।
1: देखिए, विदेशों में जो हम माल भेजते हैं, जो भी हम अपना धान भेजते हैं, गेहूँ भेजते हैं, उसमें रासायनिक जो है वो नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सैंपल फेल हो जाता है। तो इसलिए जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी है, जैविक उत्पाद बहुत ही जरूरी है। और हमारे इस चौपाल पर दूर दूर से आए हैं, काफी दूर से आए हैं हमारे किसान भाई, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी, आपका परिचय?
4: मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं तहसील नगीना और ब्लॉक कोतवाली मिर्जाली का मिलूंगा।
2: जी महेंद्र सिंह जी, आप जैविक खेती करते हैं?
4: जी।
2: तो इसमें और रासायनिक खेती में क्या अंतर महसूस किया आप?
4: इसमें यह है कि क्वालिटी बढ़िया है जैविक वाली। मैं आपसे बता दूं इसके बारे में थोड़ा।
2: हाँ, हाँ।
4: कि सभी किसान भाई बैठे हैं और डॉक्टर साहब भी हैं हमारे।
2: जी बिल्कुल, बताइए।
4: कि हमने पहले तो ये जैविक ऐसी की 10-15 घोल लिया, फिर बेसन का गुड़ का पानी मिलाया, लेकिन उससे भी बात बने नहीं। फिर हमने YouTube पे देखा तो उसमें हमने एक अमृत धारा बनाया, उसके अंदर कपूर था और आपका पिपलमन था और अजवाइन का पत्ता और इसका लौंग का तेल और लिप्टिस का दालचीनी।
2: जी।
4: तो इसका यदि हम 10 ग्राम अगर कीटनाशक कोई सा भी है, कोई सा कीटनाशक भी है अगर है, तो आप उसके अंदर जो 10 पन्ने प्लस 10 ग्राम एक कैन में ये मिला दें। अगर मौके पर अगर जो स्टैम्बोर अंदर आया हुआ भी है वो भी निकल के पत्ते में बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने अपना तजर्बा कराया। मैं डॉक्टर पिंटू जी को भी दिखाया खेत पर अपने बासमती में, काला नमक की खेती की है ना मैम, सबसे लेट आता है तो उसके अंदर सुंदी वगैरह सब ऊपर आ गया, उसको सब पक्षी चुक गए।
2: अच्छा,
4: उसके अंदर ठंडा पर इतना है कि वो स्टैम्बोर का जो वो है वो कीट पतला छोटा ना वो निकल के आता है जो ऑटोमेटिक बाहर आ जाए।
2: महेंद्र जी देखिए, आप इस तरीके से खेती कर रहे हैं, जैविक खेती बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और आपको हमारे बहुत सारे किसान भाई सुन भी रहे हैं, तो आपने जैविक खेती के लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाया हुआ है?
4: अभी कुछ नहीं है, अभी मैं 5 साल से अपने आप ही अनुभव कर रहा हूँ।
2: अच्छा,
4: और डॉक्टर साहब के खेती के वालों के संपर्क में।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि जो हम जैविक खेती करते हैं और बिना रसायन के खेती करते हैं, तो वो किस तरीके से हमारे उत्पाद जैविक हो सकते हैं, कैसे हम इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि जो हमारा चावल है या गेहूं है वो जैविक हो गया है? जी डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल सर, आप 4-5 साल से कर रहे हो लेकिन आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। पहले जो 3 साल होती है उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, मतलब आपके जो सॉइल है वो कन्वर्ट हो रही है रसायन उससे, केमिकल से जैविक में। उसमें क्या

0: हर एक साल जो इंस्पेक्शन टीम आती है वो चेक करती है कि आप प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 3 साल तक होगी, चेक करेंगे वो। उसके बाद 4वें साल आपकी जो मिट्टी है उसको बोलेंगे जैविक, मतलब वो बिल्कुल आप केमिकल से फ्री हो गई है। आपको क्या करना है, एनपीओपी की साइट है, अपेडा के ऊपर एनपीओपी है, वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं इतने साल से करो, ये टीम आई थी, इतने इतने लोगों ने इसको इंस्पेक्ट किया है, मतलब चेक करके गए हैं, इतनी बार टीम आई थी, वो सब वहां पे बताना आपको। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पता आप कर रहे हो, मुंह से कोई नहीं बात मानेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप बता सकते हो कि मैं जारी कर रहा हूँ। जुबान की कोई वैल्यू नहीं, आपका सर्टिफिकेट दिखता हर जगह पे। आप कल मार्केट में चले जाओ, मान लिया आप किसी सब्जी की कर रहे हो, आप वहां जाके बोलोगे कि मैं जैविक कर रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा आपकी इस बात को। पास आस पास वाले मान सकते हैं, लेकिन जो दूर से है वो क्यों मानेगा उसको, क्या आप जैविक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई कल बोले आपको तो आप सर्टिफिकेट दिखा दो, देखो मेरा खेत बिल्कुल जैविक है और मैं जैविक खेती ही करता हूँ। उससे क्या आपकी मांग, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मांग बढ़ेगी। और आप और हमारे वहाँ पे मोदीपुरम में एक लैब है, वहाँ पे भी आप जो जैविक खेती करें, जो जैविक प्रोडक्ट है उसकी आप वहाँ पे जांच करवा सकते हो। ऑर्गेनिक टेस्टिंग लैबोरेटरी है मोदीपुरम में, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट की जांच करवा सकते हो कि जैविक है या नहीं है। ठीक है, और क्या बताना था जैविक के लिए, जैसे कि आप बता रहे हो कि हमें वो बीज अमृत और ये जीव अमृत ये लोग यूज ही कर रहे होंगे आप। बाकी है जो बायो इंसेक्टिसाइड, जैसे कि देवरिया ने बेचियाना ने, आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है।
2: बिल्कुल,
1: और
2: बिल्कुल।
1: जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं जैविक, उसका सर्टिफिकेट हमें लेना है, सर्टिफिकेशन हमें लेना है।
2: इसके लिए कुछ डॉक्टर विकास जी कहना चाहते हैं।
3: जी धन्यवाद। ये मैं बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वहां से भी किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जैविक खेती का। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ नहीं, 1500 रुपए फीस लगती है। उसके साथ आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और मोबाइल नंबर और अपना ये सारी चीजें करके, और वो लगभग 2.5 से 3 महीने की प्रक्रिया है इसकी। तो वहाँ इस

0: विधि से कैसे खेती करें, तो मैम से मैं प्रश्न जानना चाहता हूँ, DSR विधि से भी बासमती की खेती की जा सकती है क्या?
1: जी बहुत अच्छी बात है। और देखिए सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई के बारे में हिमांशु जी जानना चाह रहे हैं, और इसके बारे में हम फिर से चलते हैं मैम सुमन जी के पास।
2: DSR मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस, बिना प्योर चार करे आपको सीधी बिजाई करनी है। अब एक मशीन है सुपर सीडर, ठीक है, उससे आप डायरेक्ट बिजाई कर सकते हैं अपने खेत में। उससे क्या होगा, हमारे हरियाणा, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में तो हरियाणा सरकार 4500 रुपए देती है जो DSR करता है। यूपी में भी है कुछ? यूपी में नहीं है ऐसा कुछ DSR के लिए? पता नहीं है कितने रुपए। अच्छा, यूपी में जो आदमी DSR करेगा, जो किसान DSR करता है, उसको यूपी सरकार 2500 रुपए देती है और हरियाणा में 4500 रुपए। DSR से फायदे क्या क्या है? एक तो आपको जब पनीरी तैयार करेंगे उसमें लेबर चाहिए, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे, इसमें कुछ नहीं चाहिए, एक ये पैसे ही है बच्चे। दूसरे क्या, DSR करेंगे पानी की बचत होगी। आपको पता है 1 किलो चावल के लिए 4000 लीटर पानी लगता है, इसमें पानी बहुत ज्यादा बचा सकते हो। आज के आने वाले टाइम में आपको पता, आपको पानी की लड़ाई चलेगी, पानी के लिए युद्ध होगा, जो भी जब भी होगा पानी की शॉर्टेज है। इसलिए सरकार अब DSR के ऊपर ज्यादा दबाव दे रही है कि DSR करें। DSR जैसे कि आपने सीधी बिजाई कर दी सुपर सीडर के द्वारा, उसके थोड़ा मतलब कुछ घंटे बाद ही आपको क्या देना, अपने खेत में पानी देना है, जिससे क्या है उसको बीज को पानी मिले, नमी मिले। फिर हमें क्या करना है, हमारे अब आप बोलोगे कि DSR में तो जी बहुत सारे भीड़ आते हैं, खरपतवार आते हैं, अब क्या करें? जैसे आपने पानी दे दिया, उसके बाद 1-2 दिन बाद आपको खेत में जाके पाँव रख के देखना है कि पाँव रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। अगर आपके खेत में पाँव रखा जा रहा है, तब आपको क्या करना है, पैंडी मैथलिन नाम का खरपतवार है उसको डालना, पैंडी मैथलिन जो डालेगा 1 लीटर 1 एकड़ में, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके खेत में जितना भी खरपतवार था उसको उसी टाइम पे कंट्रोल कर देगा। अब हमें क्या करना है, फिर क्या आपका उससे भी सारा कंट्रोल ना हो, फिर हमें क्या करना है, 15-20 दिन बाद एक एक एक हर्बिसाइड है जिसका नाम है इमेजाफायर, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, उसको डालना खेत में। वो डालेगा से 2 से 2.5 ml पर एकड़। और अब आप पूछोगे कि बासमती की कौन सी वैरायटी DSR में ले सकते हैं? इसकी दो ही वैरायटी बनी है, एक तो 1985 जो 1509 का सुधार रूप है, 1985, और दूसरी क्या है 1979। ये दो ही वैरायटी हैं जो हम DSR में ले सकते हैं। इनके ऊपर ये क्या है, हर्बिसाइड टॉलरेंट है, इसके ऊपर किसी भी हर्बिसाइड से ये मरेंगी नहीं, सिर्फ वीड मरेगा, खरपतवार मरेगा, फसल नहीं मरेगी। धन्यवाद।
3: बिल्कुल, तो हम जो है सीधी बुआई भी कर सकते हैं धान की, और पहले भी हमारे किसान भाई धान की सीधी बुआई करते थे, लाल धान हम लेते थे जिसकी बाल जो है बाहर नहीं दिखती थी हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और देखिए आज इस कृषि निर्यात लाइव चौपाल पर बासमती धान के संबंधित और अपने उत्पाद को बेचने से संबंधित बहुत सारी बातें हो गई हैं। हम तो ये कहेंगे इतने सारे किसान चौपाल पर बैठे हैं, तो अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, एक हमारे सामने है किसान भाई, वो उत्साहित है हमसे बात करने के लिए। जी आपका परिचय।
4: नमस्कार जी, मैं भानु प्रताप सिंह, ग्राम हैजरपुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर।
3: तो भानु प्रताप जी, जैविक खेती हम करें इसके बारे में क्या विचार है आपके?
4: जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन सरकार कर रही है, लेकिन किसान अभी नहीं जुड़े हैं, सही ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है किसानों को। मैं चाहता हूं कि सही ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि अधिक से अधिक किसान जैविक खेती की ओर अग्रसर है।
3: बिल्कुल, देखिए सही प्रशिक्षण यानी कि सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और एक और युवा इस चौपाल पर हमारे साथ आइए, उनसे मिलते हैं। जी आपका परिचय।
5: मेरा नाम जितेंद्र सिंह, गांव मानवाला, जनपद बिजनौर का रहने वाला हूं, और आज आपने इस कृषि निर्यात लाइव चौपाल में मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार और आपकी पूरी टीम का आभार। अच्छा सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूं कि हम धान की खेती कर तो रहे हैं और बासमती धान हम लगाना भी चाह रहे हैं, तो हम धान की खेती करके कौन सी अच्छी फसल लेकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि हमारा जो उत्पादन है वो हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं बासमती का।
3: तो बिल्कुल, हम
1: बहुत अच्छा सवाल किया है,
3: बासमती से हम बढ़िया उत्पादन ले सके, तो डॉक्टर सुमन हमें एक बार फिर बता रही है।
1: जी वैसे तो बासमती की 45 वैरायटीज है, लेकिन उसमें से जैसे कि 1509 है उसकी भी अच्छी जाती है, तो ड्यूरेशन भी है वो। अगर आप बाद में आलू लगा रहे हो, सरसों लगा रहे हो, तो 1509 लगाए, उसकी यील्ड अच्छी है। लेकिन जो 11-21 है उसकी, उससे मतलब 1509 से ज्यादा 11-21 की नहीं है। अगर आपको यील्ड ही चाहिए तो 1509 लगाए। अगर आपको इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो तो आप एक आते PP6, जिसको बोलते 1401, यहाँ पे तुड़ल बोलते हैं, देखो तुड़ल है मुच्छल, वो ऐसा दाना उसके, उसमें सबसे ज्यादा खुशबू है और सबसे ज्यादा डिमांड उसी के बाहर, 1401 PP1 पूसा बासमती 1 और पूसा बासमती 6, ये मुच्छल वरायटी है। इनकी बाहर के देश में बहुत ज्यादा मांग है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर अलग से खुशबू, अलग से टेस्ट है। इन वरायटी की अच्छी खास बात यह है कि ये इल्ड तो अच्छा देती है, लेकिन ये बीमारियों के खान भी है, इनमें

0: टाइम सबसे ज्यादा कीट भी सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन अब आप बोलो कि हम बीमारियों से फिर कैसे करें, इनकी कुछ सुधार ही वरायटी बनाई गई है, सुधार किया है, और जिनके अंदर जैसे कि PB6 की है 1886, 18 जो भी 2021 में बनी है वरायटी 1886, उसके अंदर ना तो ब्लास्ट आता ना उसके अंदर BLB आता, ठीक है। दूसरी वरायटी है PB1 की, वो है 1882, ये भी सुधारी है, ये भी रेजिस्टेंस है बीमारियों के प्रति, इनमें भी ना ब्लास्ट आता ना BLB आती, ये भी 2021 में बनी है। अगर आपको इन चाहिए और अच्छी चाहिए तो आप इन दो वरायटी को लगा सकते हो प्रेफर।
1: जी बिल्कुल, तो इस तरीके से हमारे किसान भाई बासमती की खेती कर सकते हैं और अच्छी प्रजाति अच्छा बीज हम ले सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर चौपाल पर उपस्थित हैं और सभी की शंकाओं का समाधान भी हुआ है। तो चौपाल पर उपस्थित जो भी हमारे किसान भाई हैं, अधिकारी हैं, उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक बार फिर चलते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम अधिशासी अंकित सैनी जी के पास।
2: धन्यवाद सुरेंद्र जी। और जैसे कि आज की इस कृषि निर्यात लाइव चौपाल में हमारे बीच मौजूद वैज्ञानिक और डॉक्टर साहब विकास कुमार जी ने बताया, देखो सबसे पहले तो बताया कि संगठन में शक्ति होती है, SPO का जिक्र आया उसके लिए, और कहा भी गया कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो आप अगर SPO भी नहीं बना सकते तो जो आपके नजदीकी कोई FPO आप उसमें जाकर के जुड़ सकते हैं। एक तो ये चीज निकल के आई, दूसरा एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट की बात आई, अपना आपको बाहर माल भेजने के लिए एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो कैसे मिलेगा वो आपको डॉक्टर साहिबा ने बताया। एक तीसरा बताया कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा वही अच्छा बिकेगा, उसी की डिमांड ज्यादा होगी। वो बात आती है आजकल जो मार्केट में चल रहा है जैविक ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक के लिए आप जैसे हमारे बीच में एक किसान थे, उन्होंने कहा मैं 5 साल से कर रहा हूँ लेकिन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, वो सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, ये जानकारी आज आपको इस चौपाल के माध्यम से मिली। तो हमारा इन तरीके की ये इस तरीके की चौपाल लगाने का उद्देश्य ही यही है कि हमारा द्वारा दी गई जानकारी से, वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी से अगर एक भी किसान लाभान्वित होता है तो तभी हमारा इन तरीके की चौपाल लगाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। आज इस चौपाल में आए हुए आप सभी सम्मानित हमारे किसान भाइयों का, BEDF से आए हुए डॉक्टर सुमन नरवाल जी का और ADO कोतवाली श्री विकास कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और अपने सभी सुनने वालों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।
3: तो देखिए हम इस चौपाल को अब यहीं पर संपन्न करते हैं और अब मैं प्रमोद सिंह अपने साथी सुभेंद्र सिंह और कार्यक्रम अधिशासी अंकित सैनी जी के साथ आपको लिए चलता हूं वापस आकाशवाणी नजीबाबाद के स्टूडियो में।
1: किसान भाइयों नमस्कार।
4: किसान भाइयों को फसल उत्पादन के साथ साथ संगठित होकर किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO बनाना है और अपनी फसल को स्वयं खरीद कर दूसरे देशों को निर्यात करना है। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान BEDF मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
5: अब नहीं रहेगा कोई भी सवाल
4: जब किसान भाई सुनेंगे
6: आकाशवाणी नजीबाबाद से
7: लाइव चौपाल।
8: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
9: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APIDA,
8: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
9: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
10: अभी आप सुन रहे थे जनपद बिजनौर की तहसील नगीना के विकास खंड कोतवाली के ग्राम हैजरपुर से प्रसारित कृषि निर्यात लाइव चौपाल का प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वहां उपस्थित हमारी टीम के सदस्य सुवेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह और कार्यक्रम अधिशासी श्री अंकित सैनी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज शाम 7:32 पर सुनिएगा सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफ हिंद जोगीरमपुरी। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है अलीना अंजुम और साद अहमद का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज चर्चा का विषय रहेगा खेतों की गहरी जुताई के लाभ। साथ ही श्रोताओं आज कार्यक्रम में किसान

भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री पेश किया जाएगा। आज शाम 5:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले सुश्री एन राजन से भेंट वार्ता।

0: of Denmark in the women's singles quarterfinals today. Vitaly Herr's exit in the challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Vitaly Herr, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent, 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का

0: समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
5: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश

0: में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइड्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कव्वालियों की इस महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां में हम आपको सुनवाते हैं हिंदी फिल्मों की कुछ कव्वालियों को। श्रोताओं, आज की इस महफिल को शुरू कर रहे हैं एक शायरी से कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दोस्तों, कव्वाली सिर्फ संगीत नहीं, ये दिलों को जोड़ने वाला एक एहसास है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं पहली शानदार कव्वाली से, जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी के स्वर में फिल्म बजरंगी भाईजान से। संगीत प्रीतम का है और शब्द रचना है कौसर मुनीर की।

वाह क्या बात है, और अदनान सामी ने कितना खूबसूरती से निभाया है। ऐसी कव्वालियाँ सुनकर दिल खुद ब खुद सजदे में झुक जाता है। सूफी संगीत की यही खूबसूरती है दोस्तों, कि यह इंसान को सुकून भी देता है और उम्मीद भी। एक और शेर अर्ज है कि तेरी चौखट से जो खाली गया वो फिर दुनिया में कहीं का ना रहा। पेश है कार्यक्रम की अगली शानदार कव्वाली, जिसने बरसों से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना रखी है। फिल्म सत्यमेव जयते से हम आपको सुनवा रहे हैं वाजिद के स्वर में ये कव्वाली। संगीत साजिद वाजिद का है और शब्द हैं दानिश साबरी के।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: श्रोताओं, कव्वालियों का ये कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कव्वाली की महफिल और महबूब का दीदार, क्या खूब संगम होता है। कभी किसी महबूब को मनाने के लिए तो कभी खुदा से शिकवा करने के लिए फिल्मी कव्वालियों ने हमेशा हमारा दिल जीता है। कार्यक्रम की अगली कव्वाली जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने ली है

फिल्म वीर ज़ारा से। आवाज़ें हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और साथियों की। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी कव्वाली।

क्या रूहानी एहसास है इस कलाम में। ऐसा लगता है जैसे हर सुर सीधे दिल तक पहुंच रहा हो। दोस्तों, कव्वाली की परंपरा सदियों पुरानी है। दरगाहों से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया भर में लोगों के दिलों तक पहुंच गया है। सही कहा है किसी ने कि चाहे भाषा कोई भी हो, लेकिन भावनाएं हर किसी को जोड़ ही लेती हैं। लीजिए, कार्यक्रम में अब पेश नज़र है फिल्म तनु वेड्स मनु से ये अगली कव्वाली वडाली ब्रदर्स और साथियों के स्वर में।

दोस्तों, अब धीरे धीरे आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। उम्मीद है कव्वालियों का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम का अंत करते हैं एक शायरी से कि बस यही सोचकर हर तपिश में जलते आए हैं, बस यही सोचकर हर तपिश में जलते आए हैं, धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर सूखा नहीं करते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे द्वितीय प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

शुभ संध्या श्रोताओ, मीडियम वेव 314 दशमलव 47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं और श्रोताओं, सभा के आरंभ में हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है की ओर।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ही खास है लेकर हम आज फिर आपके पास हाजिर हो चुके हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं और 9 दशकों के आकाशवाणी का ये सफर महज सूचना, भारतीय संस्कृति, भाषा विकास का ही सच्चा हम सफर नहीं बना है, बल्कि हम सफर बना है आपका और हमारे विश्वास का भी। राष्ट्रीय गौरव की बात हो, अटूट विश्वास की बात हो या अनेकता में एकता के कार्यक्रमों की बात हो, तो आकाशवाणी हमेशा इसमें अग्रणी रहा है। आज के हमारे ऐसे ही कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक साथी श्रोता जुड़े हैं और आइए हम उनसे रूबरू होते हैं।
1: धन्यवाद नीति जी, मेरा नाम शिल्पी है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आयु लगभग 50 वर्ष है मेरी। यही कहना चाहूंगी आकाशवाणी के लिए कि जब से मैंने होश संभाला है तो अपने आप को रेडियो के साथ पाया है, ये हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। और ये बात उस समय की है जब रेडियो जो है बहुत बड़ा हुआ करता था, हारमोनियम की पेटी की तरह हुआ करता था, तो वहां से ये सफर शुरू हुआ है और मैं इसके साथ ही बड़ी हुई हूँ। और न सिर्फ मैं, मेरा बेटा जो अभी एमटेक कर चुका है वो भी इसके साथ ही बड़ा हुआ है। तो हम लोग सारे प्रोग्राम सुनते थे और चूंकि बिजली आती नहीं थी हमारे यहाँ, तो यही एक संचार का माध्यम था, संगीत के लिए, समाचार के लिए, नीति कथन के लिए, हम इसके साथ ही बड़े हुए हैं।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि आप रेडियो के साथ साथ बढ़ते चले गए और अपने ज्ञान को बढ़ाते चले गए। क्या कोई ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसको आप विशेष रूप से पसंद करती हैं?
1: सबसे ज्यादा पसंद मुझे इसका सैनिकों के लिए प्रोग्राम है, जो हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि के लिए आदर हमारे मन में जगाता है। और सोल्जर्स के लिए भी बहुत एक अच्छा प्रोग्राम आता है, संदेश टू सोल्जर्स करके, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जिसके माध्यम से हम अपने सोल्जर्स को अपना आदर व्यक्त कर सकते हैं। और अनेक प्रोग्राम इसके बहुत अच्छे हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से ही हमको सरकारी योजनाएं और बीमारियों से बचाव के बारे में पता चलता था कि अभी मौसमी बीमारियां क्या आ रही हैं। और इनकम टैक्स के रूल्स, मेरा खास रुझान है फाइनेंस की तरफ, तो मुझे ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था कि जब इनकम टैक्स फाइल करना होता था तो उससे पहले ही रेडियो से प्रसारण आता है इनकम टैक्स कैसे फाइल किया जाए, और उसमें हमारी जो भी क्वेरीज होती थी उसमें बहुत अच्छे से वो एड्रेस किए जाते थे। जिले की हलचल भी बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हम लोग इतना बाहर घूमने नहीं जाते थे, तो पर्यटन स्थल के बारे में पूरी जानकारी मिलती थी कि दिल्ली से कितना दूर है, उसकी विशेषताएं क्या है, कब जाना सही रहेगा, तो ये सब जानकारी बहुत अच्छी लगती थी।
0: अरे वाह।
1: दूसरा, सूरज के साथ साथ जो प्रोग्राम है उसमें जो आप लोग महान विभूतियों के बारे में बताते हैं और कर्णप्रिय संगीत बजाते हैं, वो हमारा ये मतलब मॉर्निंग्स को बहुत अच्छा बना देता है, मूड एकदम अच्छा हो जाता है।
0: अच्छा, तो आपको वो बहुत पसंद आता है क्या? उसमें अलग अलग विषय पर रोज चर्चा रहती है और महिला जगत, युवाणी के कार्यक्रम या
1: जो प्रोग्राम है ना वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी जो रेसिपीज है ना, तो हम लोग जब बनाते थे, यंग थे, तो हम उसकी रेसिपीज बहुत ट्राई करते थे, तब तक यही सुन सुन के रेसिपीज और बनाया करते थे और बहुत अच्छी बनती थी वो, तो वो एक छोटी सी याद है मन में।
0: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपके घर में और भी सदस्य होंगे, मम्मी पापा भाई बहन, आप पढ़ाई भी करते होंगे जब, तो पढ़ाई करते समय कुछ दिक्कत आती होगी या वो कहते होंगे समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होता था?
1: नहीं नहीं, समय कभी बर्बाद नहीं होता था ऐसा, क्योंकि जब हम सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते थे तो सुबह से ही 6 बजे से रेडियो चल जाता था, ये आकाशवाणी है, हम 314.47 मीटर 954 किलोहर्ट्ज़ से नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।
0: हमारा अनाउंसमेंट भी याद कर रखा है।
1: हाँ। जी, ऐसी हमारे दिन की शुरुआत होती थी एक्चुअली, और फिर हम सुनते सुनते ही स्कूल चले जाते थे और वहाँ से जब लौटते थे तो फिर शाम के प्रोग्राम सुना करते थे,
0: तो फिर बाद में

0: भजन बनाना पढ़ना चलता रहता था।
1: हाँ जी हाँ जी, फिर तो आप सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत या फिल्म संगीत भी सुनती होंगी।
0: बहुत बहुत ज्यादा मुझे शास्त्रीय संगीत में विशेष रुचि है। का जो प्रोग्राम आता है ना रात में एक शास्त्रीय संगीत के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा लगता था। मैं तो लेट नाइट भी सुनती थी, 10-10:30 तक सुनती थी।
1: और कोई ऐसी याद जो आप अपने श्रोताओं के साथ हमसे साझा करना चाहती हो?
0: ये जैसे मेरे को अच्छा लगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा माध्यम आज भी है। मेरे साथ एक मेरी ये है, एक सहेली है, वो पढ़ नहीं पाती है, तो उनको रामायण पढ़ने का बहुत मन था। मैंने उनको ये सुझाया कि आप ऐसा कीजिए, रोज रेडियो में सुना कीजिए, जिससे जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। तो
1: हाँ
0: आप यकीन नहीं मानेंगे, वो यही कहती हैं कि जब से आपने ये रेडियो सुझाया है और हम इसके समाचार और संस्कृत के समाचार सुनते हैं और ये रामायण सुनते हैं, तो हमारा दिन जो है बहुत अच्छा जाता है और हमें अध्यात्म की तरफ भी थोड़ी सी रुचि हो रही है। अब
1: अरे
0: ये
1: वाह,
0: जान
1: जबकि
0: अच्छा लगता
1: ये
0: है।
1: समय टीवी इंटरनेट स्मार्टफोन का है, आपने हमारे एक और श्रोता को हमसे जोड़ दिया, ये आपका एक हमारे प्रति बहुत प्रेम है।
0: जी
1: अच्छा, बदलते हैं समय में आकाशवाणी का सफर आप कैसे देखते हैं? पुराने समय के कार्यक्रमों में और अब के कुछ कार्यक्रमों में कुछ आपको नयापन लगता है?
0: अपनापन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे अनाउंसर्स हैं और जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनको हम इमेजिन करते हैं कि वो हमारे सामने बैठ कर ही बोल रहे हैं। मतलब इतना कनेक्ट हो चुके हैं हम लोग उनसे ना।
1: जी
0: तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बाहर होते हैं और रेडियो नहीं सुन पाते हैं, तो
1: जी
0: मन में ये विचार चलता रहता है, अच्छा अभी तो समाचार आ रहे होंगे, अभी तो फिर उसके बाद रामायण चलेगी, उसके बाद प्रोग्राम आएगा जिसमें हमें गाने सुनाए जाएंगे, फिर समाचार आएंगे। तो ये सब मतलब मन में एक चलता रहता था।
1: हाँ, इसका मतलब आप हमारे कार्यक्रमों को मिस भी करती हैं जब आपको नहीं सुन पाते। अच्छा,
0: जी जी बिल्कुल
1: आपने कहा कि जैसे आप सॉफ्टवेयर
0: जी।
1: इंजीनियर हैं, इसके अलावा कोई आपका रुझान या रुचि है जिसको आप और अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती हैं या कुछ करती हैं आप?
0: मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पढ़ाई के दौरान, और उसके बाद मैंने एक आईटी कंपनी में जॉब भी किया है, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब जब थोड़ा सा आगे बढ़े एज में, तो फिर मेरा रुझान अध्यात्म और एक जो भारतीय संस्कृति और भारतीय चिकित्सा की तरफ मेरा रुझान हुआ, जिसमें आजकल मैं 2-3 सालों से पंचतत्व चिकित्सा सीखी हूँ और सिखा भी रही हूँ।
1: आप हमसे जुड़ी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और यादें साझा की आकाशवाणी से, आपका प्यार है इस संबंध में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम आपने सुना रिश्ता एक खास है। और आज हमारे साथ थी शिल्पी जनपद बिश्नौर आवाज विकास से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले सुश्री एन राजम से भेंट वार्ता।

0: आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है, उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिराने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
2: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।

0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने की, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल, वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता ही नहीं, पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा
1: जी।
0: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो 1-2 फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक कि आत्मा जो है
1: जी जी
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका वो, हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी, वो बहुत ही पॉपुलर
0: हुई। उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी ही बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली
1: जी।
0: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: था। बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है। फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो वो पूछा इतने में करोगी तो, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, उसके जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का, तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया, तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व

0: है, वो कैसे समझाती है?
1: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
0: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
1: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
0: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:34 और 19 सेकेंड हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं युवा श्रोताओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी और मैं हूं आपकी होस्ट सना।
1: तो दोस्तों गुड इवनिंग, सना के साथ इस खूबसूरत से शाम में आपके साथ शामिल हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट अलीना। वैसे दोस्तों, अब अगले कुछ मिनटों तक हम आपके लिए लेकर आए हैं बातें, जानकारी, मुस्कान और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी।
0: बिल्कुल, यहाँ होगी मजेदार गुफ्तगु, दिलचस्प सवाल और कुछ ऐसी खास बातें जो आपके ज्ञान में भी इजाफा करेंगी।
1: तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट बुझो तो जाने।
0: दोस्तों आज का सवाल है, राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
1: इस सवाल का सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: हमें रहेगा आपके ढेर सारे मैसेजेस का इंतजार, तब तक के लिए आइए आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
7: अरे चिंकी यार, आज ना मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ।
8: क्यों भाई मिंकी, क्या हो गया?
7: यार मुझे ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग चाहिए, मुझे आज तक कभी आएगी नहीं।
8: अरे ऐसे कैसे नहीं आई, मुझे तो हर बार आती है।
7: अरे तू कहीं की हीरोइन है क्या, तुझे कैसे सेलिब्रिटी फीलिंग आती है?
8: देख तूने कभी नोट नहीं करा होगा, लेकिन जब भी स्टेशन से उतरू ना तो 8-10 रिक्शा वाले ऐसे आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, मैम इधर आइए मैम इधर आइए। कसम से मिंकी, उस टाइम क्या ही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती।
7: ओ अच्छा।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
7: दोस्तों आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे,
8: यानी कि जैव विविधता। हमारे आसपास मौजूद अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पक्षी और प्रकृति की अनमोल विविधता, यही धरती को सुंदर और संतुलित बनाती है।
7: अगर प्रकृति में मौजूद जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म होने लगे तो इसका सीधा असर इंसानों की जिंदगी पर भी पड़ता है।
8: इसीलिए दोस्तों पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
7: छोटी छोटी आदतें जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना भी हमारे धरती को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
8: तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपनी धरती और इसकी खूबसूरत जैव विविधता को बचाने में अपना योगदान जरूर देंगे।
7: तो दोस्तों अब वक्त है यंग अचीवर्स का, जहां हम मिलते हैं ऐसे युवाओं से जो अपने सपनों को मेहनत से सच बना रहे हैं।
8: तो आइए सुनते हैं पुनः प्रसारण हिमानी पाल से सलोनी की बातचीत।
9: दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट यंग अचीवर्स में। आज हम जिस मेहमान से मिलने वाले हैं, उन्होंने कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं।
10: नमस्कार, मैं हिमानी पाल, न्यूरोथेरेपिस्ट।
9: तो हिमानी आप कहाँ की रहने वाली है, अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए।
10: नजीबाबाद के पास एक गाँव पड़ता है इससेपुर, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ।
9: अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है कहाँ से ली है?
10: 12th क्लास जो मेरा पास हुआ है वो निर्मला गोकुल सिंह यादव सरस्वती विद्या मंदिर है। BSc वो मैंने यहाँ से नगिन्ने वाली रोड पर NIT कॉलेज से की।
9: तो हिमानी बताइए आपकी कुछ हॉबीज वगैरह हैं, जैसे आपको सॉन्ग मूवीज क्या पसंद है आपको?
10: हाँ मेरे को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, वैसे मेरे अरिजीत सिंह के सॉन्ग पसंद है।
9: ओके हिमानी, तो हिमानी आप ये बताइए कहाँ से लगा के आपको इस फील्ड में जाना चाहिए?
10: न्यूरोथेरेपी क्या है? न्यूरोथेरेपी में मैं एकदम से नहीं आई हूँ, मेरे को इसका न्यूरोथेरेपी का यहाँ पर किसी को मालूम भी नहीं है, सब आजकल फिजियोथेरेपी को जानते हैं। बट हमारे जो न्यूरोथेरेपी के बारे में मुझे पता चला था वो मेरी मम्मी से पता चला था, क्योंकि मम्मी को ना गैस ज्यादा बनता था और गैस की प्रॉब्लम थी, और मम्मी ट्रीटमेंट लेने के लिए लक्सर जाती थी, वो हरिद्वार के पास आ रहा है, तो मुझे वहां से न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला था। फिर मैंने सोचा कि ये जो वो ट्रीटमेंट देते थे सर, तो मेरे को लगा कि यार ये कोई मेडिसिन नहीं देते ना कोई मशीन का प्रयोग करते, बट ये जब भी कोई प्रॉब्लम है किसी को सर्वाइकल है या पेट की समस्या है, वो ट्रीटमेंट कैसे देते थे, प्रेशर पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते थे।
9: तो हिमानी आपने हमें बताया कि एक होती है फिजियोथेरेपी एक होती है न्यूरोथेरेपी, तो आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि इन दोनों में ट्रीटमेंट का अंतर क्या होता है, कि कैसे हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है और एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करता है?
10: देखो न्यूरोथेरेपी और फिजियोथेरेपी दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। न्यूरोथेरेपी में क्या है, हम ब्रेन और हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। और जो फिजियोथेरेपी है वो क्या करती है, जो हमारी शारीरिक गतिविधियां होती है ना उन पर काम किया जाता है, जो भी हमारे शरीर की कमजोर मसल्स होती है उन पर काम किया जाता है।
9: तो इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी जो फील्ड है आप बिना किसी मशीन के बिना किसी अदर डिवाइस के आप अपने पेशेंट्स को पूरा अच्छे तरीके से ठीक कर देती
10: हैं। जी जी जी।
9: तो आप ही बताइए बेसिकली न्यूरोथेरेपी में किस किस बीमारी का इलाज हो सकता
10: है? देखो न्यूरोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हर प्रॉब्लम जिसको भी कोई भी पेशेंट है, अगर उसको सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या माइग्रेन है, आजकल माइग्रेन और सर्वाइकल ज्यादा चल रहा है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या किसी के ज्वाइंट्स में पेन है, किसी का गैप हट जाता, मतलब कि घुटने में ज्यादा पेन आता है ना।
9: आप ही बताइए कि आपको इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्या आपको फेलियर देखने पड़े अपनी लाइफ में, कि कहाँ आपको ऐसा लगा कि यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, या मैंने यहाँ पर अपनी उम्मीद से हार गई हूँ, या अपने हाथ डाल दिए हैं मैंने।
10: देखो, अगर आप ये मालूम करोगे तो हर किसी की लाइफ में ना स्ट्रगल आते ही हैं, ठीक है। चाहे आप कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, या आप स्कूल में हो, या फिर आगे कॉलेज के बाद आगे के बारे में सोचोगे लाइफ के, तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आए हैं, बस क्या है ना, अगर मेरे को आगे बढ़ना था तो उन स्ट्रगल को भी तो देखना था ना, और स्ट्रगल नहीं आएंगे तो हमें कुछ लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं है। तो लाइफ में इसलिए स्ट्रगल आने बहुत ज़्यादा अनिवार्य होते हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आए हैं। मैं पहले वहाँ पर गई थी, दिल्ली गई थी कोर्स करने के लिए। तो मैं स्टार्टिंग में मैं और किसी के घर पर रहती थी, कोई रिलेटिव थे तो उनके घर पर रहती थी। फिर मैं पीजी में रही, पीजी से फिर हमारे जो जिससे मैंने कोर्स किया न्यूरोथेरेपी का, डॉक्टर नवल सर, फिर मैं उनके घर पर रही हूँ।
9: वही कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है उसको पता चलती
10: जी
9: है
10: जी।
9: तो हिमानी बताइए, आपने ये कोर्स करने के लिए आप दिल्ली रही, आपने बताया, तो आपने कितने साल वहाँ पर ये कोर्स किया है?
10: मैंने वैसे तो ये हमारा 1.5 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है और 6 महीने की इसकी इंटर्नशिप होती है। और अगर आपको अच्छे से और सीखना है कि हम पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, तो मैंने वहाँ 3 साल दिए हैं देहरादून में। वो अपना सेंटर ओपन कर रखा है मैंने, तो मैं देहरादून में अपना सेंटर चलाती हूँ।
9: तो आपका अपना एक क्लिनिक है, मतलब
10: जी, जी,
9: बोल
10: जी,
9: सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी का
10: जी।
9: आप देखती हैं कि पेशेंट आते हैं बहुत घबराए हुए होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, दवाई होती है तो वो ठीक कर देते, लेकिन उससे पहले जरूरी होता है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराए कि आपको कुछ नहीं हुआ है। तो आप अपने पेशेंट के साथ कैसे डील करती हैं कि उनका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो उनको इतनी बड़ी ना लगे और बहुत ही रिलैक्स मोमेंट में वो आप अपने पेशेंट को हैंडल करें?
10: देखो, अगर कोई भी पेशेंट आता है तो आजकल मतलब कि न्यूरोथेरेपी इतना चलन में नहीं है, कोई डॉक्टर फिजियोथेरेपी के लिए बोलता है तो हमारे जो न्यूरोथेरेपी का ना कोई कोई जानता है, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ये सोचता है कि ना इनके पास मशीन है, बस ये पेशेंट को लिटाते हैं और प्रेशर पॉइंट से ही ठीक करते हैं। तो कोई कोई पेशेंट ये भ्रम में रहता है कि यार ये ठीक कैसे करते हैं, बट हमारे जो न्यूरोथेरेपी में हम पेशेंट को क्या करते हैं, अगर वो किस कोई भी सर्वाइकल या उसके नाभि हटी हुई है या कोई भी पेट की समस्या वो हमारे पास लेके आता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आप जो मेडिसिन इतने सालों से खा रहे हो उससे क्या होता है ना, पेशेंट को समझाना पड़ता है कि वो तो ये बोलेगा कि हम मेडिसिन खा के ठीक कर लेंगे, वो तुम 200 रुपए या 100 रुपए फीस लेते हो तो इतना तो हम मेडिसिन खा के ठीक हो जाएंगे। तो हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि आप जब इतने सालों से दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम हमें 2 घंटे का टाइम दीजिए या आधे घंटे का टाइम दीजिए, हम अभी ठीक करके देते हैं आपको। तो अगर हम एक दिन का उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं ना उन पेशेंट को, तो उन्हें 75% रिजल्ट उन्हें एकदम मिल जाता है,
9: मतलब पेशेंट आपके यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाते
10: जी
9: हैं।
10: हाँ जी, जी जी।
9: तो हिमानी, जैसे मैं अपना थोड़ा पर्सनली बताना चाहूंगी आपको,
10: हाँ जी,
9: मेरे शोल्डर में थोड़ा कभी कभी दर्द रहता है,
10: हाँ जी,
9: तो क्या उसको भी न्यूरोथेरेपी के जरिए ठीक किया जा सकता है?
10: जी बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम है या शोल्डर में पेन है, जो भी शोल्डर में पेन आएगा ना वो सर्वाइकल की वजह से आएगा। अगर आपकी गर्दन में दर्द है, जैसे कि आप गलत पोजिशन से सो जाते हो है ना, या आप मतलब कि वर्क ज्यादा करते हो, झुकने का, कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हो या फोन चलाने का काम ज्यादा करते हो, तो ये हमारे ना सर्वाइकल 100% होना है। जब सर्वाइकल होगा तो वो सर्वाइकल की वजह से हमारे शोल्डर में पेन आता है और शोल्डर से फिर पूरे हाथ में आएगा। केमिकल नहीं बन रहे हमारे बॉडी में या कोई ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही, तो हम उनमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाते हैं जिससे वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है।
9: पूरी जर्नी के बारे में बताया, आप ही बताइए कि हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए उनको, और यहाँ से अपने सारे पेशेंट को, हमारे सारे लिसनर सुन रहे होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगी?
10: देखो, मैं सभी से ये बोलना चाहूंगी कि आजकल सही भोजन कीजिए, अपनी दिनचर्या ठीक रखिए। अपने लाइफस्टाइल अगर हमारे खराब है या हमारा डाइजेशन ही खराब है, पहले स्टार्टिंग में यही है कि अपना पेट ठीक कीजिए। अगर हमारा डाइजेशन ही वीक है तो हमें बहुत जल्दी एकदम से बीमार, आजकल छोटे छोटे बच्चों के सर्वाइकल हो रहा है ना, सर्वाइकल शोल्डर पेन और पूरे जॉइंट्स में पेन आने स्टार्ट हो गया। तो ये ना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कि आजकल सब लोग दवाई के पीछे भाग रहे हैं है ना, कि दवाई खानी है तो हम तो 2 पुड़िया 30 रुपए की आ रही है ना, तो उस दवाई को हम खा लेंगे तो हमें 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब वो तो जब तक हमारे जो भी हम दवाई खा रहे हैं, जब तक हमारे ब्रेन में उस दवाई का असर है तो तब तक हम ठीक हैं। जब वो असर खत्म हो जाता है ना तो हमारी बॉडी वही आ जाती है, वही दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूरोथेरेपी में हमारे प्रेशर पॉइंट से ही हमारा ट्रीटमेंट होता है, न्यूरोथेरेपी में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
9: ओके हिमानी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं तो इतना जानती भी नहीं थी, और आई होप हमारे लिसनर्स को भी सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी काम की लगी होगी। तो हिमानी, आपको हमारे सेगमेंट यंग अचीवर से जुड़कर कैसा लगा?
10: आगे बहुत अच्छा लगा,
9: हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हिमानी। बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हमारे लिसनर्स को न्यूरोथेरेपी जैसे एक अच्छे कोर्स और अच्छे ट्रीटमेंट के बारे में बताने

0: कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस-हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: चिंटू भैया।
1: हाँ मिंटू, बोल।
3: आपको एक बात बताऊं? पता है, हमारे ना स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो पापा ना हमें गर्मियों में मनाली लेकर जा रहे हैं।
1: किस्मत भी बस इन्हीं की है। अब इन्हें गर्मी लगती है तो आजकल के माँ बाप शिमला ले जाते हैं। हमें गर्मी लगती थी तो हमारे माँ बाप हमें टकला करा देते थे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट कहानी के उस पार का, जहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। तो आइए सुनिए कहानी सिक्का बदल गया, एपिसोड 5।
5: दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना शाहनी ने अपनी हवेली, अपना घर और अपनी दुनिया पीछे छोड़ दी। जिस देहरी पर वो कभी दुल्हन बनकर आई थी, आज उसी देहरी को छोड़कर वो अनजान सफर पर निकल पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या सचमुच सिर्फ राज बदला था या इंसान भी बदल गए थे? हेलो दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी लेकर हाजिर हूँ आपके लिए कहानी के उस पार में, कहानी सिक्का बदल गया का एपिसोड नंबर 5, सिक्का बदल गया। आइए दोस्तों, कहानी में सुनते हैं आगे क्या हुआ। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। इस्माइल ने भारी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह तो जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आसीस झूठ नहीं हो सकती। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जनसमूह रो दिया। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज ही पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा। तुम्हें भाग लगे चन्ना। ट्रक चल पड़ी, अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, सब शाहनी की आंखों में घूम रहे हैं। दाऊद खान ने धीरे से कहा, मन में मैल ना लाना, वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को कैंप में जमीन पर पड़ी शाहनी ने आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। राज बदल गया था, लोग बदल गए थे और शायद इंसानियत भी कहीं पीछे छूट गई थी। लेकिन शाहनी की दुआएं आज भी गवाही देती हैं कि नफरत के दौर में भी इंसानियत पूरी तरह कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण सोबती जी की मार्मिक कहानी सिक्का बदल गया।
4: दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था बूझो तो जाने के अंतर्गत एक सवाल। सवाल था, राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही जवाब है राज्यपाल।
6: तो चलिए अब जान लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि है नानक खन्ना, जॉन डी कैस्ट्रो, आकाश रस्तोगी, सुदर्शन शाह, जगदीश धाकड़, धर्मेंद्र छीपा, दिनेश वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, ताज अंसारी, बबलेश पवार, पुनाजी नावकर, प्रवीण चौहान, दिगर्शन गौड़ और हैं जाकिर मंसूरी, तुलसी मस्कीन, मोहम्मद रफीक पवार, संजय धिंगिया, राम कुमार रेवड़, विठल सुरोशे, बी आई धाकड़, रोशन देवांगन, मसरूर हसन, नवी हसन अब्बासी, गुरमीत सिंह, अजय शर्मा यात्री, बी कमल, सुरेश कुराना, हल्के जयपाल यादव, हीरामणि वर्मा,

0: श्याम पांडे, आफताब अंसारी, फागुराम यादव, सदाशिव थोरात, देवशंकर तामूरिया, मोहम्मद सईद अब्बासी, अल्ताफ हुजरे, मोहम्मद यासीन अंजान, राजकुमार डूडी, जीशान वारसी और हैं गजानन येले, निसार सलमानी, सिद्धांत कोंडाने, अनिल बी घोड़के, राजवीर सिंह यादव, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद जाहिद अली, उत्तम कुमार, राजेश वर्मा, मिसबा शमसी, अरविंद कुमार, शकील अहमद इदरीसी, नदीम बाकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, सत्येंद्र चंद सौलिया, रवि कुमार राहुल, धीरज भाई रबाड़ी, शाहरुख नूर अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, विजय सुरलकर, मुकेश कश्यप, दुगाराम साहू।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आइए आप सभी को सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारे सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स जो हैं वो आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से हैं, जिनको आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर भी सुन सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साथी अलीना और सना को दीजिए प्रोग्राम संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार
1: और आलोक कुमार गंगाराम की
0: राम
1: राम राम।
0: राम।
1: और अंकित भैया क्या हो रहा है?
0: भैया हम तो ठीक है, तुम बताओ थारा स्वास्थ्य कैसा है?
1: भाई देखो, हम भी मौज में हैं। भाई देखो, बात यह वैसे किसान भाइयों का आसरा हुआ है कि मौसम से लड़ने की तो आदत रहे। भाई गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, दिन हो, रात हो, भाई किसानों को तो काम करना।
0: बिल्कुल भैया। तो भैया कुछ गर्मी से सावधानी तो बरत रहे होंगे तुम।
1: बिल्कुल, देखो भाई वो क्या हुआ ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी,
0: बिल्कुल भैया।
1: तो भैया सावधानी तो हर टाइम जरूरी है। तो भाई देखो, हम तो जब घर से बाहर निकले भैया, सिर पर अपना मजबूत कपड़ा रहे और पानी की बोतल रहे,
0: बिल्कुल भैया।
1: और भैया जूते अपने ठीक ठाक से रख रखे हैं जिससे हवा भी लगती रहे। और आजकल कीड़े कांटे का डर रहे हैं ना भाई,
0: हाँ हाँ
1: जब गर्मी हो रही ना तो जो जहरीले कीड़े हो ना वे भी भैया आजकल जमीन में से निकलते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: भैया,
1: अगर मजबूत जूता नहीं होने का ना तो भी भैया नुकसान में पहुंच जाएंगे।
0: बिल्कुल भैया। और एक बात और भैया,
1: हाँ
0: भैया अगर हम गर्मी झेलनी ना पड़ो उससे पर उसके लिए काम जो कर ले मैं
1: बताओ।
0: भैया, हम सवेरे ही जो काम करना चले जामा, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेमा, और जैसी धूप तेज हो वो अपना घर को आ जामा।
1: देखो भाई, कुछ काम ऐसे होते हैं अंकित भैया कि भैया जिनके समय निर्धारित नहीं होते।
0: हाँ
1: जैसे मान लो भैया हमें सिंचाई करनी, अब बिजली आ रही है दोपहर को 2 बजे, तो आप घर सो रहे हैं तो खराब हो जाएगा काम,
0: हाँ भैया
1: तो हमें उस टाइम भी तो जाना ही पड़ेगा। तो
0: बिल्कुल भैया।
1: कुल मिला के देखिए, अपने शरीर को हमारे किसान भाई ऐसी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं कि भैया वो कैसा ही मौसम हो उससे वो झेल लें।
0: बिल्कुल भैया। और भैया उसके साथ साथ भैया हमें पशुपालन का भी तो ध्यान रखना।
1: भाई बिल्कुल, ध्यान क्या, पशु अगर पाल रखे हैं और उनका ध्यान ना रखो तो लो टोपा उड़ जाओगे। तो भाई
0: बिल्कुल
1: बात यह है, अगर पशु आपके पास हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना। विशेष रूप से इन दिनों भैया जैसा हमें बहुत प्यास लगा ना, पशुओं को भी लगा। पर एक गलती कर दें भाई साहब, अंकित भाई किसान भाई,
0: क्या भैया,
1: वो ये कर दें हैं, जैसे हमें पानी की जरूरत हो ना तो हम क्या करेंगे, और भाई ताज़ा पानी निकाल लो भाई नल से, ताज़ा पी मांगे, या भैया ओह गर्म हो रहा थोड़ा सा फ्रिज का पानी मिला लो, अपने आप तो पियेंगे ठंडा और ताज़ा पानी। और पशुओं को नहीं आ रही हो, सुबह पिलाया था बच गया, लाई हुई रख दो आगे। जब
0: बिल्कुल
1: गर्म
0: भैया।
1: पानी तुम नहीं पी सकते
0: हाँ,
1: तो पशुओं में तो जान है भैया।
0: बिल्कुल भैया। एक बात और भैया,
1: हाँ
0: अब तो वो चल गया टैंक,
1: हाँ
0: टैंक में सुबह को पानी भर दिया और शाम को वही पानी पिला दिया, यो नहीं जे ताजा पानी अपने पशुओं को पिला दे मैं
1: बिल्कुल। तो
0: तो।
1: भैया देखो, सलाह यही है कि अपने पशुओं को ताज़ा पानी दें। और आजकल एक चीज़ का और ध्यान रखना,
0: क्या भैया।
1: वैसे तो भाई हरे चारे की इस समय दिक्कत रहती
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: ज्यादातर किसान भाई भैया भूसा खिला रहे हैं या चोकर आदि से सानी कर दें। लेकिन अगर हरे चारे की व्यवस्था है,
0: हाँ
1: मक्का बो रखी या बाजरा बो रखा या और कोई है लोबिया बो रखा, तो उससे बढ़िया कोई किसान नहीं।
0: बिल्कुल भैया।
1: जो हरे चारे का चक्र बनाकर रख रहा किसान, समझ लो वो पक्का पशुपालक है।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो भैया आपको चाहिए ये हो कि जब कुट्टी काटते हैं ना
0: हाँ
1: तो जब हम खिलाना है, यानी कि 3 टाइम खिलाते हैं ज़्यादातर हमारे पशु को, किसान भाई पशुओं को, सुबह को सवेरा कुट्टी काटो,
0: हाँ
1: फिर दोपहर को अगर खिला रहे हैं दोपहर को काटो, और शाम को भैया काट दो कुट्टी,
0: बिल्कुल भैया
1: 3 टाइम काटो। तो भैया
0: बिल्कुल
1: ऐसा हो जाएगा जैसे गर्म गर्म रोटी तवे वैसे खाओ ना आप, तो मज़ा आ जाए रोटी खाने
0: बिल्कुल
1: में।
0: भैया। हम थारी बात समझ गए हैं।
1: हाँ
0: थारी बात कहने का मतलब ये हो कि भैया जब हम चारा काट देना है पशुओं को, जब भी काटना है
1: बिल्कुल
0: काट को नहीं छोड़ देना है।
1: बिल्कुल। और आजकल तो एक बात देखी होगी तुमने कि आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है।
0: हाँ
1: अब गर्मियों में क्या होता है ना, कभी कभी सब्जी कोई भी हो ना, ये सब्जी में इसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा,
0: हाँ
1: दूर से दाल है ना अच्छी नहीं लग रही। कभी कभी क्या होता है, चटनी बनाई आपने आम की,
0: हाँ
1: हरी मिर्च डाल ली उसमें, पुदीना डाला, धनिया वनिया ये सब, ओह कितना मज़ा आ गया।
0: बिल्कुल
1: तो
0: भैया
1: ये उसका कारण ये होता है कि हम अपना स्वाद बदलना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसी पशु भी कभी कभी स्वाद बदलना चाहता है। तो पशुओं को भैया कभी तो आपने चोकर की सानी लगा दी, कभी भैया आटे की सानी लगा दी, कभी भैया आपने जो मिक्सचर आता है मिला हुआ वो लगा दी।
0: हाँ
1: इस तरह से अगर देंगे तो आजकल के ऐसे टाइम में जब भैया भोजन में थोड़ा आनंद कम आता है तो भैया बहुत बढ़िया रहेगा और वो
0: बिल्कुल
1: सुपाच्य भी हो जाएगा।
0: बिल्कुल भैया भैया उससे जो पाचन क्रिया वो भी सही रहेगी।
1: बिल्कुल। तो देखो बात तो बतेरी हो गई
0: हाँ
1: और बात आज करनी है,
0: हाँ
1: और तो पहले कहो तो विज्ञापन सुन ले को थोड़े से।
0: फिर ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने

0: उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देखो आलोक भैया, संदेश हमारे किसान भाई ने सुन लिए,
3: ठीक।
2: और देखो अब जब हमारे किसान भाई के खेत खाली भी पड़े हैं, और भैया अगर खेत हमारे किसान भाई के खाली अगर एक काम कर ले तो निकर पूछना हो जाए
3: भैया। एक काम नहीं, काम बताओ क्या करना है
2: भैया। हम अपने खेतों की गहरी जुताई करनी
3: है। हाँ, ये बात समझ भाई। अब एक बात थोड़ी समझे हमारे किसान भाई। तो भाई बात मुझे वही अच्छा लगा कि आदमी बात साफ कह दे। तो भाई बात आपने साफ कह दी, तो अब बात रही जुताई की, तो जुताई करनी है गहरी।
2: हाँ,
3: अब सवाल यह है कि गहरी जुताई करके किसानों को क्या फायदा लग रहा है? क्योंकि कोई भी आदमी जब काम करेगा उसको कुछ फायदा तो हो जा। भाई देखो, हमारी जो धरती है यो हमारी माता है।
2: हाँ।
3: और भैया यो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, हम आने वाली पीढ़ी को सौंप कर चले जाएंगे। यो ही सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है।
2: बिल्कुल भैया।
3: और यो ही सिलसिला चलता रहेगा। तो यो इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति को हमने बनाए रखा। तो गहरी जुताई करने से फायदा यो होता है कि नीचे की परत ऊपर आ जाती
2: है,
3: और आजकल जो हानिकारक कीट होते हैं ना वो जमीन में नीचे चले जावे, और जब नीचे से उखड़ कर आ जाएगी वो, तो सारे कीट ऊपर आ जाएंगे।
2: बिल्कुल भैया।
3: और आपने देखा होगा धूप बहुत तेज हो रही।
2: हाँ।
3: तो उस धूप में जब वो कीट आएंगे ना, सब जल के जो है,
2: बिल्कुल भैया,
3: एकदम नष्ट हो जाएंगे। यानी कि खुद ही जो है दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं,
2: बिल्कुल
3: खुद ही मर जाएंगे सारे हानिकारक।
2: बिल्कुल भैया। और भैया एक बात और, भैया एक तो खरपतवार भी कम हो गएंगे।
3: हाँ।
2: और भैया जो हमारी जो कीट ऊपर जो परभक्षी होते हैं ना, उन्हें खा लेंगे, और भैया हमारी जो रोग की जो वो है ना, रोग भी कम लगेंगे।
3: बिल्कुल। और सबसे बड़ा फायदा ये है, आप दोपहर में कभी किसी डले को छू कर देखियो, छुआ नहीं जाने का आपसे। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे भैया किसी भट्टी में से निकाल रहा हो।
2: बिल्कुल भैया।
3: तो लाल तृप्त एकदम जब हो जाती है ना मिट्टी, तो उसमें पानी सोखने की ताकत बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल भैया।
3: और हमारी पोषक तत्व जो है भूमि में जब आते हैं, हमारी भूमि जब ही उपजाऊ होती है जब उसमें पानी को सोखने की ताकत बढ़ जा।
2: बिल्कुल भैया।
3: तो भैया इससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता, इसलिए अपने किसान भाइयों को हम सलाह यो दे रहे हैं कि अगर आपने हरे जो वो है
2: हरी खाद
3: में ढेंचा नहीं बोया, सनी नहीं बोई, लोबिया नहीं बोया या मूंग नहीं बोई, तो भैया छोड़ो, जो काम नहीं हुआ नहीं हुआ, जुताई कर दो बस।
2: बिल्कुल भैया।
3: और यो तेज गर्मी जब पड़ेगी समझ लो यो बस मजा बांध देगी।
2: बिल्कुल भैया। जब खेत तैयार करो भैया, उसको गोबर की खाद डाल दे, क्योंकि भैया जैविक खेती को हमें बढ़ना है। और देखो आज का समय है, जब संकट की स्थिति है, हमें भैया यूरिया पर इन चीजों पर निर्भर नहीं रहना है।
3: बिल्कुल। देखिए भाई, सरकार भी कोशिश कर रही है और हमारे किसान भाई भी समझ रहे हैं, आज हमें विदेशी पैसे की जरूरत है, यानी कि चीजों को निर्यात करने की जरूरत है, और वो निर्यात हम जब ही कर पाएंगे जब हम दूसरी चीजों को अपने दूसरे लोगों को बेच पाएंगे।
2: बिल्कुल।
3: तो हमारी क्या होती है, बहुत सारी चीज जो है बिकने से रह जाती है, और बिकने से यूं रह जा है कि हमारे जो भी फसल हम उत्पादित करते हैं उसमें भैया जो रसायन है उनके अंश आ जाते हैं।
2: हाँ।
3: तो दूसरे देश वाले उसे लेने से मना करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: जब वो टेस्ट करते हैं तो भैया वो फेल हो रहे हैं। तो उसका एक तरीका क्या है कि भाई हम जैविक उत्पादन करें, तो जैविक चीजों को दूसरी चीज खरीदेंगे, हमारे पास डॉलर आवेगा, तब हम दूसरी चीज को करेंगे, हमारा देश समृद्ध होगा। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि 2047 तक हम विकसित देश हो जाएंगे।
2: बिल्कुल।
3: तो उसमें जो हमारी कृषि है वो भैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और भैया हमारा देश जो आत्मनिर्भर बनेगा, और किसान भी भैया समृद्ध होंगे।
3: बिल्कुल। और भैया असली समृद्ध जब होंगे जब हम सुनवा देंगे किसान भाइयों को एक और संदेश।
2: बिल्कुल भैया।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: लोग भैया संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिए।
5: ठीक।
4: और भैया आज दिन पता है दिन कौन सा?
5: भाई बताओ कौन सा दिन है?
4: भैया आज है माह का चौथा शुक्रवार। और भैया आज हमारे किसान भाई सुनते हैं किसान भाई की खेती एवं पशुपालन संबंधित समस्या पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री।
5: ठीक।
4: और भैया मैंने थैला सा ले रखा, अरे इसे खोल लूं मैं?
5: और क्या करोगे, घर ले जाओगे क्या? खोलना तो भाई
4: बस। तो भैया ये पहला पत्र आया तो पढ़ना शुरू कर देते हैं।
5: ठीक ठीक
4: भैया, ये पत्र आया है ग्राम सिजोली,
5: हाँ?
4: पोस्ट हरगनपुर, जिला बिजनौर से।
5: ठीक।
4: और भेजने वाले हमारे किसान भाई हैं तेजवीर सिंह, रजवीर सिंह। ये भैया पहले हम राम राम लिखते हैं।
5: बहुत अच्छे।
4: और भैया ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने गन्ने की सिंचाई की थी तो उसमें खरपतवार ज्यादा उगाए हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करें?
5: बिल्कुल। तो तेजवीर सिंह जी, पहले तो आपको राम राम, क्या आपने हमें चिट्ठी लिखी। और भाई देखो, अपनी बात रखना ये भी एक कला होती है।
4: बिल्कुल।
5: और इन्होंने बड़े खूबसूरती से लिखा कि भाई हमने गन्ने की अच्छी फसल बोई और उसमें जो है खरपतवार हो रहे हैं। तो देखो भाई, गन्ने के बारे में एक बात कह दे कर रहे हैं पुराने गांव वाले,
4: हाँ हाँ,
5: कि भैया गन्ने में तो धे खोद और धे पानी, अगर भैया होश लिया तो गन्ना गया।
4: बिल्कुल भैया।
5: तो यानी कि बात यह है कि निराई गुड़ाई बार बार करनी पड़ती है गन्ने में। और आजकल भैया देखो, ये बात इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखी कि दो तरह से गन्ने की बुआई की जा रही है। एक ट्रेंच विधि से, यानी कि एक गोल से दूसरे गोल के बीच में गैप ज्यादा हो, और एक भैया पुरानी विधि जिसमें एक गोल से दूसरे बीच की दूरी कम होती है। अब जौन सी भी विधि से बो रखा होगा ये तो इन्हें पता होगा, लेकिन भैया बात यह है अगर खेत में खरपतवार होंगे तो निश्चित रूप से भैया वो पोषक तत्व लेंगे,
4: हाँ।
5: और पोषक तत्व लेंगे तो आपकी जो मुख्य फसल है यानी गन्ना,
4: हाँ।
5: वो बढ़िया नहीं होने की।
4: बिल्कुल भैया।
5: तो भैया देखो, आपको उसे निकालना ही पड़ेगा, चाहे तो भैया आप ट्रैक्टर से निकलवा दो, आजकल छोटे वाले रोटावेटर चल रहे हैं, अगर आपने जो है चौड़ी विधि से गन्ना बो रखा है, या भैया फावड़े से निकाल लो, खुरपे से निकाल लो, कसले से निकाल दो, जो भी आपके पास संसाधन हो तो आप उससे जो है निकलवा दीजिएगा। और भैया सिंचाई बार बार करनी है।
4: बिल्कुल।
5: तो सिंचाई करते समय एक बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी भर कर छोड़े ना, क्योंकि पानी की एक मैं आपको बता दूं, हमारे किसान भाई सोचो लो भैया भर दो, कुछ दिनों तक पानी नहीं देना पड़ने का। आजकल पानी बहुत ज़्यादा भरने से एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए जो आजकल कल्ले फूटते हैं,
4: हाँ,
5: और पानी भर दिया आपने और दोपहर में गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, तो पानी की एक खासियत है कि ये देर से तो गर्म हो और देर तक गर्म रहे, क्योंकि इसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा हो वो देर से गर्म हो और देर से ठंडा हो।
4: बिल्कुल भैया।
5: तो ये बहुत देर तक गर्म अगर रह गया तो आपके जो कल्ले हैं उन्हें नुकसान दे जाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, खेत में नमी बनाकर रखनी, यानी कि सिंचाई तो करनी बार बार, लेकिन पानी भर का नहीं रखना,
4: लावाला पानी इसमें नहीं भरना।
5: बिल्कुल। तो ये काम करें, और भैया निराई गुड़ाई कर दें आप तो हम भी देखेंगे भैया गन्ना कैसा नहीं होता। और भैया अगर आपके खेत में कोई कीट या रोग लग रहा है,
4: हाँ,
5: तो उसकी निगरानी करते रहें।
4: बिल्कुल भैया, निरीक्षण करने का जरूरी है।
5: ठीक है भैया।
4: तो भैया इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और भैया ये दूसरा पत्र पढ़ लेते हैं।
5: बिल्कुल
4: भैया, ये पत्र आया है ग्राम सांकली, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर से।
5: ठीक।
4: और भेजने वाले हमारे किसान भाई हैं रिंकू शर्मा, नन्हे शर्मा, लबी शर्मा, राजेंद्र शर्मा, कनिष्क भारद्वाज और लाल सिंह दिवाकर।
5: ठीक।
4: ये भी हमें राम राम लिखते हैं और इन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है।
5: अच्छा।
4: और ये आज जानना चाहते हैं कि इन्हें धान की नर्सरी करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है।
5: बिल्कुल।
4: और ये नर्सरी करने का सही समय है या नहीं?
5: अच्छा, देखो बहुत ही बढ़िया और सामायिक प्रश्न इन्होंने करा है। तो पहले तो भैया देखो, इन्होंने हमें खत लिखा और भैया हमें राम राम कह रहे हैं, तो हम भी आपको राम राम कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत ही बढ़िया समय इस समय जो है नर्सरी का चल रहा है। 15 जून तक आप नर्सरी कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी से पहले कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर भैया

0: डालना बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल भैया।
0: और जिसका समय अब सही चल रहा है। पहली बात तो ये है कि नर्सरी के लिए भैया आपको बीज का चयन करना, बीज का चयन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए करना।
1: क्या क्या
0: पहली
1: भैया?
0: बात तो ये है कि आपको मोटा चावल वाला धान बोना है या बारीक चावल वाला बोना है।
1: हाँ।
0: दूसरी बात ये है कि आपको कम अवधि का बोना है या ज्यादा अवधि का बोना है। तीसरी बात यह है कि बासमती धान बोना है या अन्य धान बोने हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये मन आप पहले बना लें, उसके बाद भैया विश्वसनीय जगह से आप बीज खरीदें। हम तो कोशिश ये करेंगे कि भाई आप सरकारी बीज केंद्र से खरीदें और उसकी पक्की रसीद लें, क्योंकि अब जमाना ऐसा आ गया अंकित भाई कि
1: हाँ
0: लोग धोखा बहुत दे रहे हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: अगर आप पे पक्की रसीद है तो उसमें लिखा होगा कि बासमती की पूसा 1 है या 1509 है, तो वही अगर ना निकली तो आप केस कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम।
1: बिल्कुल भैया, वरना ऐसा हो सका कि थैला कुछ और है और सामान उसमें कुछ और है।
0: बिल्कुल, तो ये धोखाधड़ी नहीं होने की आपके साथ। दूसरी बात ये है कि बीज का चयन आपने कर लिया,
1: हाँ
0: तो अब आप नर्सरी जहां भी बोम है उसकी तैयारी अच्छे से करें, यानी कि उसकी जुताई बढ़िया से कर दें,
1: हाँ
0: उसमें कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए,
1: हाँ
0: उसके बढ़िया उसमें गोबरी खाद पड़ी हुई
1: बिल्कुल
0: हो,
1: भैया।
0: अच्छी मेंढबंदी हो, सुंदर सा खेत हो, पानी भरकर शाम के समय में बोने से पहले एक काम करें
1: क्या
0: कि
1: भैया?
0: भैया जो बीज है आपका
1: हाँ
0: उससे पहले आप जो है ड्रम ले लें
1: हाँ
0: या और कोई भैया आपके पास बर्तन होगा उसमें डुबो लें और उसमें ऐसा पानी डालें जिसमें नमक मिला हुआ हो।
1: अच्छा भैया।
0: भैया उसमें नमक मिला के आप डाल लेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि नमक घोलने से जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर आ जाती
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: भैया।
0: तो भैया होगा ये कि जो भी हल्के दाने होंगे
1: हाँ
0: या जो ऐसे दाने होंगे जो
1: खराब है।
0: बेकार हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल स्वच्छ और बढ़िया वाला बीज नीचे बैठा हुआ मिलेगा।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो उस बीज को ले मैं, उस बीज को आप भैया एक जो टाट है
1: हाँ
0: उस
1: हाँ
0: पर दबा कर रख दें, हल्का सा अंकुरित भी होता नजर आएगा,
1: बिल्कुल
0: और उसे आप जब खेत में बढ़िया कादल काट के पानी भर के जब बखेरेंगे ना तो एक दाना बढ़िया जमेगा।
1: बिल्कुल
0: तो इस
1: भैया।
0: तरह से अगर आप नर्सरी बोएंगे तो आपकी नर्सरी बहुत बढ़िया होगी, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की नर्सरी अच्छी हो जाए।
1: बिल्कुल भैया भैया, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा
0: बिल्कुल
1: और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी।
0: ठीक है।
1: भैया इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और भैया अगला पत्र ले लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: भैया ये पत्र आया है ग्राम छजूपरा, तहसील मंडी धनोरा, जिला अमरोहा से,
0: अच्छा।
1: और पत्र भेजने वाले हमारे किसान भाई हैं आलोक कुमार, प्रशांत कुमार, देवेश कुमार और सौरभ कुमार।
0: ठीक
1: और ये भैया हमें राम राम लिखते हैं।
0: जी।
1: और भैया ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने पशु पाल रखे हैं, तो गर्मियों में अपने पशुओं को कैसा आहार दें जिससे इनके जो पशु हैं स्वस्थ रहें और दूध का उत्पादन भी अच्छा रहे।
0: भाई देखो, कार्यक्रम की जो हम शुरुआत कर रहे थे तो इत्तेफाक से यही बात चल रही थी
1: हाँ
0: तो वैसे तो हमारे जो है भाई हैं छजूपुरा के भाई, इन्होंने सुनी होगी, लेकिन भाई खत का जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया।
0: तो भाई एक बार फिर कर लेते हैं, अच्छी बात तो चाहे कितनी बार करो वो अच्छी बात तो अच्छी हो गए, यानी अंकित भैया।
1: बिल्कुल
0: तो देखिए, पशुपालन करना हमारे किसान भाइयों का धर्म बनता है,
1: बिल्कुल भैया।
0: केवल दूध उत्पादन की दृष्टि से नहीं। दूध उत्पादन भी बढ़िया है भाई, देखिए हम अच्छे खामे पीवेंगे नहीं जब हम भैया दूध नहीं मिलने का, पनीर नहीं मिलने का, मावा नहीं मिलने का, घी नहीं मिलने का, तो स्वास्थ्य अच्छा कैसा
1: बिल्कुल
0: होगा,
1: भैया। और साथ साथ खेती का स्वास्थ्य भी पशुओं से ठीक रहे।
0: और सबसे बढ़िया दही मट्ठा नहीं मिलने का
1: हाँ
0: आजकल मेन गिजा वही है। दूसरे भाई ये है कि पशु आपने पाल रखे हैं तो भैया उनको अच्छा खाने पीने को देना, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है।
1: बिल्कुल।
0: बात इन्होंने चारे की पूछी शायद,
1: हाँ हाँ
0: हाँ तो देखो या और क्या पूछिए।
1: भैया, इनकी कैसा खान पान इन्हें देना चाहिए
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: गर्मियों में पशु हमारे स्वस्थ रहे में।
0: बिल्कुल, खान पान की बात इन्होंने करी है। तो देखो खान पान में हमने कहा दो चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको पौष्टिक चारे का ध्यान रखना है
1: हाँ
0: जिसमें भैया दाना है, जैसे आपके खल है, चोकर है, बिनौला है, आपके सोयाबीन है, इन जो है इन चीज़ों का मिश्रण देना है।
1: बिल्कुल
0: तो इन चीज़ों का मिश्रण बना के आजकल बाजार में भी मिश्रित आ रहे हैं
1: हाँ
0: चारे, वो देना है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर किसान भाइयों के पास भैया वो होता भूसा
1: बिल्कुल
0: गेहूं का,
1: भैया।
0: तो भूसे पर सानी करते हैं, तो ये कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और भैया जो जागरूक हैं वो किसान भाई क्या करते हैं भैया, वो हरा चारा देते हैं,
1: हाँ
0: वो मक्का बो कर रखते हैं, या भैया आजकल लान वाला बाजरा चल गया, या भैया लोबिया बो लेते हैं।
1: लोबिया।
0: तो ये जो चारे हैं ना हरे वाले, ये ऐसे हैं जैसे आजकल भैया सब्जी में अगर आपने घी डाल दिया ना, ओहो कैसे कहें वो स्वाद बढ़
1: स्वाद बढ़
0: गया
1: गया।
0: तो ये समझ लो घी का काम करेगा। तो जब हमें सब्जी में दाल में घी की जरूरत है, ऐसी पशुओं को भैया अपने चारे में घी का काम करते हैं ये हरे चारे,
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: जैसे जाडो भैया बरसीन करे है आजकल भैया ये करते हैं, लोबिया हो गया या बाजरा हो
1: बिल्कुल
0: गया।
1: भैया।

0: मक्का होगी।
1: मक्का।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने किसान भाइयों से कि भैया हरे चारे का चक्र बना के रखें, अपने पशुओं को भैया दाना युक्त तो जो है
1: मिश्रण
0: भूषण
1: दें।
0: मिश्रण दें मैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि समय समय पर ताज़ा पानी पिलाएं।
1: बिल्कुल भैया।
0: और दूसरे भैया सही समय पर यानी कि जब धूप ना हो तभी पशु बाहर बांधें, धूप अगर बाहर दिखाई दे रही पशु के ऊपर तो उसे तुरंत छाया में बांध दें, क्योंकि आजकल भैया सुबह शाम भी अगर धूप में बांध दिया ना तो उससे बीमार होने का भय बना
1: बिल्कुल,
0: रहे।
1: ये देखो लू चल रही है, लू से अपने जो पशुओं का स्वास्थ्य खराब होता है, तो उस लू से भी अपने पशुओं को बचाना है।
0: बचाना है भाई। देखो हमारे जो मैंने देखा ना अभी हम एक जगह गए थे अभी,
1: हाँ
0: तो उन्होंने क्या काम रखा, अपनी पशुशाला के दरवाजे पर टाट के वो जो हो ना
1: बोरी।
0: बोरे
1: हाँ हाँ
0: वो टांग रखे हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो हमने पूछा भाई ये को टांग रखे हैं ना जी, ये बड़ा फायदा है इनसे।
1: क्या
0: उन्होंने
1: भैया।
0: क्या है ना हम क्या करें दोपहर में इसे भिगो दें
1: हाँ
0: और जब हवा लगा ना इन पर
1: तो
0: तो
1: ठंडी
0: ठंडी
1: ठंड।
0: ठंडी हवा जावे हमारे पशुओं को, तो ये कूलर का काम करें।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया बड़े बड़े दिमागदार हमारे किसान भाई हैं। और आजकल तो भैया कूलर और पंखे
1: पंखे। हाँ
0: भैया पशुशाला में भी लगा रखे हैं, तो जब हमारा जी करे कूलर पंखे बैठने में तो पशु बेचारे जी
1: बिल्कुल
0: करे उनका,
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया।
0: ऐसी व्यवस्था बन जाए तो क्या कहने। तो अगर इस तरह से हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उनका पशुपालन अच्छा होगा और सब काम अच्छा होगा, तो उनका मन खुश होगा।
1: बिल्कुल भैया, जब मन खुश होगा तो हमारे किसान भाई का मन भी करेगा मनोरंजन का।
0: तो भाई मनोरंजन की अगर बात है तो कहो तो सुनवा दें एक रागनी।
1: बिल्कुल भैया।

0: दुनिया में दहेज दोस्तों। अभी हमारे किसान भाइयों ने नरेंद्र सिंह की आवाज में कितनी प्यारी सी रागनी सुनी, और देखो आलोक भैया, हमारे किसान भाई का मनोरंजन भी हो गया होगा और दिन भर की जो थकान वो मिट गई होगी।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भैया आप। और भाई, अब मैं देख रहे हैं एक चिट्ठी और आपके हाथ में है,
0: हाँ भैया,
1: तो ये ऐसे ही पढ़ दो।
0: भैया ये पत्र आया है ग्राम व पोस्ट राहु नगली जिला बिजनौर से,
1: ठीक,
0: और भैया ये भेजने वाले हमारे किसान भाई सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस चौहान, और भैया ये भी हमें राम राम लिखते हैं।
1: अच्छा।
0: और भैया ये आज जानना चाहते हैं कि इनके जो खेत खाली हैं तो वो इस समय मिट्टी की जांच करवा सकते हैं नहीं।
1: बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया, और समय का इन्होंने जो है खत लिखा है, और इनके जरिए हमारे भाई और किसान भाइयों को भी चाहिए कि देखो हमारी धान की फसल बोई जाने वाली है
0: हाँ
1: या हमारे अन्य जो फसलें हैं उनकी तैयारी में हमारे किसान भाई लगे होंगे, तो हमें समय समय पर भैया अपनी मिट्टी की जाँच करानी चाहिए,
0: हाँ
1: ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे खेतों में किन पोषक तत्वों की कमी है।
0: बिल्कुल
1: और भाई वैसे भी सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि भाई कोशिश ये करी जाए कि जो रासायनिक चीज़ें हैं या अंधाधुंध जो हम DAP का या यूरिया का या अन्य खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर रोक लगे।
0: और जैविक खेती की तरफ हम लौटा।
1: बिल्कुल, तो भैया देखिए इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम अपने भूमि का सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाएं, यानी कि भूमि परीक्षण का एक प्रपत्र बनवा लें, जिससे जो है हमारे भूमि के बारे में ये पता चल जाए कि आपकी भूमि अम्लीय है या क्षारीय है और किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की ज़रूरत है या किसकी नहीं है। तो भैया देखिए बात ये आती है कि कैसे हम मिट्टी की जांच करवाएं,
0: हाँ
1: तो दो बात हैं, एक तो मिट्टी की जांच का नमूना कैसे ले, में
0: हाँ
1: नमूना भी ले लिया तो फिर कहाँ दें में, तो पहले हम बात कर लें नमूना कैसे लिया जाए।
0: बिल्कुल भैया
1: तो भाई देखो जो आपका खेत खाली हो तो पहले तो आपने उसका नाम रख रखा होगा, एक खेत का भैया है तो खसरा नंबर होगा, फलाने खसरा नंबर का खेत
0: हाँ
1: कौन
0: ये
1: सा,
0: पूरब का खेत है, ये पछा का खेत है।
1: हाँ, या फिर नाम रख लें
0: हाँ
1: कोई भी है ना भाइयों जो है अशोक के बराबर वाला खेत है या यो कौन सा खेत
0: यो
1: है।
0: कपिल वाला खेत
1: हाँ
0: है।
1: हाँ हाँ तो आपकी जो भी पहचान हो वो लिख लो। अब भैया एक कागज के बजाय उसके कपड़े की थैली सिलवाओ, उस पर अपने खसरा नंबर, खेत का नंबर, अपना नाम और पूरा पता लिख लो,
0: और
1: और
0: भैया
1: मिट्टी की जांच के लिए नमूना ले लो। कैसे
0: बिल्कुल
1: लेना ये बात हम कर लें। भाई देखो ये है कि फावड़ा आपके पास होगा,
0: हाँ
1: फावड़ा ले जाके गहरा सा फावड़ा मारो एक,
0: हाँ
1: फिर दूसरी तरफ से मार दो, यानी कि अंग्रेजी के वी के आकार का एक अक्षर बना दो दोनों
0: एक
1: तरफ
0: बी
1: से,
0: आकार का गड्ढा बना दो
1: गड्ढा बना दिया। फिर भैया खुरपी आप पर होगी, उस खुरपी से थोड़ी थोड़ी मिट्टी छील लो,
0: ऊपर की।
1: हाँ, और वो जो है एक कट्ठे में भरते रहो अपने,
0: हाँ हाँ
1: और ऐसा ऐसा भैया आप 8-10 जगह से कर लो अपने खेत के। और भाई वो मिट्टी जो है कम से कम 5-6 किलो होनी चाहिए।
0: हाँ
1: और भाई हमें जो है कहाँ से नमूना नहीं लेना है इसकी ध्यान रखें। एक तो
0: हाँ
1: आप हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कूड़ी का खाद जो है डालने के लिए घर से गोबर लावें, एक
0: हाँ
1: जगह ढेर लगा लें, तो जहाँ गोबर का ढेर लगाया है होने से नहीं लेना।
0: हाँ
1: दूसरे जो पानी देने की नाली है उसके बराबर से नहीं लेना, यानी कि नमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे कोई पेड़ की छाया है तो वहाँ से नहीं लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: ऐसे देख कर भैया आपने मिट्टी जो है इकट्ठी
0: नमूने।
1: कर ली नमूने के लिए, फिर जो है एक छायादार जगह में आप पहुँच गए।
0: हाँ और भैया फिर उन्होंने आपस में मिला लिया मिट्टी को।
1: बिल्कुल, मिट्टी को अच्छी तरह से हाथ से मसल के मिला लो,
0: हाँ
1: और मिलाने के बाद भैया उसे आधी कर दो,
0: हाँ
1: आधी मिट्टी को फेंक दो, और अब आधी मिट्टी जो रही उसे फिर मल
0: फिर
1: लो,
0: मिला लो।
1: और फिर मिला लिया, फिर आधी कर ली, और फिर आधी कर ली, फिर मिला लिया। यो काम जब लो करना है जबकि आपकी मिट्टी जो है 1 किलो के करीब ना रह जाए।
0: हाँ
1: ये 1 किलो आधा किलो के करीब करी, और आपने जो कपड़े की थैली हमने पहली सिलवाई थी उसमें बंद करके सिल के, और आप जो है या तो
0: मिट्टी की
1: आप जाओ मिट्टी की जांच की जो प्रयोगशाला
0: प्रयोगशाला।
1: होती हैं।
0: हाँ
1: अब आप कह रहे होंगे जी कहाँ होगी हमने देखी ना, तो हर ब्लॉक में भैया ADO एग्रीकल्चर होते हैं,
0: हाँ
1: तो या तो उनसे संपर्क करो। हर जिले में भैया जिले कृषि अधिकारी और बहुत सारे कृषि के
0: विभाग
1: विभाग हैं, किसी से भी संपर्क कर लो, कोई वो बता देगा। और भाई जहाँ आप मिट्टी की प्रयोगशाला में नमूना देने जाओ उनका फ़ोन नंबर जरूर ले लो कि
0: बिल्कुल
1: जी आपको या इस जांच करने में तो दिक्कत होगी, हम तो सीधे फ़ोन कर लेंगे और
0: हाँ
1: आपसे संपर्क कर लेंगे। और
0: बिल्कुल
1: भैया तीसरे चौथे दिन उन्हें खड़काते रहो कि भैया हमारी मिट्टी की जांच का क्या होया,
0: हो गई या ना
1: क्योंकि
0: हुई।
1: हाँ पूरे जिले का दबाव रहता है तो थोड़ी देर तो लग जा है, फिर वो आपको बता देंगे साहब आपकी मिट्टी की जाँच हो गई, आप अपने सॉयल हेल्थ कार्ड ले जाओ और वहाँ से आप देख लें कि आपके खेत में जो है किस तरह के पोषक तत्व की कमी है या कौन सी चीज़ की अधिकता है, कौन सी कमी है, उसकी पूर्ति कर दो, काम हो गया।
0: बिल्कुल भैया, भैया हमारे किसान भाई अगर ऐसा इन बातों को अपनाएंगे तो जरूर लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: और भैया एक पत्र और ले लेते हैं जरा।
1: बिल्कुल
0: भैया, ये पत्र आया है ग्राम टिकोला कला, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। और भैया भेजने वाले हमारे किसान भाई हैं हमारे नियमित श्रोता रमेश चंद नामदेव, संजय कुमार नामदेव, राजन कुमार नामदेव, ज्योति नामदेव।
1: ठीक
0: भैया, ये भी हमारे आकाशवाणी परिवार को राम राम लिखते हैं और भैया इन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छी बात है
0: भैया। ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने गर्मियों में कुछ सब्जियां लगा रखी हैं तो उनकी देखभाल कैसे करें, क्योंकि गर्मियां बढ़ रही है तो उनका उत्पादन जो प्रभावित ना हो।
1: बिल्कुल, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। बात यह आ रही है कि आजकल की कौन कौन सी सब्जियां, पहले इस पर चर्चा कर लें। तो हमारे

0: भाइयों ने या तो भिंडी लगा रखी होगी,
1: हाँ
0: या भैया टिंडा लगा रखा होगा, लौकी लगा रखी होगी, करेला लगा रखा होगा, यानी कि तोरी
1: टमाटर।
0: लगा रखी होंगी, टमाटर लगा रखे होंगे, बेल वाली ज्यादा सब्जी रहती हैं। तो भैया बहुत जरूरी है, अगर आपने सब्जी का उत्पादन करा है तो इससे बढ़िया तो मैं किसान ही नहीं मानता
1: बिल्कुल
0: भाई। हम अगर अच्छा खाएंगे तो बढ़िया होंगे हम।
1: बिल्कुल
0: तो आजकल बस एक चीज का ध्यान रखना है भाई, एक तो सिंचाई ज्यादा
1: समय पर
0: जरूरत पड़ती
1: करनी
0: है।
1: है।
0: बिल्कुल, जितनी लंबी बेल होगी उतना ज्यादा पानी पियोगी, तो भैया समय समय पर पानी देना है। फिर वही बात आ गई कि पानी भर का नहीं छोड़ना, आपको जो थावला है उसे गिल्ला रखना, तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी की खास बात वही है कि वही गर्म हो जा, गर्म पानी नुकसान दे,
1: बिल्कुल
0: तो पानी ठंडा ही देना है। और दूसरे खास बात यह है कि आजकल क्या होता है, पुरवा हवा ज़्यादा चलती है,
1: हाँ
0: तो ऐसे में हानिकारक कीट और जो हमारे सब्जी हैं उस पर लगने वाले कीट बहुत होते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन से कीट लगते हैं। देखो मैं एक कड़वी बात कहा करूं कि हमारे किसान भाइयों को ये पता होगा कि फलाने मोहल्ले में किसकी शादी है, फलाने का बच्चा कौन सा हुआ, फलाने के बच्चे का क्या नाम है, दुनिया भर की बात तो याद है, हमारी फसल में कौन कौन से कीड़े लग रहे हैं इसका पता नहीं। तो ये भैया हमारी कमी, तो हमें जो हमारे मतलब की चीज़ है वो पता होना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया
0: तो अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो उसका जो है निदान आप कर देंगे, और उनका निदान भी हमें जैविक करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे। और भाई देखो अब समय जो है बात करने की ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है,
1: हाँ हाँ
0: तो हमारे किसान भाई और चिट्ठी लिखें उसके लिए पता बता दो।
1: भैया देखो हमारे किसान भाई चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 2467063 और भैया हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9457082888।
0: बिल्कुल, देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतने सारे फ़ोन नंबर बता दिए। आपको हम किसान भाइयों को बताते हैं कि चिट्ठी आप लिखें, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है चिट्ठी नहीं मिलती है, कई बार
1: हाँ
0: हमारे किसान भाई आलस कर जाते हैं। तो हम अपने किसान भाइयों को एक सलाह और देना चाह रहे हैं कि माह के पहले शुक्रवार को और माह के पाँचवें शुक्रवार को हमारे यहाँ से कार्यक्रम होता है हेलो किसान। तो डायरेक्ट आप फ़ोन करके हमसे जो है फ़ोन पर
1: सवाल
0: बात कर सकते हैं, अपनी जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। तो उसके लिए भैया आप फोन नंबर बता दो।
1: बिल्कुल भैया हमारा मोबाइल नंबर है 9457082888।
0: बिल्कुल, धीरे धीरे एक बार और बता दो, क्योंकि इतनी स्पीड से किसान भाई लिख नहीं पाते।
1: 9457082888
0: ठीक है, तो कुल मिला के ये फोन नंबर है, इस पर आप जो है फोन करके हमारी जो आपकी खेती किसानी की समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। भैया आपको कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके लिए भैया आप हमें तमाम चीज़ों के जरिए फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी भैया फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से, और फेसबुक पेज भी है हमारा आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से, उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भैया यूट्यूब पर भी हम हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से, उससे जुड़
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। और भैया चलते चलते अब मौसम की जानकारी दे दो।
1: बिल्कुल भैया देखो सारी चिट्ठी पढ़ ली, एक चिट्ठी रह जाती वरना। भैया ये चिट्ठी में प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ सर।
0: ठीक,
1: और भैया इस चिट्ठी के अनुसार प्रचंड गर्मी में सो भैया अभी राहत के आसार नहीं है और हीट वेव भैया अगले 5 दिन जारी रहने की संभावना।
0: हाँ
1: तो भैया खरीफ फसल जो जैसे गन्ना हा, चारा हा, सब्जी हा, भैया इनमें नियमित सिंचाई हमें करनी है। और भैया अपने जो पशु हैं पालतू पशु उन्हें भी छांव में रखना और पानी की उचित व्यवस्था उन्हें करनी है।
0: बिल्कुल। तो भैया देखिए ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेती के काम करें। और भाई देखो अब समय ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम,
1: और भैया अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति।
0: किसान भाइयों राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: किसान भाइयों ने सुना अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:45 हो रखे हैं। प्रस्तुत है कानूनी सलाह। कानूनी सलाह के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रखे हैं एडवोकेट समसपाल सिंह से एसके नौटियाल की बातचीत। भेंटवार्ता का विषय है भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम।
1: कानूनी सलाह। कानूनी सलाह। श्रोताओं को नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ एसके नौटियाल, प्रोग्राम कानूनी सलाह लेकर। इस प्रोग्राम में हर सप्ताह हम आपसे मुखातिब होते हैं, कानूनों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में एडवोकेट समसपाल सिंह। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: और आपसे हमारी बातचीत का विषय है भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम। सबसे पहला जो सवाल है वो एडवोकेट समसपाल जी आपसे ये है, क्योंकि एक आम आदमी होता है, आम नागरिक होता है, हर आदमी जो हमारे देश का नागरिक है, और कोई ना कोई काम किया जाता है और करवाया जाता है, सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं या इसके अलावा जितने भी काम होते हैं, वो सब हम एक दूसरे के काम आते हैं, काम किया जाता है, करवाया जाता है, और ये सब जो काम होते हैं उन कामों के लिए हमें जो सेवा हम प्रदान करते हैं उसके लिए हमें सरकारी रूप से वेतन भी मिलता है। तो इन संस्थाओं में जो काम करने वाले लोग हैं, यदि वो बिना कुछ लिए दिए काम करते हैं तो वो सेवा उनकी सरकारी सेवा मानी जाती है, और यदि सेवा के बदले वो किसी आम नागरिक से या किसी भी ऐसे मेंबर से जो उससे काम कराने आता है उसके बदले कुछ चाहते हैं पारितोषिक के रूप में या रिश्वत के रूप में, तो वो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। तो क्या है भ्रष्टाचार, विस्तृत रूप से हमारे श्रोताओं को जानकारी दें
2: जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जैसे जो लोग विधि के जानकार नहीं हैं, वो लोग सिर्फ ये मानते हैं कि रिश्वत, मात्र रिश्वत लेना ही अपराध है।
1: अच्छा,
2: कि बस साहब रिश्वत जो मांग रहा है वो अपराधी है। लेकिन जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या निषेध अधिनियम 1988 में बनाया गया, उसमें रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है।
1: अच्छा।
2: रिश्वत देना अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति से जो गवर्नमेंट उसे ऑथोराइज कर रही है तो उसका एक अपना बायलॉज होता है।
1: बिल्कुल।
2: अगर वो अपने बायलॉज से हट करके जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है।
1: अच्छा।
2: अगर मान लिया वो स्वयं किसी से पारितोषक मांगती है और जो लाइबिलिटीज उसके हैं, जो दायित्व उसके हैं, यदि वो उससे हटकर के कार्य करती है और किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
1: अच्छा।
2: ये माना जाता है कि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो है वो अपराध किया है। अगर प्रभावशाली कोई भी व्यक्ति उस पर दबाव बना करके उससे कोई गलत काम करवाता है तो, और उस दबाव में आकर के यदि वो व्यक्ति गलत काम करता है तो वो दोनों व्यक्ति, करने वाला भी और जिसने करवाया वो दोनों भी, अर्थात जिसने रिश्वत दिया और जिसने रिश्वत प्राप्त कर करके कोई गलत कार्य किया जो उसके बायलॉज में नहीं था, या आप इसे सरकारी कर्मचारी में ले लीजिएगा, कोई भी संस्था अगर हमारी गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार से हो या राज्य सरकार से, चाहे हम केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हो या हम राज्य सरकार के कर्मचारी,
1: बिल्कुल,
2: अगर हमारी डीलिंग पब्लिक डीलिंग है या ऑफिशियल डीलिंग है तो हमारे एक सटीक दायित्व होते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है। यदि हम उसे कार्य से हट करके कोई भी गलत कार्य करते हैं और उस कार्य को करने में हम रिश्वत लेते हैं, कोई अनुचित लाभ हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा भ्रष्टाचार में आएगा।
1: अच्छा, मान लीजिए कि जैसे कोई भी कृत्य यदि वो विधि के अनुसार नहीं है, यानी कि नियमों के अनुसार नहीं है, और यदि हम नियमों के अनुसार कोई कार्य नहीं करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको हम भ्रष्टाचार मान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे अपराध करते हैं जिसको हम भ्रष्टाचार के रूप में मानते भी हैं, करप्शन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, रिश्वत आम भाषा में कहा जाता है, जो लेने वाले और देने वाले दोनों अपराधी माने जाते हैं कानून के दायरे में, क्योंकि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है उसमें दोनों अपराधी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की श्रेणी में जो लोग आते हैं, 1988 में जैसे आपने कहा कि ये कानून बना, लागू हुआ, और लागू होने के बाद मैं जानना ये चाहूंगा कि वर्तमान समय में इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या संशोधन हुआ है?
2: इसमें ये 19 जुलाई 2018 को इसमें संशोधन हुआ। संशोधन में जो इसके सेक्शन थे 7, 8, 9 विशेषकर उन्हीं धाराओं में ज्यादातर संशोधन इसमें किया गया है। उसमें संशोधन ये है, जिस दिन से चार्जशीट फ्रेमिंग हो जाती है, कोर्ट में आ जाता है, तो उसे 2 वर्ष के अंतर जो है वो उस मुकदमे को, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है, जो ऑफेंस किया गया है, उसे 2 वर्ष के भीतर भीतर उसे डिस्पोज किया जाए, निर्णित किया जाए,
1: उसका निपटारा
2: किया। अगर विषम परिस्थितियों में नहीं होता है तो इसमें 4 साल से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए।
1: यानी कि समय सीमा बांध दी गई है।
2: अच्छा, जैसे सजा

0: आप हमारे फायदे के लिए कर दीजिए और उसके लिए मैं पैसा लेता हूं, तो मैं अपराधी हुआ। और यदि मुझ पर कोई किसी प्रकार से दबाव पर अतिरिक्त दबाव डाला जाता है या मुझे उस गलत कार्य के करने के लिए पैसा दिया जाता है और पैसे का लुभावन दिया जाता है, मुझे एक लालच दिया जाता है, रिश्वत यानी कि पैसा या अनुचित लाभ उसे पहुंचाने की जो बात करता है या उसे एक टेम्पटेटेड करता है, लालच देता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है।
1: अच्छा, बहुत से जो काम है या बहुत से जो लोग हैं, कुछ लोगों की एक टेंडेंसी होती है, एक उनकी आदत बन जाती है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, वो यानी कि प्रतीक्षा करना नहीं चाहता, वो वेट करना नहीं चाहता, वो इंतजार करना नहीं चाहता, वो तुरंत चाहता है कि मेरा काम, जैसे मैं किसी दफ्तर में गया या मेरा कोई काम है, मैं तुरंत दफ्तर में जाऊँ, 2 मिनट में मेरा काम हो जाए। जो प्रक्रिया है वो पूरी करने में समय लगता है, घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो ये चाहता है कि मेरा काम तुरंत हो जाए, वो इंतजार नहीं करना चाहता, तो वो खुद कोशिश करता है रिश्वत देने की और वो अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ लोगों की आदत होती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो काम को टालते जाते हैं और जो काम करवाने वाला व्यक्ति होता है उसको टरकाते जाते हैं, बोलते हैं 2 घंटे बाद आना, अगले दिन आना, 2-4 दिन बाद आना। इन तरह की जो आदतें लोगों में बन जाती हैं वो एक ऐसा रास्ता अपनाने का प्रयास करते हैं जिससे भ्रष्टाचार पनपता है।
0: बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये बहुत ही विडंबना है, इस तरह के कार्य किए जाते हैं, समय लोगों के पास नहीं है और थोड़ी जागरूकता की भी कमी है। अगर वो लोग जागरूक हो जाएं कि जिस कर्मचारी के पास या जिस अधिकारी के पास हमारा काम है वो उसकी ड्यूटी है, वो उसे करें,
1: बिल्कुल,
0: और हर कानून के अंदर एक निर्धारित किया गया समय निर्धारित किया गया। जैसे आपने बहुत छोटी सी बात बताई तो मैं बताता हूँ, जैसे आजकल जन सुनवाई केंद्र खुले हैं कि कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए गए तो वो जैसे किसी की रिपोर्ट लगनी है, मान लिया जन प्रमाण पत्र है तो सेक्रेटरी की लगनी है और जाति आय प्रमाण पत्र है तो लेखपाल की लगनी है, जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं, तो समय नहीं होता, जल्दी में चाहिए होता तो उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। अर्जेंसी है तो आप अर्जेंसी उसमें डालें, उसमें ऑप्शन आता है कि साहब आपको किस चीज के लिए आवश्यक है, उसका एक जैसे उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। मान लें आपको कहीं सर्विस में अपॉइंटमेंट में जाना है, आपकी सर्विस लगी है, आपको अपॉइंटमेंट मिलना है, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट उस समय दाखिल नहीं, तो आप इतना करें कि आप तुरंत जो रिकमेंड लेटर, जो डॉक्यूमेंट रिकमेंड लेटर आप किसी विभाग से आपको प्राप्त हुआ है तो तुरंत उसे अपलोड करें।
1: अच्छा,
0: तो उससे एक अर्जेंसी स्पष्ट होती है,
1: बिल्कुल,
0: कि भाई हमें ये अर्जेंसी है, हम इस कारण जो है हमें ये चाहिए और इसमें तुरंत रिपोर्ट लगे।
1: किसी युवा की या युवती की जैसे सरकारी जॉब लगती है, प्राइवेट जॉब लगती है, उसका वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, वहाँ भी लोग कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ पैसा ऐंठा जाए, पैसा लिया जाए, वो भी अपराध की श्रेणी,
0: वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हम लोग जागरूक ना होने के कारण हम लोग ये करते हैं कि हम किन कारणों से हमें जरूरत है, हम उस कारण का और उसका जो जो उल्लेख है उसका नहीं करते।
1: अच्छा, अब सवाल ये आम आदमी की तरफ से है कि इसका जो दायरा है, यानी कि भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम का जो दायरा है,
0: जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया ये पूरा भारतवर्ष के लिए, और इसका दायरा जो है, जो जुरिडिक्शन है जहां पर ये प्रभावी होता है, इसका जो विशेष कर है जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी आते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार, जो संस्थान जो रजिस्टर्ड होते हैं, बायलॉज भारतीय सरकार के, भारत सरकार के या राज्य सरकार के, उस बायलॉज के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व और बायलॉज या कानून के अकॉर्डिंग वो बंधा हुआ है, उसे कौन से कार्य करने, कौन से नहीं करने।
1: मेरा सवाल ये है कि हम, यानी कि जो हम नागरिक हैं, चाहे काम कराने वाला हो चाहे करने वाला हो, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं?
0: हमारी जिम्मेदारी है, देखिए, अगर हमें देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: और जागरूक होने के बाद हमें, देखिए, एक तरह से कहता है कि अगर हमें कोई भी कार्य कराना है तो फर्स्टली हमें ही साहसी होना पड़ेगा, हमें इस चीज के लिए साहस जुटाना पड़ेगा और हमें प्रत्येक जानकारी हमें हो, जागरूकता हमारे पास हो। इसीलिए जैसे आपका ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि विधि के संबंध में आप समय समय पर आम नागरिकों को, श्रोतागणों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो जागरूक होने के बाद वो ये जानेंगे कि हमारे राइट्स क्या हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके कर्तव्य क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ, उसे अपने कर्तव्य करने।
1: और अपराध की श्रेणी में जब कोई काम आता है फिर समस्या हमारे सामने यही आती है, आम आदमी के सामने यही समस्या आती है कि वो उसकी शिकायत कहाँ

0: करने जाए, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है और जानकारी का जो अभाव है वो उसको फिर इधर उधर भटकने के लिए मजबूर करता है, उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ इसकी शिकायत की जा सकती है?
1: ये विधि परिवर्तन निदेशालय होता है
0: जी,
1: और उसकी ब्रांचेज होती है, जैसे हमारे यहाँ नजदीक में अगर हम ले तो हमारे मंडल मुरादाबाद में भी।
0: अच्छा,
1: तो इस तरह से जैसे लखनऊ में है तो इस तरह से हम इनकी जो है शिकायतें कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे साइबर क्राइम के अलग अलग निदेशालय होते हैं, उनकी ब्रांचेज होती हैं, तो अगर वहां नहीं होता तो सिंपली हम एक एप्लीकेशन एसपी महोदय को भी अपने क्षेत्र में दे सकते हैं।
0: अच्छा,
1: जो पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं, तो उस माध्यम से भी आपकी शिकायतें पहुंच सकती हैं।
0: सबसे सामान्य चीज, क्योंकि आम नागरिक के लिए यह है, मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है या कोई शहर का कस्बे का व्यक्ति है, उसके साथ कहीं कोई वो किसी सरकारी विभाग में जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का काम और उसका नाता सरकारी विभागों से कभी ना कभी पड़ता रहता है।
1: जी जी।
0: उसके काम समय पर नहीं हो पाते हैं, दिक्कतें पैदा होती हैं, वो मजबूरन इधर उधर भटकता रहता है। तो जब उसके साथ में कुछ तरह की गतिविधि होती है, तो क्योंकि इतनी दूर, जैसे मान लीजिए मुरादाबाद हो या लखनऊ हो या फिर कहीं भी दूर व्यक्ति शिकायत करने नहीं जाता, तो उसके आसपास क्या सुविधा हो सकती है जहां वो आराम से अपनी शिकायत दर्ज करा सके?
1: बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस कर्मचारी ने भी किया है वो किसी के ना किसी का सबॉर्डिनेट होता है।
0: बिल्कुल।
1: और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे अधीनस्थ होते हैं हमारे जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीएम कहते हैं, या जिलाधिकारी। तहसील स्तर पर सब डिविजनल ऑफिसर, जिसे हम उप जिलाधिकारी भी कहते हैं, या एसडीएम भी कहते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम किसी भी इस तरह के कर्मचारी की जो है शिकायत एसडीएम साहब को या डीएम साहब को कर सकते हैं, आप मौखिक रूप से और लिखित रूप से।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि हमारे जो आसपास, यानी कि हमारा जो नजदीक सबसे क्षेत्र होता है, यानी कि आपके सबसे नजदीक एसडीएम, डीएम या फिर उसके बाद एसपी, ये आपके सबसे नजदीक होते हैं कार्यालय, इन पर आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। समसपाल जी, ये बताएं, क्योंकि जब अपराध हो जाता है और अपराध की श्रेणी में जब कोई काम होता है, अपराध होते रहते हैं, नियम अपना काम करता है, कानून अपना काम करता रहता है, और नागरिक होते हैं वो कभी जाने अनजाने कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, करते रहते हैं, लेकिन जब कोई कानून के दायरे में आता है, कोई बात जब शिकायत आती है, वो आगे पहुंचती है, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, क्या दंड का प्रावधान है?
1: इसमें कम से कम 3 वर्ष की सजा है।
0: अच्छा।
1: रिश्वत देने वाले को भी और रिश्वत लेने वाले को।
0: अच्छा।
1: और अगर वो सामने वाले व्यक्ति ने वो अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया है, रिसीव कर लिया है, और उसके अनुसार उसने कार्य को अंजाम दिया है, तो उस व्यक्ति को भी कम से कम 3 साल की सजा होगी, जो बढ़कर के 7 साल हो सकती है।
0: क्योंकि वकील साहब, इस प्रोग्राम में और इस जो कानून के दायरे में जो लोग आते हैं, जो काम हम लोग करते हैं, हम सब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। और क्योंकि जितने भी लोग हैं या जो सेवक हैं या कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, सबको काम करने के लिए सरकारी या प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो वेतन देती हैं। वो इसी बात के लिए वेतन दिया जाता है कि उनको वो काम करना होता है, अन्यथा प्रलोभन उनको आप ना दें, प्रस्ताव ना अपनी तरफ से ना रखें, वो प्रलोभन उनको विचलित करता है, अन्य लोगों को भी परेशान करने का प्रयास वो लोग फिर करते हैं, क्योंकि उनकी आदत बन जाती है। क्या मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को कि लोग बचकर रहें इस अपराध करने से?
1: एक तो अपने अंदर जागरूकता लाएं, जागरूकता ही बचाव है।
0: बिल्कुल।
1: और जागरूकता से अपने आप को बचाएं, किसी को किसी भी प्रकार का प्रलोभन ना दें और उनसे गलत काम कराने की अपेक्षा हम ना रखें।
0: आपने सही कहा, क्योंकि केवल रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, रिश्वत देना भी भ्रष्टाचार है, दोनों ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें अपना काम कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समसपाल जी, इस कार्यक्रम में आप आए। कानूनी सलाह, कानूनी सलाह।
2: कानूनी सलाह के अंतर्गत आज आपने एडवोकेट समसपाल सिंह से एसके नोटियाल की बातचीत सुनी। भेंटवार्ता का विषय था भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म रॉकी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज में।

श्रोताओं, छाया गीत आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का यह अगला गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास की युगल आवाज में। फिल्म का नाम है अभिमान, संगीत एस टी वर्मन का है और शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की। मनहर उदास और लता मंगेशकर के स्वर में जब आप ये गीत सुनते हैं तो यकीनन आपको लगेगा कि ये सदाबहार गीत बार बार हम सुनकर कुछ उस दुनिया में खो जाते हैं जो हमें अपनी सी लगती है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के संदेश गीत के साथ ही छाया गीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेव 314.47 मीटर पर। शाम के 7:15 हो रखे हैं। आइए अब हम आपको देते हैं आज प्रसारित होने वाले और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

इसी सभा में शाम 7:32 पर सालाना उर्स दरगाह आलिया ए नजफ हिंद जोगी रामपुरी भाग एक आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा अलीना अंजुम और साद अहमद का। शाम 7:42 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे नूरजहां बेगम और मुबारक बेगम की गाई नात। रात्रि 8:00 की संध्या कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर। और अपना पसंदीदा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद सुनना न भूलिएगा रात्रि 9:30 पर। रात के हम सफर फिल्मी गीतों का कंप्यूटर और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

और श्रोताओ, अब एक नजर डाल लेते हैं कल के कुछ कार्यक्रमों पे। कार्यक्रमों पर नजर डालते हुए हम देखते हैं कि प्रातः 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। प्रातः 9:50 पर बात आसपास की आप कार्यक्रम सुन सकेंगे और सुहाना सफर कार्यक्रम का समय रहेगा कल प्रातः 10:00। दिन में 1:15 पर बहनों के कार्यक्रम महिला जगत में लघु नाटिका हुनर आप सुन सकेंगे। आलेख बीना कोटनाला का है। प्रतिभागी कलाकार होंगे विवेक प्रताप सिंह, अक्षय त्यागी, सना परवीन, बीना कोटनाला। निर्देशक हैं अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे और रात्रि 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी का ये नचिपाबाद केंद्र है। रात्रि के 7:18 हो रखे हैं। अब हम प्रादेशिक समाचार अपने लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
5: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
3: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
6: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600 टू 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
7: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा, जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
3: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी

0: लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
1: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी तीन दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के चार दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले चार दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेव 314.47 मीटर अर्थात 956 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:31 और 42 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है सालाना उर्स दरगाह आलिया एंड रजफ हिंद जोगी रामपुरी का भाग एक। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है अलीना अंजुम और साद अहमद का।
4: नमस्कार श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं अलीना अंजुम आप सभी का आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज हमने नजफ़े इन दरगाह आलिया जोगीरामपुरी में होने वाले सालाना उर्स को कवर किया। कि चार रोज का प्रोग्राम होता है और आज पहला दिन था, तो चलिए जानते हैं कि उर्स क्या है और उसकी आज के दिन की क्या समीक्षा रही। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सहयोग और शिया कम्युनिटी के फंड द्वारा आयोजित दरगाह आलिया नजफ़े हिंद जोगीरामपुरी का चार दिवसीय उर्स केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाला एक भावनात्मक और रूहानी मिलन है। उर्स का मतलब मिलन होता है। वह दिन जब किसी बुजुर्ग दीन ने अपने जीवन को इंसानियत, मोहब्बत

दरगाह परिसर सुबह से ही जाहिरीन की आमद से गुलजार दिखाई दे रहा है। कई लोग चादर और फूल लेकर दरगाह की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं अकीदतमंद अपने परिवार के साथ दुआ में मशगूल दिखे। उसके पहले दिन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से लोग यहां पहुंचे। दरगाह परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से खास इसी दिन के

0: ये सजाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जाहिरीनों से और जानते हैं उनसे कि उनका अब तक का क्या अनुभव रहा।
1: तो नाज़रीन आगे चलते हुए अभी हमारे सामने हैं कुछ यंगस्टर्स जो भी इस जो कि इस जलसे में हिस्सा लेने आए हैं काफ़ी दूर से। तो चलिए जानते हैं उनसे उनका वर्जन और उनसे जानते हैं कि उनको आज कैसा लग रहा है। आदाब, आप अपना नाम बताइए।
2: जी सदा फातिमा मेरा नाम है, मैं लखनऊ से हूँ।
1: जी और आपका नाम?
3: मेरा नाम जमा फातिमा है, मैं भी लखनऊ से हूँ।
1: तो आप हमें बताइए आज जो ये सालाना उर्स होती है, मतलब सालाना जो जलसा है, इसमें आप पहली बार आ रहे हैं?
2: जी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं।
1: तो आज काफ़ी गर्मी भी है और बहुत यहाँ पर भीड़ भी है, तो आप ये बताइए कि ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
2: गर्मी है लेकिन इंतज़ाम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है और मतलब रोज़े भी मतलब ज़ियारत भी बहुत अच्छे से हो गई हमारी, खाने पीने का भी कुछ भी नहीं, मतलब अच्छे से सब कुछ है, मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह से। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम यहाँ पर, जब भी फर्स्ट टाइम आए लेकिन हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी
1: तो अभी तक आपने क्या क्या किया सुबह से? मतलब
3: हम लोग रोज़े पे ज़ियारत करने गए और हम लोग ने मातम मजलिस की थी और नज़र दिलवाई थी और बस यही।
2: हाँ, मातम मजलिस इबादत करी, नमाज पढ़ी, बाकी सब कुछ एक्सप्लोर करा, यहाँ की शॉप्स वगैरह, यहाँ पे मतलब तबरुक खरीदा हम लोगों ने, यही सब।
1: तो यहाँ के जो प्रशासन का इंतज़ाम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: प्रशासन का जो इंतज़ाम है वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब यहाँ पे से जो भी शॉप्स वगैरह और ज़्यारत से लेकर रहने वहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, सब कुछ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। हाँ जी।
0: दरगाह आलिया नसफ़े हिंद जोगी रामपुरी में रूहानियत, अकीदत और मोहब्बत का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से आने वाले जाहिरीन यहाँ सिर्फ दुआओं के लिए नहीं बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव और सुकून के लिए भी पहुँच रहे हैं जो इस उर्स की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। महफिलों का रंग अभी और गहराएगा, दुआओं की आवाज़ें अभी बुलंद और होंगी और अकीदतमंदों का यह कारवा अगले दिन भी इसी रूहानी एहसास के साथ आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन इस ख़ास कवरेज का सिलसिला कल फिर इसी दरगाह से जारी रहेगा।
4: और श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया।
0: तब तक के लिए मैं अलीना अंजुम आपसे विदा लेती हूँ, कर फिर मुलाकात होगी इसी समय अगले दिन की कवरेज के साथ। इसी के साथ सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
5: सालाना उर्स दरगाह आलिया इंडस हिंदी हिंद जोगी रामपुरी एपिसोड 1 आपने अभी सुना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग अलीना अंजुम और साद अहमद की थी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रखे हैं नूरजहां बेगम और मुबारक बेगम की गाई नात।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने नूरजहां बेगम और मुबारक बेगम के स्वर में कुछ नात सुने। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत संध्या में आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, ये शाम बहुत अच्छी हो जाती है जब हमारे प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लीजिए, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं। संगीत है राजेश रोशन का, शब्द रचना योगेश की और फिल्म का नाम है बातों बातों में। गायक स्वर है आशा भोसले, अमित कुमार और साथियों के। देखिएगा, अब हम और आप कुछ नहीं कहेंगे लेकिन बात आप तक हमारे दिल की पहुंच ही जाएगी इस गीत के माध्यम से।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम गीत संध्या में। और बिना देर के आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज में। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। शब्दों में पिरोया है संतोष आनंद ने और संगीत से सजाया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में आपने लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में ये गीत सुना। गीत संध्या कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत गीता दत्त के स्वर में। फिल्म का नाम है साहब बीबी और गुलाम। शब्द रचना है शकील बदायूनी की और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। मन में जब पिया से मिलन के आस हो और हम अपने मन की बात को उनको बताना चाहते हों और दिल में बस यही एहसास हो कि वही हमारे सब कुछ है, तो ये गीत बेहद प्यारा लगता है।

गीत संध्या कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इस समय संध्या के बज गए हैं 8:16 और 8 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है अनोखी रात। संगीत से सजाया है रोशन ने और गीत के शब्द लिखे हैं, मोतियों से पिरोया है शब्दों में इंदिवर ने। गायक स्वर है मुकेश का।

साथी, तो सच ही है, हम हर पल कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन काम करते समय हम अपने लक्ष्य का निर्धारण तो कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या क्या हो सकता है ये तो ईश्वर ही जानता है। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनते रहें आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत आपको, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की युगल आवाज़ में। फिल्म का नाम है धनवान, और ये गीत उन शब्दों को बयां कर सकता है जिनको हम बोलना नहीं चाहते, यानी संकेतों से कह देते हैं। हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में इतनी प्यारी शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की कि आप सुनेंगे और सच में इसको दिल से महसूस करेंगे।

और श्रोताओं लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म हीर राँझा से लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत मदन मोहन का है और गीतकार हैं कैफी आसमी।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की गाय फिल्म ही रांझा के इस गीत के साथ ही गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत हम आपको लेकर आ गए हैं उस दुनिया में जहां पर आप एक ही फिल्म से कुछ गीत सुनेंगे, और वो फिल्म आज है हमारी हंगामा। आज आप और हम मिलकर इस फिल्म के गीतों का आनंद लेंगे। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप? देखिए, हमें पता है कि आप अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। कुछ लोग भोजन पानी में लगे होंगे, तो कुछ अभी इबादत भी कर रहे होंगे, कुछ अपने काम की इबादत करते हैं, कुछ प्रभु की इबादत करते हैं, और कुछ हमारे साथ सब कामों के साथ साथ जुड़ते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म हंगामा का ये पहला प्यारा सा गीत बाबुल सुप्रियो के स्वर में।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हमने चुनी है फिल्म आपके लिए हंगामा, जिसके कुछ गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बीते दिनों की यादें अक्सर गुदगुदाती हैं। बीते दिनों की यादें अक्सर गुदगुदाती हैं, पुरानी धुनें जब भी गूंजे दिल को छू जाती हैं, है ना सच बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत शान और साधना सरगम की युगल आवाज़ में।

श्रोताओं, फिल्म हंगामा के गीत आप सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वक्त बदल जाता है मगर यादें कहाँ बदलती हैं। ये गाने कल भी बेहतरीन थे और आज भी महफिलों को सजाते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज़ में।

श्रोता, ये पुराने गीत सिर्फ गीत नहीं है बल्कि हमारी उन यादों के झरोके हैं जिनको हम देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। फिल्म हंगामा के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म हंगामा के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक

0: साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी

0: में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

0: अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आराई के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरिक वुस्ता यूरोप

0: प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज्म है कि वो न सिर्फ दरांदाजी को रोके बल्कि दरांदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलेदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि एक मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी, टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तहत NHAI के अहद की अक्कासी करता है जहाँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का ताउन करेंगे। क्वाड वजरा खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज़राए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदाम और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन, पायदारी और आलमी पेशरफ्त में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये नीट यूजी 2026 इम्तिहानात के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकरर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट यूजी 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे जिसे इस महीने के 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 GW रही जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत

0: के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तहीं पुरअज्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाद के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रिसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तिसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप? बढ़िया है ना। और आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आप हमारे साथ हैं और बिना देर के हम आपको इसमें शामिल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने जो श्रोता नए जुड़े हैं और नहीं जानते हैं कि कैसे हम तक पहुँचे, उनको हम अपना नंबर बताना चाहते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9457078288। और एक और अभी नंबर है हमारा 01341230105। तो आप इस पर हमें फ़ोन करें और हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही आपसे बात हुई और हमारे श्रोता जुड़ने लगे, हमें पता है क्योंकि आप बहुत पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को। हेलो नजीबाबाद।
1: जी हेलो नजीबाबाद, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ राकेश, और मैं कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अरे वाह, इस समय इतनी गर्मी है ना हमारे यहाँ कि शिमला से बात करते समय हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि लगता है कुछ ठंडक आप हमारे पास पहुँचाने वाले हैं। राकेश जी, आप कार्यक्रम में आ गए तो कुछ माहौल और खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी है। आपका तो मौसम हमेशा अच्छा ही रहता है ना?
1: जी जी

0: जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में 40-45 डिग्री तापमान होता, तो हमारे जब हमारे जीवन में गर्मी होती तो 25-30 तक जो है तापमान होता है गर्मी का, उससे आगे नहीं बढ़ता और जुलाई में फिर बरसात हो जाती है।
1: जी, उससे आगे नहीं बढ़ता तो आपको पता भी नहीं है कि इससे ज्यादा गर्मी क्या होती है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो पता है ना कि आज हेलो नजोबाद कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं,
0: जी,
1: तो आप बताइएगा आज कौन सी गीत की फरमाइश आपके मन में है और हमसे बताना चाहते हैं।
0: तो मैं गीत सुनना चाहता हूँ सुनामी मूवी का, बस एक तमन्ना है।
1: अच्छा बिल्कुल, ये तमन्ना आपके दिल में गाना सुनने की है क्या, कुछ अपने दोस्तों को मैसेज पहुंचाने की भी है?
0: तो गाना भी सुनना है और दोस्तों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जितने में हमारे दोस्त ये आकाशवाणी नगी बाबा सुन रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि गर्मी के मौसम में थोड़ा अपना जो है अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा हो सके तो कम समय में बाहर सफर करना चाहिए, और या छाता वगैरह ये सब चीज करना चाहिए लेना चाहिए, और पानी तो खैर पीना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे जो युवा जो पढ़ने वाले जो श्रोता है वो अपना ध्यान रखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अपने और देश का और समाज का नाम रोशन करे और नशे से बिल्कुल जो है दूर रहे।
1: वाह वाह वाह, आपने बहुत सारे संदेश दे दिए, बच्चों को भी दिए कि आपको नशे से भी दूर रहना है, माँ बाप का नाम भी रोशन करना है और पढ़ाई जरूर करनी है, क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं तभी हमारा विवेक जागृत होता है। तो आप हमारे कार्यक्रम में
0: जी,
1: जुड़े, हमें आपसे जुड़कर सच मानिएगा बहुत अच्छा लगा। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम सलामी आपने बताया है और गायक स्वर है कुमार सानू और अलका याग्निक के।
0: अलका याग्निक।
1: तो
0: जी,
1: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, आपने सुना ना ये प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और जो हमारे नए श्रोता जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आप भी हमारे साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है

0: 01-341-230-105 यानी 01-341-230-105। इसके अलावा आप हमारा एक और नंबर जानते हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है 9457078288, और इस नंबर पर आप बात कीजिएगा हमसे। और देखिए, बात करते करते एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो निची पापा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? कौन साहब बोल रहे हैं? थोड़ा सा तेज बोलिएगा।
1: बढ़िया दीदी, मैं कीर्ति सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप हमारे साथी, और हमें आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइएगा कि सबसे पहले आज हम मौसम के मिजाज जान रहे हैं कि वहाँ कैसे हालचाल है, गर्मी का क्या प्रकोप है?
1: गर्मी तो भीषण गर्मी पड़ रही है यूँ समझ लीजिए, और अभी तो नौतपा वहाँ की है, नौतपा लगेंगे तो और तेज पड़ेगी।
0: ऐसे में तो बहुत जरूरत है हमें अपना ध्यान रखने की, है ना?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी पिए, ठंडा पानी मटके का, और कहीं बाहर जाएं तो गमछा तौलिया बांध कर जाएं, और सुबह शाम में ही जाएं, दोपहरी में ना निकलें तो और अच्छा है।
0: हाँ, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी बुजुर्ग हमारे साथी हो, जब ज़रूरी है तभी बाहर निकलना, ये तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन अब आप ये भी बताइएगा कि जैसे आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, कैसा लगता है आपको?
1: कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और लगभग लगभग सभी केंद्र अपने 90 दशक जो 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं उनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यही कहना चाहूँगा मैं तो कि ये बस यूं ही चलता रहे ये सिलसिला, और हम नजीबाबाद को सुनते रहें।
0: शुक्रिया आपका, पूरे नजीबाबाद आकाशवाणी के परिवार की ओर से बहुत सुंदर आपने शुभकामनाएं हमें दी हैं, और अब जब आपने इतनी अच्छी बात कह ही दी है तो हमारा भी मन है कि हम आपसे पूछ ही ले कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: तेजाब मूवी से सुनवा दीजिएगा दीदी, कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना।
0: अच्छा, ये तेजाब का गीत आपको बहुत पसंद है, कोई खास कारण?
1: नहीं नहीं तो क्या दीदी, कभी कभी अच्छे लगते हैं गाने ये।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको
1: अनुराधा पोडवाल जी की आवाज है इसमें शायद।
0: हाँ हाँ, सही पहचाना, बिल्कुल आप बिल्कुल अपनी पसंद का पूरा ख्याल रखते हैं। अनुराधा पोडवाल, अमित कुमार और साथियों के स्वर में हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।
1: कुछ 2-3 मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल याद कीजिए, दोस्तों के बिना है क्या जिंदगी में।
1: जी जी
0: बताइए।
1: हमारी है गज राम बाबू शर्मा जी है, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और आप भी सुनेंगे दीदी, अविनाश तेली जी हैं
0: जी,
1: लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और जितने भी लाइव सुन रहे हैं उन सबके लिए जगह दीदी। और साथ चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि बात ही हीरा और बात ही मोती और बात ही लाखों की लाज हुआ करती है, और बात पर ही दुनिया टिकी है ए दोस्त, नजीबाबाद आकाशवाणी पर बात बड़ी मुश्किल से हुआ करती है।
0: शायरी बहुत अच्छी है, और आपने अपने मन की बात श्रोताओं की तरफ से कह ही दी है, और श्रोता की भी बात रहती है कि बात बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन अभी तो आपसे बात हो ही गई है, इसके लिए हम आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का फिल्म तेजाब का ये गीत। हमसे बात करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी दीदी, और आपसे आपके लिए हमारी दुआ है, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। राधे राधे
0: राधे राधे, राधे।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद, जिसमें हमारे अलग अलग जगह से हमारे श्रोताओं से बातचीत हो रही है। वो बातचीत ऐसी लग रही है कि जैसे हम उनसे मिल ही रहे हैं। देखिए अगले श्रोता हमारे साथ कौन है, ये भी हम जान लेते हैं। हेलो,
1: खुदा ही जानता होगा मेरी जिंदगी का मकसद। खुदा ही जानता होगा मेरी जिंदगी का मकसद, मुझे तो मेरा जीना फिजूल लगता है।
0: अरे ऐसी क्या बात हो गई।
1: मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा वक्कार फरीदी जी, आपके तो जितने पत्र हमारे यहाँ लगभग हर कार्यक्रमों में आते हैं, हम तो क्या हमारे श्रोता भी आपको जान ही चुके होंगे और आपकी आवाज को भी पहचानने लगे होंगे। कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत जी मैम, अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से होंगे और हमारा आकाशवाणी परिवार जो है, मेरा परिवार जिसे मैं अपना परिवार मानता हूँ, वहाँ भी सब लोग बहुत अच्छे से होंगे।
0: जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है। यहाँ सब स्वस्थ हैं और कार्यक्रमों में ऐसे व्यस्त हैं कि लगता है कि हर श्रोता के लिए कुछ और नया करने के लिए हम तैयार अपने मन को रखें। हमारे सारे जितने भी अधिकारीगण हैं उनको तो आप जानते ही हैं, कार्यक्रमों में नित नए बदलाव और कुछ और नया अब आपको शायद बहुत जल्द और देखने के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि हर दिन नया है।
1: और इस चीज के लिए मैं माननीय शोभी शर्मा जी और अंकित सैनी जी, जो लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रोग्राम को बनाने में, तैयार करने में, तो उनका मैं हृदय से मतलब आभार और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने जितनी हमें दिशा दी है हम उसके हिसाब से काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ नया हर दिन करने का उनका प्रयास रहे।

0: हाँ मैम बिल्कुल, 90 साल हुए हैं और दुआ यही रहेगी कि ये जो हमारा 90 साल जो है ना मैम, 100 साल का जश्न भी बहुत जल्द हम लोग मनाएं, और
1: जी
0: 100 साल का जश्न तो मैम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये भी हमारी इच्छा भी है, शुभकामनाएं भी हैं। अब
0: और
1: आप
0: आप लोगों का साथ और हमारा साथ यूं ही हमेशा बना रहेगा।
1: जी बिल्कुल, अब आप ये बताइए कि साथ साथ बात करते करते हमने कुछ समय निकाल चुके हैं, लेकिन अभी अब तक आपने अपनी पसंद का गीत नहीं बताया है कोई।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, फिल्म का नाम है इम्तिहान और ये आवाजें हैं कुमार सानू की, और मैम
1: हाँ
0: इसका गीत है, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़
1: वाह
0: जाऊंगा।
1: वाह वाह, गाना सुनने के साथ आपको गुनगुनाने का भी शौक है, आपने हमसे बात
0: जी
1: की
0: मैम,
1: इसके लिए
0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया मैम। मैं कुछ दोस्त थे बस, उनको झटपट से उनके नाम लेना चाहूंगा,
1: लीजिए आपका गीत हमने प्ले कर दिया है, जल्दी बताइए अपने दोस्तों को।
0: नदीम बाकी, रऊफ अहमद, निजामुद्दीन आसिफ चौधरी, राशिद अंसारी, मुकेश कश्यप, मोहम्मद फरमान, दिव्यांशु यादव, मांगेलाल चंदेल, मकसूद हुसैन और महबूब दुकानदार और
1: ठीक
0: विष्णु
1: है,
0: अग्रवाल।
1: बहुत बढ़िया, आपके बहुत सारे साथियों के साथ बाकी श्रोता भी सुन रहे हैं और हम भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आपकी
0: ओके
1: पसंद
0: मैम,
1: का।
0: थैंक
1: बात करने के लिए
0: यू मैम, थैंक
1: शुक्रिया।
0: यू मैम।

0: देखिए, हर श्रोता हमारे पास अपनी एक छाप छोड़कर तो जाता ही है. जिस तरह से प्यार में लोग एक दूसरे पर छाप छोड़ते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता हमसे जब जुड़ते हैं और अपनी बातें, अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हेलो नजीबाबाद, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सखी निधि भारद्वाज. और देखते हैं हमारे अगले साथी हमसे कौन जुड़े हैं. हेलो,
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? देखिए बहन जी वर्ड में इतना अपनापन होता है तो हमें लगा कि हम भी आपको आपको यकीन करना होगा कि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पूछ रहे हैं कैसे हैं आप.
1: जी, बस बस बहन जी, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ
0: जी,
1: कि हमारी बहन जी निधि भरद्वाज जी से बहुत दिनों बाद आज बात हो रही है
0: जी,
1: और अच्छा लग रहा है. और मैं ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ मैं.
0: अरे भाई बागीलाल चंदेल जी, बुरा मत मानिएगा, ऐसा लगता है कि आपसे हमारी अक्सर बातें होती रहती हैं क्या हेलो नजीबाबाद प्रोग्राम में? अभी पीछे भी हुई थी क्या किसी कार्यक्रम में?
1: हाँ बहन जी, पीछे हुई थी, लेकिन वो मांगीलाल ढाकर था जिला गुना से ही, और मैं चंदेल हूँ.
0: अच्छा, तो आपकी दोस्ती है बस उनसे. एक बार आप, एक बार आप.
1: एक और क्या, और क्या.
0: कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम
1: बहन जी? बहुत बढ़िया कार्यक्रम लगते हैं, और मैं आकाशवाणी नजीबाबाद का बहुत पुराना लिसनर हूँ. कम से कम 25-30 साल से आकाशवाणी नजीबाबाद को सुनता आ रहा हूँ. उस टाइम कल अपना पंकज जी थे, पंकज जी, जी, जी थी, और विनय ध्यानी थे, प्रेम कुमार सदानाल जी थे, और बहुत सभी अनाउंसर पुराने थे, जब से मैं सुनता आ रहा हूँ.
0: जी जी बिल्कुल, हमने भी आपका नाम तब से ही सुना है जब से हम भी आकाशवाणी से जुड़े 2002 से. तो लगभग जितना साथ आपका हुआ है इतना साथ हमारा भी हो गया है. और आपने हमारे जितने भी अनाउंसर्स की बात की है भाई, उनका तो कोई सानी ही नहीं है. जैसे कल्पना पंकज मैडम है, विनय ध्यानी सर हैं, प्रेम कुमार सदाना जी हैं, वो तो एक वृक्ष हैं, हम तो उनकी छाया में बस छोटे मोटे से पौधे कह सकते हैं.
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है.
0: अच्छा ये बताइए मांगेलाल जी, वैसे तो शाम हो गई, रात हो गई, ठंडा मौसम हो रहा होगा क्या वहां पर? गर्मी,
1: अब
0: गर्मी कैसी
1: अब है? अब तो ठंडी गर्मी से राहत है, क्योंकि मौसम ठंडा है, रात का समय है, और दिन में तो बहन जी ऐसी गर्मी पड़ रही है हमारे मध्य प्रदेश में. और मध्य प्रदेश क्या कहूँ मैं, पूरे समूचे भारत में गर्मी है इस समय.
0: बिल्कुल, ऐसा मन करता है कि हर तरफ हरियाली होनी चाहिए.
1: हरियाली होना चाहिए,
0: इसके लिए हमें तो पौधे लगाना होगा भाई, वही तो पेड़ बनेगा
1: जी.
0: तो कुछ संदेश देना चाहते हैं आप हमारे साथियों को?
1: हाँ बहन जी, मेरा यही संदेश है कि वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, उनसे पर्यावरण बढ़िया रहता है, और बारिश भी ज्यादा होती है. और बिल्कुल गर्मी के मौसम में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में बिल्कुल कहीं ना जाए, दोपहर में बिल्कुल 10-11 बजे के बाद कहीं ना जाए, और
0: बच्चे
1: 4-5 बजे जाए, और बार बार पानी पीते रहें, और जेब में अपनी में एक प्याज रखें, उससे मगर लू से बचाव होता है.
0: अच्छा एक चीज, हाँ आपने सही बताया कि लू से बचने के लिए, अब बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं पहाड़ों की ओर, वहां भी जाम लग जाता है, तो उनके लिए क्या संदेश है?
1: बस उनके लिए यही संदेश है कि वो कहीं नहीं जाए.
0: हाँ.
1: और बार बार पानी पीते रहे और फल फ्रूट
0: घर में बैठ
1: के
0: छुट्टियां बिताए.
1: जी जी, बस अपने अपने घर में ही छुट्टियां बैठ के बिताते रहे हैं.
0: चलिए, और हमारे
1: बच्चा
0: साथ
1: बच्ची
0: आकाशवाणी के साथ समय बिताए, आकाशवाणी नजीबाबाद है तो फिर कहीं क्यों ही जाना है ना. अच्छा ये बताइएगा कि मांगीलाल जी, आप गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी फिल्म का नाम तो रहेगा गंगा यमुना सरस्वती.
0: अच्छा,
1: और इसमें साधना सरगम जी की आवाज में कुछ एक गाना याद आ रहा है मुझे, चूड़िया खनकी खनकाने वाले

0: आ जाए।
1: वाह वाह वाह, बिल्कुल सही साधना सरगम तो आपने सही पहचाना है, और गंगा जमुना सरस्वती है वो यमुना की जगह, लेकिन आपकी बात हम तक पहुंच गई और हमें भी ऐसा लगता है कि चलिए चूड़ियां खनकाते हुए आपको ये प्यारा सा गीत सुनवा ही देते हैं, और आप हमसे जुड़े, आपके पूरे परिवार के सदस्यों को जुड़ने के लिए भी शुभकामनाएं, धन्यवाद।
0: बहन जी, मैं कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
1: बिल्कुल कीजिए, अभी हमने पहले ही कहा था मित्रों बिना क्या है भाई, मित्र होंगे तो तभी तो कार्यक्रम है।
0: मित्र है जो सब सब कुछ ऐसा ही है, नरेश प्रजापति।
1: अच्छा, आपने इतनी बार मित्र बोल ही दिया है तो हम अपने श्रोताओं को बता दें रात के हम सफर कार्यक्रम इसके बाद है, आप तैयार रखिएगा, मित्रों पर ही हमारा कार्यक्रम है, अपने विचार भी तो मित्रों के नाम बोलिए आप, फिर हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।
0: जी, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, और मकसूद हुसैन भाई साहब हैं बीबीपुर जिला मुरादाबाद से, दक्कार फरीदी जी हैं, और विष्णु अग्रवाल जी हैं, जयपाल यादव जी हैं, सुरेश कुमार सैनी जी हैं, मिंटू लाल तिवारी जी हैं, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: और बहन जी एक हमारी एक नजीबाबाद सब्जी मंडी नजीबाबाद से विष्णु अग्रवाल जी और हमारी भाभी जी रानी अग्रवाल।
1: वाह भाई वाह, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर नजीबाबाद, आपने सारे श्रोताओं को जोड़ दिया, और आपकी भाभी जी के साथ लीजिए, सुनेगा आप ये प्यारा सा अपनी पसंद का गीत, फिल्म का नाम गंगा जमुना सरस्वती। कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी, आपको भी धन्यवाद।

0: बिल्कुल, जहाँ चूड़ियाँ खनकती हैं, खनकाने वाले भले पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर जो आनंद होगा वो तो सब वहीं के लोग देखते हैं, लेकिन जब आकाशवाणी नजीबाबाद में श्रोता जुड़ते हैं तो दूर दूर तक सुनते हैं। और देखिए, दूर दूर तक हमारा ये फोन की घंटी पहुंच रही है, आ रही है हमारे पास। देखते हैं कौन है हमारे अगले साथी। हेलो
1: राधे राधे।
0: राधे, राधे कितनी प्यारी सी आवाज है, कौन बोल रहा है?
1: मैं परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरसी जिला भोपाल से।
0: बरसी जिला भोपाल से परिधि राजपूत। परिधि,
1: हाँ
0: आवाज
1: मैम,
0: से तो आप बहुत छोटी उम्र के लग रहे हैं, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 7th क्लास में हूँ।
0: अच्छा, 7th क्लास में
1: हाँ
0: है, तो आपको रेडियो सुनने का शौक है?
1: मैम, मुझे बहुत शौक है और मैं सुनती भी हूँ मेरे पापा जी के साथ।
0: पापा जी भी सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को? अरे
1: हाँ मैम बिल्कुल सुनते हैं।
0: वाह, तो रेडियो को सुनते समय आप पढ़ाई कर लेती हैं? हमारा तो एक कार्यक्रम भी ऐसे ही चल रहा है, रिश्ता ये खास है, जो शाम को हम 5 बजे लेकर आ रहे हैं रोज। उसमें हम ऐसे ही श्रोताओं से बात करते हैं जो अपने कामों के साथ हमारे रेडियो को सुनते चले आ रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: मैम, मैं कुछ काम भी करती रहती हूँ और आपका ये सॉन्ग सुनती रहती हूँ।
0: तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती परिधि को?
1: नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छे से कर लेती हूँ मैं पढ़ाई।
0: बस आपकी आवाज़ से ही मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप बहुत प्यारी सी बच्ची हैं और सिंसेयर भी हैं। और बताइए परिधि, आप क्या सुनना चाहती हैं आज?
1: मैम मैं भगवान का भजन सुनना चाहती हूँ, केदारनाथ है जो कि भगवान शिव के माथे पे गंगा माने।
0: अच्छा, आपको गंगा जी से रिलेटेड सॉन्ग सुनना है, लेकिन
1: हाँ
0: शंकर
1: मैम,
0: जी की भी पूजा करती हैं, यानी कि आप नमो नमो और शंकरा सुनना चाहती हैं अमित त्रिवेदी
1: हाँ
0: की आवाज
1: मैम,
0: में, है?
1: नमो नमः शंकर शंकर सॉन्ग भजन सुनना चाहती हूँ। और मैम अभी हम अयोध्या, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ घूम के भी आए हैं।
0: अच्छा, तो आपका
1: हाँ
0: जो
1: मैम,
0: है ईश्वर भक्ति की तरफ भी बहुत रुझान है।
1: हाँ मैम,
0: ठीक है, तो रेडियो के प्रोग्राम्स आप वंदना भी हमारा सुन सकते हैं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम है, और इस तरह से गीत सब तरह का सुनिएगा, क्योंकि छोटी उम्र है, कभी चंचल आप अच्छी लगेंगी, कभी अध्यात्म से जुड़ती भी, कभी बहुत
1: हाँ मैम। और
0: आप जिम्मेदारी को निभाती भी। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: मैम मेरा सपना भी था अयोध्या जाने का, और मैं इतनी जल्दी घूम आई इतनी सी उम्र में, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वहां जाने।
0: जी बिल्कुल, जो जिसको आराध्य जिसके भी होते हैं, जिसकी भी आराधना किसी भी धर्म का व्यक्ति करता है और उसको वो दर्शन पा ले या उसकी इच्छा पूरी हो जाए, तो निश्चित रूप से उसे बहुत आनंद आता है।
1: हाँ
0: परिधि,
1: मैम,
0: आप कुछ और कहना चाहती हैं, किसी का नाम लेना चाहती
1: मैं
0: हैं?
1: मेरे मम्मी पापा का नाम लेना चाहूंगी, केसरी
0: बिल्कुल,
1: सिंह
0: मम्मी
1: राजपूत
0: कहाँ है
1: और
0: आपकी?
1: श्री। मम्मी घर पे हैं मैम, और हम बस ये भगवान का एक चौतरा है उस पे ही बैठे थे बस।
0: फोन मिल गया। ठीक है ठीक
1: हाँ
0: है,
1: मैम,
0: मम्मी
1: केसरी
0: पापा का नाम फिर से लीजिए, हम सुन नहीं पा रहे अभी।
1: सिंह राजपूत और श्रीमती रचना राजपूत।
0: ठीक है, तो आप अपने मम्मी पापा के साथ सुनिएगा ये प्यारा सा आपकी पसंद का गीत
1: और मैम
0: केदारनाथ।
1: मेरी दीदी का नाम है राशि राजपूत, और मेरे भाइयों का नाम है उदयवान सिंह राजपूत, छोटे भाई का।
0: अरे वाह, सभी परिवारजनों के साथ आप सुनिए ये गीत। हमसे
1: हाँ
0: बात
1: मैम
0: करने
1: मैम
0: के लिए परिधि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैम ओके, राधे राधे मैम।
0: राधे राधे।

0: हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं हमारे फ़ोन नंबर पर। और जो नए श्रोता जुड़े हैं उनके लिए हम बता देते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 9457078288। इसके अलावा आप हमारा दूसरा फ़ोन नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, वो नोट कीजिएगा 01341230105। तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिएगा, और देखिए जैसे ही हम कहते हैं हमारे कोई ना कोई साथी हमसे ज़रूर जुड़ जाते हैं। देखते हैं आप कौन हैं। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो नमस्कार
0: नमस्कार जी, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ। अविनाश तली नॉर्थ ईस्ट
0: अविनाश तली त्रिपुरा से बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत दूर से आज हमारे साथी हमसे जुड़े हैं, लगता है कि रास्ते में कहीं कोई बैरियर नहीं है।
1: जी ये तो देखिए कमाल है, न्यूज ऑन एआईआर एप के माध्यम से जब हम सुनते हैं तो देश के किसी भी कोने में कहीं भी साफ सुथरी आवाज में कार्यक्रम सुनते हैं, और हमें जुड़ने का मौका भी मिलता है, और फोन के माध्यम से हम देखिए आकाशवाणी नजीबाबाद भी पहुंच चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब तो फोन में हमारे पास न्यूज ऑन एआईआर होना चाहिए और हम उसको फोन को साथ साथ लेते हुए सब जगह से बात कर पा रहे हैं। अविनाश जी आप कार्यक्रम में हमसे जुड़े हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी आज मुझे सुना दीजिएगा, ये तो सच्चे के भगवान है जो गीत है वो हम साथ साथ मूवी से है, और खास करके देखिए इस गीत में इसलिए सुनना चाहता हूँ, देखिए लोग आजकल मंदिर में या फिर मतलब कि कहीं भी दर्शनीय स्थान घूमने के लिए जाते हैं तो जो वो सोचते हैं कि मंदिर में हम अगर भगवान को दर्शन करें तो वो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन अपने घर पे जो माँ बाप होते हैं वही असली भगवान होते हैं, तो कम से कम अपने माँ बाप को सेवा करने चाहिए, क्योंकि देखिए पहला भगवान तो वही है हम सब के लिए, क्योंकि उन्होंने देखिए छोटे पर से हम सभी की जिस प्रकार से उंगलियां पकड़ करके हम सब उनकी और बड़े हुए हैं, और आजकल के बच्चे देखिए माँ बाप की बिल्कुल ही मतलब कि बहुत लोग ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आज वो कर रहे हैं हो सकता है कल उनके बच्चे उनके साथ करें, तो इन सब चीजें हम सभी को जागरूक होना चाहिए।
0: बहुत सुंदर संदेश आपने दिया कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, और आपने कहा भी कि हम उनके साए में पले हैं बड़े हुए हैं उंगली पकड़ कर चढ़े हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहती हूँ, सभी श्रोता हमारे से सहमत होंगे, माँ बाप हमें दुनिया में लेकर आए हैं, इसलिए वही हमारे सर्वप्रथम पूज्य ईश्वर हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं, है ना, हम सबके जन्मदाता हैं वो, और चाहे हम किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम इधर उधर जाते हैं इबादत करें मंदिर में जाएं या घंटों पूजा आराधना करते रहें, वो सब व्यर्थ हो जाएगी अगर हमारे घर में हम अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर सकते, आनंद नहीं दे सकते हैं। तो शायद आपने बहुत सही कहा कि यही गीत आप इसलिए सुनना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और अब हम आपको ये गीत सुनवाएंगे।
1: जी तो आज मैं इसमें और दो बात जोड़ना चाहता हूँ, आज देखिए हमारे समाज संस्कारक राजा राम मोहन राय का भी आज जन्मदिन है, तो उनको उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो खास करके नारी शक्तियों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के वो जागरूक किया था हम सब के लिए, और इसीलिए मैं उनके जन्मदिन के लिए बहुत ही उनको मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और देखिए आजकल के लोग क्या है कि मतलब कहीं भी निकलते हैं तो बस अपने वो वाहन लेके निकल जाते हैं, क्योंकि दो पहिए वाहन हो या फिर चार पहिए, ये छोटी छोटी मतलब कि कम दूरी अगर तय करना हो तो हम पैदल भी चल सकते हैं, इससे हम सब के लिए फिटनेस में भी बहुत काम आते हैं, और हम सबकी एक व्यायाम के रूप में योग के रूप में वो काम आते हैं, और या फिर साइकिल के उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे ईंधन भी बचता है आजकल देखिए, और हम सभी को इस और पानी का भी नल अगर खुला हो तो उसको भी बंद करना चाहिए, और गर्मी में जैसे आजकल बहुत गर्मी हो रहा है तो इसका प्रभाव भी हम सबके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के ऊपर बहुत ही छेड़छाड़ कर चुके हैं, और अभी से अगर नहीं सुधरे तो आने वाला जो तो हमारे जो हम सबके जो आगामी प्रजन्म है उनके लिए बहुत ही
0: दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, आपकी बातों में काफी सकारात्मक विचार शामिल है। बहुत सारी चीजों पर आपने चर्चा कर ली, राजा राम मोहन राय जी के जन्मदिन की बधाई भी दे दी, सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। इसके अलावा आपने आज की समस्या को भी बता दिया कि दोपहिया वाहन या अपने फोर व्हीलर का प्रयोग तभी करें जब बहुत दूर जाना हो, और पानी के संरक्षण की बात आपने कह दी, हरियाली की बात आपने कह दी। आप क्या काम करते हैं?
1: जी मेरा जोड़ने का ही काम है, मतलब कि वेल्डिंग का काम है, क्योंकि
0: अच्छा बातों से आप बिल्कुल शिक्षक लग रहे थे। बट भाई देखिए, आप अपने श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहते हैं कि हम जहाँ भी काम में है वहाँ 100% देना है, और शिक्षा और सामाजिक सरोकार हमें जरूर रखना है, समाज के प्रति आदर भाव हमें जरूर रखना है। तो

0: हमारे कार्यक्रम से जुड़े, और अब ये कार्यक्रम का अंतिम गीत होने वाला है। हमारे बहुत सारे साथी जो लाइन में हैं अब वो रह गए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अब आपसे फिर मुलाकात होगी। और अविनाश जी, आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत, और कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ ही हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज को अनुमति दीजिएगा। बस हम अब आपसे यही कहना चाहते हैं कि यादों की पोटली में भरकर हम ये हसीन पल ले जाएंगे। आज की इस महफिल को हम सदा दिल में बसाएंगे। इन पंक्तियों के साथ अपनी सखी निधि भारद्वाज को दीजिएगा अनुमति। श्रोताओं, नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित सजीव फोन इन साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम रात के हम सफर में आज आपकी हम सफर बनने के लिए पहुंच चुकी है आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप। इस समय रात के 10:30 हो रहे हैं, तो लगभग अपने कार्यक्रमों से और कामों से तो आपको फुर्सत हो ही गई होगी। अब जरा रेडियो सेट के पास आ जाइएगा और हमारे हमसफर बने रहिएगा 11 बजे तक, क्योंकि आज हम आपके बिना तो ये कार्यक्रम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि विषय ही हमारा ऐसा है और वो विषय है जीवन का धन हमारे परम मित्र, है ना। अच्छी बात है ना। देखिए, सोना चांदी हीरे मोती जमीन बहुत सारे धन लोगों के पास होते हैं, लेकिन अगर उस धन के साथ हमारे अपने मित्र ना हो तो भाई किस काम की वो। सही, आपको भी मुस्कुराना आ तो रहा होगा, लेकिन अभी आप अपनी हंसी को दबा कर बैठे हैं, क्योंकि हमने अभी आपको ये भी नहीं बताया ना कि आप हमसे जुड़कर अपने विचार कहाँ भेजेंगे। देखिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने मित्र से संबंधित आपकी कोई याद, आपकी दोस्ती की कोई मिसाल, या आपके ऐसे दोस्त जिनको बहुत दिनों से अभी तक आप नहीं मिलने हैं लेकिन मिलना चाहते हैं, तो संदेश भेज दीजिए 9457078288 पर। फिर देखिएगा, अगर आपके साथी यानी कि आपके जीवन के धन मित्र न मिले होंगे अभी तक, तो मिल जाएंगे ना आकाशवाणी नजीबाबाद के इस कार्यक्रम से जुड़कर। जब तक आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपके दोस्तों को कहते हैं भाई जुड़ जाइएगा आकाशवाणी के केंद्र से, क्योंकि आपके परम मित्र आपके धन आपको याद कर रहे हैं। और जब तक आपके मैसेजेस आते हैं, ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए प्ले करते हैं।

सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म में अरिजीत सिंह का ये गीत जैसे ही हमारे श्रोताओं ने सुना तो भाई उनके तो देखिए विचार ऐसे ऐसे दोस्तों के हमारे पास पहुंच गए हैं जिनको शेयर करना बिल्कुल बनता ही है। ये हमारे पास भेज रहे हैं अपना मैसेज केसरी सिंह राजपूत, परिधि राजपूत, बैरसिया भोपाल मध्य प्रदेश से, और लिखा है इन्होंने बहुत ही सुंदर विचार कि हमारे जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मित्र ही वह अनमोल धन है जो हमारे सुख दुख के साथी बनते हैं और हमारे विचारों में हमारा साथ देते हैं, हमारे दुख में हमारा हार्ट बताते हैं और सुख में हमारे साथ खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, सही बात आपने कही है। मित्रों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात आपने कह दी है ना, जिससे दोस्ती पक्की होती है। भाई दोस्तों के बीच में झूठ का क्या ही मतलब है। बिल्कुल सही बात कही है हमारे भोपाल के साथियों ने, और दोस्ती है तभी तो हमने इसका नाम रखा है ना, अनमोल धन, जीवन का धन हमारे मित्रगण है की बात। बिल्कुल सही, आप अपने बड़ों से पूछिएगा वो भी यही कहेंगे, जब उनके दोस्तों की बात आती है तो कितना मुस्कुराकर बताते हैं अरे बचपन में हम तो ऐसे करते थे। पुराने लोगों के तो और भी मजे थे, कभी पेड़ों पर चढ़कर फल खा लेते थे, कभी नदियों में जाकर नहा लेते थे, कभी स्कूल में जाकर अगर देर हो गई तो गुरुजी की डंडी भी खा लेते थे, भाई नाराज नहीं होते थे। अब थोड़ा समय बदल गया है, हमारे बच्चे कभी कभी नाजुक ज़्यादा होते हैं तो भाई धूप में नहीं जाते हैं, पेड़ भी इतने नहीं हैं कि हम डालियों पर पेड़ों पर बैठ के ही फल को खाएं, लेकिन ये तो हम कर ही सकते हैं जो परिधि राजपूत और साथियों ने कहा, सुख दुख में साथ तो निभाना ही है दोस्तों का, झूठ भी नहीं बोलना है। एक और हम गीत आपके लिए सुनवाएंगे, लेकिन इसे बीच हमारे और भी साथियों ने हमसे कुछ विचार साझा किए हैं और ये है हमारे साथी रात के हम सफर में अंबे विहार बिजनौर से दिनेश शर्मा, लता शर्मा, कंचन, कल्पना, अबीर, राशि, अनय और छोटू ये लिखते हैं कि आकाशवाणी और हमारे मित्रता को समर्पित है ये कुछ लाइन, और कहना चाहते हैं कि निधि जी आपके साथ बने हुए हैं 5 बजे से, आपकी स्मिता फर्जी की और रेणु जी की बातें हम सुनते हैं, अच्छी लगती हैं और दोस्ती की बात हम आपसे सुनना चाहते हैं वो बताइएगा ज़रूर आप। हम आभारी हैं कि आप हमें हमारे आकाशवाणी केंद्र को और हमें पसंद करते हैं, चाहे उसमें रेणु दीदी हैं और बहुत सारे अनाउंसर्स हैं। तो दोस्ती की कीमत शब्दों में कहाँ, सही बात है, दोस्ती की कीमत शब्दों में कहाँ उतरती है, ये तो वह दौलत है जो मुश्किल में निखरती है। वाह वाह वाह, जो बिना कहे हल समझ जाए, असली दोस्ती तो वही है, वहीं से शुरू होती है। ना साथ हर दिन का होना ज़रूरी है, ना साथ हर दिन का होना ज़रूरी है, ना हर बात पर मिलना ज़रूरी है। वाह, रिश्ता बस इतना सच्चा हो कि मुश्किल में दोस्त का होना बस जिंदगी के लिए यही जरूरी है। बहुत सुंदर बात, ऐसा लग रहा है कि मैं भी दौड़ के अपनी सहेलियों के पास जाकर कहूँ कि सच में मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़ते ही आप सबको याद कर रही हूँ। तो श्रोताओं जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, अपने दोस्तों के बारे में अपने मन की बातों को लिखिएगा और एक और साथी के विचार हम लेंगे, क्योंकि हम रात के हम सफर में गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन गीत तो आप सुनते ही रहते हैं, जरा हमें आपके मन की बातें पता चल जाएं कैसे आपके दोस्त हैं। और ये देखिएगा आपने तो अभी भी, देखो हमारे कुछ साथियों ने तो अभी भी फरमाइश भेज दी है, भाई फरमाइश नहीं अपने विचार भेजो जरा दोस्तों के बारे में। आप हमारे साथ गांव जाखोज राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक और पूजा खट्टक जी जुड़े हैं और लिखते हैं कि हर पल खुशियों से भरा हो जी, बस हमने ये लाइन आपके दोस्तों को समर्पित कर दी क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी जहाँ भी हमारे दोस्त हमें मिले वो उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान हो, बचपन जैसी मासूमियत हो और उनका जीवन दुख से दूर हो, और तभी तो हम खुशी खुशी से कह सकते हैं उनसे फिल्म शोले के इस गीत की तरह जिसे किशोर कुमार और मन्ना डे ने गाया है कि ये दोस्ती तो अब हम नहीं छोड़ेंगे।

रात के हम सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। और आज इस रात के हम सफर कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी सखी निधि भारद्वाज। और बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि कभी किसी से दोस्ती मत तोड़िएगा, आप उसके साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि अच्छा दोस्त कैसा होता है, परेशानी में सही रास्ता दिखाता है और गलत रास्ते पे जाने वालों को खींच कर वापस लाता है, भाई ये नहीं हो सकता। और देखिए कार्यक्रम रात के हम सफर में हमारे बहुत सारे साथी अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं, उनमें आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और परांजल राय। लिखते हैं आदरणीय दीदी को नमस्कार। नमस्कार जी, दोस्ती बहुत बेमिसाल होती है, दोस्ती एक अटूट रिश्ता है, दोस्ती में रिश्ता निभाना चाहिए, लेकिन बहुत कम ही लोग रिश्ता निभा पाते हैं। हाँ, यही बात तो हम आपसे कह रहे थे कि दोस्ती में रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो अटूट हो। कब लोग रिश्ता निभा पाते हैं, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि कभी कभी दूरी हो जाती है, कभी कोई काम के वजह से दूर निकल जाते हैं। लेकिन अब तो भाई हाईटेक युग है, फोन का और इंस्टाग्राम का, फेसबुक का जमाना है, ढूंढेंगे तो हमारे दोस्त मिल ही जाएंगे, लेकिन रिश्ता जरूर निभाना चाहिए। सुंदर विचार आपने लिखे, धन्यवाद कार्यक्रम में अपने विचारों को भेजने के लिए। और ये हैं हमारे साथी मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसी हैं आप निधि जी? सलाम जी, हम बहुत ठीक हैं, नमस्कार आपको, आपका स्वागत है, धन्यवाद। दोस्ती वो नहीं होती जो जान देती है, दोस्ती वो होती है जो मुस्कान देती है। ओहो हो, हम तो सोच रहे थे आपने क्या ही लिख दिया, बिल्कुल सही बात, मुस्कुराहट तो होती ही है दोस्तों के आने से। दोस्ती वो होती है जो पानी में गिरे आंसू पहचान लेते हैं, दोस्ती का रिश्ता हम खुद मनाते हैं, जैसे आपका और हमारा रिश्ता अनमोल, इसका कोई मोल ही नहीं है, हमें भी शामिल कर लीजिए, ये भी लिखा है आपने, बहुत धन्यवाद आपका। आपने सच्ची बात लिखी है कि जब दोस्त हमसे जुड़ जाते हैं तो हम खुद ही अपने दुख को भूलने लगते हैं, और एक सच्चा दोस्त हमारे आंखों के ना दिखे हुए आंसू को भी, गम को भी पहचान लेता है। सुंदर विचार लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक और हमारे पास मैसेज पहुंच गया है रात के हम सफर कार्यक्रम में, नगीना से अनिल विनोचा जी का, और लिखते हैं नमस्कार निधि जी, नमस्कार भाई, आप इतनी रात को हमसे जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। आपने लिखा है कि सच दोस्त बहुत ही दिल के करीब होते हैं, और दोस्त जिससे हम अपनी हर समस्या का हल कह सकते हैं, खुशी शेयर कर लेते हैं, दोस्त एक बहुत बड़ा भरोसा होता है। वाह, हर बार एक नई चीज़ निकल कर आती है, दोस्त रिश्ता टूट है और भरोसे का तो है ही, बस दोस्ती कभी दोस्ती में दगा ना करें, अगर कोई गलत फहमी हो गई हो तो उसे कहकर दूर कर लेना चाहिए, मगर कभी उसे दिल से ना लगाएं। सही बात आप कह रहे हैं अनिल विनोचा जी। और आगे आप लिखते हैं, ना धोखा दें, अगर आगे नहीं निभाई जा सकती दोस्ती तो साफ कह दें, लेकिन मिथ्या ना हो, दोस्त पानी की तरह साफ होना चाहिए, बस। थैंक यू, बहुत सुंदर आपने बात कही है। और आपने लिखा पानी की तरह दोस्ती निर्मल होनी चाहिए, तो मुझे भी एक पंक्ति याद आ गई, जब हम 12th में पढ़ते थे तो हमने हिंदी में पढ़ी थी, कह कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारी जान। इसका अर्थ यह है कि जो पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ है वो संसार में कभी खत्म नहीं होता, नहीं मरता है। तो दोस्ती इसी तरह के रिश्तों से बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने सुंदर विचार भेजने के लिए। और एक और साथी के विचार हम सुन लेते हैं। देखिए गीत तो आप सुनते ही हैं, लेकिन जब दोस्ती पर बात आई है तो कोई भी हमारे साथी पीछे नहीं है। आप हैं ग्राम दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, लिखते हैं दोस्ती यकीन पर टिकी होती है, यह दीवार बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना किताब रिश्तों की, वाह वाह, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना किताब रिश्तों की, दोस्ती खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है, वाह वाह वाह, सही बात आपने कही। ये रिश्ता जो होता है ना, कई बार हमें इसलिए भी बड़ा लगता है साथियों, ये रिश्ता हमने खुद चुना है, हमारे माता पिता कौन होंगे, हम किस धर्म में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, किस देश में पैदा होंगे, ये सब ईश्वर की इच्छा से हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त कौन होंगे, हाँ ये हमारे हाथ में है।
तो इसीलिए तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने जाते हैं तो हमारे शिक्षक, हमारे मित्रगण, हमारे अभिभावक, माता पिता सब कहते हैं दोस्ती अच्छे समझदार विवेकशील साथियों से करना। तो ये बहुत सही बात आपने लिखी कि दोस्ती में यकीन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से खड़े होने वाली दीवार है। मोहम्मद फरमान जी, आपने विचार लिखा, जुड़े हमसे, हमारे हम सफ़र बने इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से भी साथी हैं हमारे साथ, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। और लिखते हैं आप, क्या दौर आया है, क्या दौर आया है, एक और कुछ अमीर की सोच है कि कितना सोना खरीदना है, वही कुछ गरीब सोच रहे हैं कि कहाँ पर सोना है। ये आपने परिस्थितियों पर कहा है कि जो व्यक्ति अभी इतना सक्षम नहीं है वो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार सोच रहा है, जो सक्षम है वो दूसरी तरफ अपना नजरिया दिखाता है। लेकिन आपने आगे भी लिखा है, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। वाह, क्या कहने, दोस्ती तो कच्चा धागा है मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। बिल्कुल सही बात आपने कह दी है। और एक और मैसेज जल्दी से हम देखते हैं, क्योंकि गीत भी तो आपकी इस कड़ी में जुड़ेगा। आप हैं हमारे साथी आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी। लिखते हैं, शाही मार्केट, चौहारा, जिला बिजनौर से, दोस्ती में कभी कोई बात अगर हो जाए तो दिल पर ना रखें, वहीं ख़त्म कर दें और दोस्ती को सलामत रखें। सही कहा आपने भाई, जरा जरा सी बातों पर मनमुटाव आजकल हम देखते हैं कि लोग कर लेते हैं और कहते हैं मुझे बात नहीं करनी। अरे करो बात भाई, बात करेंगे तभी तो बात पता चलेगी और बातों ही बातों में दोस्ती फिर से जुड़ जाएगी। और आगे आप लिखते हैं कि हर मोड़ पर रात दिन में कभी भी दोस्त काम आ जाते हैं, उसको ही दोस्ती कहते हैं। आगे मैसेज भी लिखा है भाई, लिखते हैं, गर्मी का दौर चल रहा है, रोज नया पानी रखें छत के ऊपर परिंदों के लिए। बहुत सुंदर विचार। देखिए, आपने अपने दोस्तों को याद करते करते हमारे पर्यावरण के साथियों का, पर्यावरण के मित्रों का भी ध्यान रखा है, अपने पंछियों का भी हमें ध्यान रखना है कि उन परिंदों के लिए हम छत पर पानी रखें। बहुत सुंदर, आपने एक पंथ दो काज कर दिए, अपनी दोस्ती को याद कर लिया, अपने दोस्तों को बता दिया कि भाई दिल पर कोई बात नहीं रखनी है, ख़त्म कर दीजिए, दोस्ती को सलामत रखिए, क्योंकि यही सबसे अनमोल है। और आज हमारा विषय भी यही रहा, जीवन का धन हमारे मित्रगण। और देखते हैं चलते चलते क्या कोई और भी साथी हैं।

गुलशन रेडियो लिसनर्स क्लब अजमेर राजस्थान से, कि प्रेम ब्रैकेट में आपने लिखा है मोहब्बत एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। प्रेम की डोर दो दिलों को जोड़ देती है, दूरियों को मिटाती है। प्रेम वो खुशबू है जो हवा में बहता है। प्रेम वो चिराग है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। वाह, कितनी गहराई से आपने शब्दों को चुना है, पिरोया है। और आगे आप लिखते हैं, प्यार वो सुकून है जो हर दर्द को भुला देता है। प्रेम के एहसास को बयां करना नामुमकिन है, प्रेम अनमोल है और इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो भाई आपने सही कहा, और लेकिन आपने बात कर दी रात के हमसफर में प्रेम की, पर ये प्रेम आपका दोस्तों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आज हम दोस्तों की बात कर रहे हैं और इसको हम अब पलट कर देखें तो कह सकते हैं कि दोस्ती प्रेम एक खूबसूरत एहसास है और ये दिलों को जोड़ता है और एक दूसरे को साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। ये हैं हमारे साथी एक और ये बहुत सारे दिल दिल दिल इन्होंने बना बना के तीन चार बार हमें मैसेज कर दिया है। और आप देखिए, आप सुनते सुनते मुस्कुराइएगा नहीं, क्योंकि यही सच है। लिख रहे हैं, प्रोग्राम रात के हम सफ़र है और ये हम सुनते हैं परिवार के साथ शुक्रवार के दिन, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। सिस्टर जी, ये तो आपने कह दी भाई साहब, लेकिन दोस्ती की बात तो आपने की ही नहीं, इतने सुंदर रंग बिरंगे दिल भेजे। हम कहना चाहते हैं कि आज हम दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं और ये हम ले लेते हैं एक और साथी की बात, विलेज पोस्ट राहुलनगली से आचार्य सत्यवीर सिंह जी की, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का, भव्या, सीमा रानी, राघव चौहान की बात। कहते हैं जिंदगी में दोस्त बहुत मिलते हैं, हमें सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि मतलब ही दोस्त ज़्यादा मिलते हैं। मैंने बहुत दोस्त बनाए लेकिन आज जब मैं ब्लाइंड हो गया हूँ तो वो मतलबी दोस्त पूछते भी नहीं हैं कि कहाँ है। इसलिए कहता हूँ कि जिंदगी में दोस्त बहुत मिल जाएंगे लेकिन अच्छा दोस्त कम मिलेगा, और जहाँ साथ छोड़ दे तेरा वो तुझे हम खड़े मिलेंगे, ऐसा कहने वाला दोस्त ढूंढिएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है सत्यवीर जी, और आपके साथियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सच में दोस्ती तो हमें सोच समझ के ही करनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि है ना, दोस्ती अनमोल है और हमें इसको जाने नहीं देना है और चुन चुन कर दोस्त बनाने हैं। हीरे मोती जैसे ही होते हैं वैसे तो दोस्त, क्योंकि कहते भी हैं कि हमारे विचार जिनसे मिलते हैं हम उनको ही अपना दोस्त बनाते हैं। तो आज हमारे बहुत सारे साथियों ने हमसे जुड़कर अपनी बात कही और अब कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, इससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम रात के हम सफर में आज हमारे बहुत सारे साथी जुड़े और आपने अपने दोस्तों को याद किया, दोस्ती की बातों को याद किया, दोस्ती के गुणों को बताया। बस अब तो हम यही कहेंगे कि कार्यक्रम संपन्न करने की निधि भारद्वाज को अनुमति दीजिएगा और सुनते रहिए गीत, फिर मिलेंगे इसी लहर पर दोबारा। आकाशवाणी संग खिलते रहें आप और आपका जीवन, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रात के हम सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।